मिलाया था ये दोनों संगीत का, इसका ये तो बहुत ही बड़ा खूबी था ये दो महान संगीतकारों का। आयशा भोसले और मुबारक बेगम साथियों के साथ सुनाया आप सभी को। तो हमारे प्रिय साथियों सभी नगमे फ्रॉम द मूवी आरज़ू 1965 मैंने आप सभी को सुना चुका। अब लेकर चलते हैं आप सभी को एक फिल्म जो रिलीज किया गया था इन 1966 और इतना काम कमाया इस फिल्म में वर्ल्ड वाइड, फिल्म सूरज। सभी नगमे इस फिल्म का सुपरहिट साबित हुए। तो फिल्म सूरज में से जो नगमे मैंने सेलेक्ट किया हूँ अब अभी आप सुनेंगे। और फिल्म सूरज में राजेंद्र कुमार जी ने काम किया है मलका हुसन, द ग्रेट क्लासिकल डांसरेस वी जयंती माला जी के साथ मलका हुसन ब्यूटी क्वीन मुमताज जी इस फिल्म में भी काम किए हैं। एक बार फिर शंकर जय किशन के साज और हसरत जय पुरी के अल्फाजे। उस जमाने में भी लोग जानते थे ना कि नेवर चेंज द विनिंग टीम। और ढेर सारे फिल्मों में शंकर जय किशन ने अपना संगीत दिया है राजेंद्र कुमार जी के फिल्मों में। और ख़ास करके लोगों का भी कहना है और ये भी साबित हुआ है कि सबसे सुंदर सुंदर और दिल को छू लेने वाला नगमे पद्मश्री मोहम्मद रफ़ी जी जो गाए हैं वो सिर्फ राजेंद्र कुमार जी के फिल्मों में, लोगों का कहना है। ख़ास करके हम लोगों का मिस्टर गूगल भैया यूसुफ जी का भी यही कहना है। तो अब फिल्म सूरज में से आप नगमे सुनेंगे 1966, एक जबरदस्त सॉन्ग आप सुनने वाले हैं। जरा दिल थाम के बैठिए, क्या हलचल मचा दिया था ये नगमा जब रिलीज किया गया है 1966 में वर्ल्ड वाइड। बहारो फूल बरसाओ, मेरे ख्याल से जितना बैंड था उस जमाने में भारत से लेकर वर्ल्ड में, सभी ये गाने अपने रेपर्टवार में लिख लेते थे। और शादियों में खास करके पहला गाना लोग पसंद करते थे इसे सुनने के लिए। तो मिलके सुनते हैं लेजेंडरी सॉन्ग बहारो फूल बरसाओ, मेरा महबूब आया है, क्या बात है। मिलके सुनते हैं रवि साहब जी ऑप्शन बेस्ट।

Jabberjust Legendary Song uit vertolken samen met mijn Peesja uit de film Suraj 1966. Surukabacha Rafi Saabji ke awaaz mein Shankar Jai Kishan ke saaj aur alfaazi tha Hazrat Jaipuri ji ka. Pahun Hindustani Radio pe aap tune hai Geet aur Ghazal Old is Gold namak karyakram aap sun rahe hai aur nagme chal rahe hai film Suraj ka. इतना है तुमसे प्यार मुझे सभी नगमे क्या बात है सुपरहिट फ्रॉम द मूवी सूरज 1966 का सुपरहिट मूवी मिलके सुनते हैं रफी साहब जी के ब्यूटीफुल आवाज में.

Razdaar uit de film Soeretje 1966. Mahane Awazoke Malkin Aura Malik Ravisab Aura Lata Jikae Beautiful Duet Ape Sne Mirkhayalse Dikha Jai सुमन कल्याणपुर होना चाहिए। तो हमारे प्रिय प्रिय साथियों, कुछ शेर्स हो जाए ना हमारे शेर्स के चाहने वालों के लिए। अर्ज क्या है कुछ शेर्स दोस्तों के बारे में यारो, कि शिकवा मत करना, शिकवा मत करना, फिर के हमने एक आखिरी बार भी पूछा नहीं। आज पूछती है, आज फिर पूछती है, क्या तुम्हें आज भी हमसे प्यार है? आवाज का इंतजार करता हूं। खुदा ने लिखा ही नहीं तुझको मेरी किस्मत में शायद, खुदा ने लिखा ही नहीं तुझको मेरी किस्मत में शायद, वरना खोया तो बहुत कुछ, वरना खोया तो बहुत कुछ था तुझे पाने के लिए। मैंने उससे कहा कि छोड़ दो या तोड़ दो मुझे, मैंने उससे कहा कि छोड़ दो या तोड़ दो मुझे, उसने हंस के गले से लगाया और कहा छोड़ रहे हैं आज तुझे, टूट तुम खुद ही जाओगे। एक महबूब लापरवाह, एक मोहब्बत बेपनाह, एक महबूब लापरवाह, एक मोहब्बत बेपनाह, दोनों काफी है सुकून बर्बाद करने को। तेवर तो हम वक्त आने पर दिखाएंगे यारो, अपना तेवर तो हम वक्त आने पर दिखाएंगे। तुम प्यार कर लो, तुम प्यार कर लो, हम उस पे अपने आंखों से हुकूमत कराएंगे। ये भी होता है यारो, अपना हम अपना स्टेटस दिलों पर अपडेट करते हैं फेसबुक पर नहीं यारो, हम अपना स्टेटस दिलों पर अपडेट करते हैं फेसबुक पर नहीं।

क्योंकि हमारे एटीट्यूड को समझने के लिए एक्सपीरियंस और क्वालिफिकेशन चाहिए। तो यार ये था कुछ शेर समर शेर की चाहने वालों के लिए। अगला बयान की तरफ बढ़ते हैं। एक आवाज जो आप सुना उस जमाने में और ये आवाज आते हुए हलचल मचा दी थी हमारे बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में। द ग्रेट शारदा जी के ब्यूटीफुल आवाज में आप सुनेंगे तितली उड़ी जो चली क्या बात है। शैलेंद्र का लिखा हुआ अति सुंदर बयान कंपोज बाय शंकर जय किशन फ्रॉम द मूवी सूरज 1966।

ब्यूटीफुल सॉन्ग टिटली उड़ी उड़ी जो चली उस जमाने के नया आवाज 1976 तक में रिलीज किया गया था। ये नया आवाज शारदा जी का इन द फिल्म सूरज 1976 तक और वर्ल्ड वाइड हलचल मचा दी थी। शंकर जय किशन की साज शैलेंद्र की अल्फाजी। अगला बयान जरा दिल थाम लीजिए, एक जबरदस्त लेजेंडरी सॉन्ग है एवरग्रीन सॉन्ग फ्रॉम द मूवी सूरज। क्या बात है, मिल के सुनते हैं चेहरे पे गेरी जुल्फे रवि साहब जी के ब्यूटीफुल आवाज में।

Bayan uit de film Suraj 1966. Surokaba Cha, The King of Melody, Padma Shri Mahmud Rafi Sahib Ji ke Beautiful Awaaz mein, composed by Mahan Sangeetkar Jori, the great Shankar Jai Kishan. Ekati sundar classical song aap sunenge aur zarur is film ko kabhi aap dekhna. Film Suraj, क्या नाचती थी वो महान हीरोइन विजयंती माला जी. इन दिस फिल्म वाज से मिस्किन ऑफ हर बेस्ट. एक परफॉर्मेंस वो दी इस फिल्म में जो आप सभी को देखना चाहिए. हु खुद से वाज अल्स एन एक्ट्रेस एंड टेफन्स क्लासिक डांसरेस और सभी स्टाइल के डांस तो करती थी और ढेर फिल्मों में काम की, लेकिन सूरज में जो वो अपना कला दिखाई, तारीफ़े काबिल लेजेंडरीस. मिलके सुनते हैं कैसे समझाऊं बड़े ना समझो, क्या बात है. ब्यूटीफुल सॉन्ग कंपोज बाय महान संगीतकार जोड़ी द ग्रेट शंकर जय किशन और रफी साहब और आशा भोसले जी साथियों के साथ. ऑफ हन बेस्ट

क्या बात है, जबरदस्त सॉन्ग है, क्लासिकल एकदम आप श्रोताओं के सेवा में पेश किया गया। एड फिल्म सूरज 1966 पद्मश्री मोहम्मद रफी साहब और आशा भोसले जी के आवाजों में कंपोज बाय जबरदस्त संगीतकार जोरी द ग्रेट लेजेंडरी म्यूजिक डायरेक्टर्स शंकर जय किशन। देखो मेरा दिल मचल गया, एक बार फिर उस जमाने का मशहूर गाने वाली शारदा जी शंकर जय किशन के साथ पर फ्रॉम द मूवी सूरज 1966।

0: Beautiful song है देखो मेरा दिल मैं चल गया उस जमाने का ब्यूटीफुल और मशहूर गाने वाली द ग्रेट शारदा जी के मधुर आवाज में थी सुंदर बयान आप श्रोताओं ने सुना शंकर जय किशन की सांच पर। तो हमारे प्रिय प्रिय श्रोताओं अभी आप विज्ञापन सुनेंगे देश विदेश का समाचार उसके बाद मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाऊंगा। स्टे ट्यून ऑन आप ही का तो आवाज है जनता का आवाज है फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो का आवाज है। ब्रेक की बात मिलता हूँ यारो।
1: प्लस रेडियो सुनाते हैं साफ और स्पष्ट आवाज डिजिटल ऑडियो ब्रॉडकास्टिंग की राज आप भी ले द प्लस रेडियो और दूर दूर तक देश के कोने कोने में सुने फाहोन हिंदुस्तानी रेडियो की वाणी डिजिटल ऑडियो ब्रॉडकास्टिंग आकाशवाणी।
0: तो साथियों प्रोग्राम का शुरुआत तो सदियों से मैं करता आ रहा हूँ वही शिक्षा और सबक से भरा हुआ बयान फ्रॉम द मूवी ललकार ने हंटिंग टू एन सेफ कंपोज बाय द ब्रदर्स कल्याण जी आनंद जी और हमेशा की तरह श्रोताओं को सुनाने को जा रहे हैं सुरों का बादशाह द किंग ऑफ मेलोडी पद्मश्री मोहम्मद रफी साहब जी की आज गालो मुस्कुरा लो महफिले सजा लो क्या जाने कल कोई साथी छूट जाएगा जीवन के डोर तो बड़ी कमजोर है यारो ये कब टूट जाएगा ये कब समाप्त हो जाएगा ये तो सिर्फ ऊपर वाले को मालूम है। इसलिए हम लोग तो आप सभी से सदियों से यहाँ से यही कहते आ रहे हैं आप सभी से यारो कि हैव टू नास्त आउट एट लीफ है कांधे से कांधे मिलाकर भिड़ाकर लगाकर आगे को बढ़ना है यारो खुद को आगे को बढ़ाना है देश को भी आगे को बढ़ाना है कौम को भी आगे को बढ़ाना है। तो ये शिक्षा और सबक से भरा हुआ बयान के बाद आप सुने के कुछ पुराने नगमे खास करके अगर आप ओथ इस गोल को पसंद करते हैं तो मैं लाया हूँ कुछ नगमे पुराने ज़माने के महान संगीतकार द ग्रेट जयदेव वर्मा जी के कुछ बनाए हुए धुने और उसके बाद आप सिर्फ नगमे सुनेंगे जिन मूवीज में महान अभिनेता द ग्रेट एक्टर राजेंद्र कुमार जी ने काम किए हैं बीच में कुछ ज्ञान के बातें भी है शेर शायरी भी है। तो जरूर प्रोग्राम के सुनते रहना मजे लेते रहना रफी साहब जी

मुस्कुरालो महफिले सजालो, हमेशा की तरह प्रोग्राम का शुरुआत। तुम्हारे प्रिय प्रिय साथियों, आज का इस हसीन प्रोग्राम का शुरुआत मैं करने वाला हूँ हमारे भारत देश का बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री का महान गायिका, जिनके गला में तो स्विंग सरस्वती माँ बसी थी, सुरों का देवी, क्वीन ऑफ मेलोडी लता मंगेशकर जी के ब्यूटीफुल आवाज में आप सुनेंगे ये महान संगीतकार जयदेव वर्मा जी का बनाया हुआ अति सुंदर बयान, और खास करके लिखा है नक्श लियालपुरी जी ने, तुम्हारे लिए अग्निहतिंग आख्तन सीफ।

A Masterpiece of Composing by Maestro J.D. Varmaji. Our Queen of Melody, Lata Mangeshkar ji ke beautiful awaaz mein thi sundar bayan, ad film Tumhare Liye 1978. Rekord thi sundar bayan main rakh chuka hoon player mein aur is baar laate hain from the same movie Tumhare Liye छोटी बहन लता जी का नाइटिंगेल उषा मंगेशकर नक्शिलाल पुरी के लिखा हुआ ये अति सुंदर बयान कंपोज बाय मास्टरो जयदेव वर्मा मोरे तरस तरस गए नैना स्पेशल आप सभी प्रिय प्रिय श्रोताओं के नाम

अति सुंदर बयान श्रोताओं ने सुना, आपकी याद आती रही। एद फिल्म गमन 1980, कंपोज बाय मैस्ट्रो जयदेव वर्मा और आवाज थी छाया गंगुली जी का। लिखा है मखदूम मुहिदीन ने अति सुंदर बयान को, ब्यूटीफुल गजल। अगला बयान, आ प्यार की बाहों में एक बार फिर भारत रत्न क्वीन ऑफ मेलोडी सुरों का देवी लता मंगेशकर जी के ब्यूटीफुल आवाज में ये अति सुंदर बयान। ऐड फिल्म चांद ग्रहण मिल के सुनते हैं।

ये बढ़ाता हूँ यार, एक और जबरदस्त सॉन्ग मैंने सेलेक्ट कर चुका हूँ आप सभी की सेवा में। गाना का बोल है आसमान पर एक सितारा, क्या बात है। द फिल्म जंबिश आइट 1985 एक और नया आवाज उस जमाने का गाने वाली फैयाज जी का, मिलके सुनते हैं। Composed by Maestro Jaydev.

एक सितारे ने न जाने कान में क्या कह दिया, आसमाने सर झुकाया, जिस्म शर्माने लगी।

क्या बात है, क्या हंसी है। उस जमाने के गाने वाली द ग्रेट वॉइस के मालकिन अपार्ट स्टेम फैयाज जी, आई डू फिल्म गम्बीश कंपोज बाय मास्टरो जयदेव वर्मा, आसमां पर एक सितारा, क्या बात है। फाउन हिंदुस्तानी रेडियो पे आप चुन है यारो, जोर तोर से गीत और गजल आप सुन रहे हैं संगीतकारों का दास्ता नामक कार्यक्रम में। महान संगीतकार पुराने जमाने का यार, 5th से 7th मास्टरो जयदेव वर्मा जी के कंपोज किए हुए नग में आप सुन रहे हैं। अगला बयान, किया पिया पे किया जादू पर मैंने क्या किया, क्या बात है। What saying the text so mooi geschreven zeg. Oude, je ati zonder bejaan uit de film Trico ka Chautha Kaun 1986 mein release kiya gaya tha. Usi film mein se ye ati zonder bejaan aap sunenge. Us zamane ke ek oude mahaan gaane wali, kya baat hai. रात की किया पिया, वाओ व्हाट अ न्यूमन शेख। मिलके सुनते हैं अ ग्रेट कंपोजिंग बाय मास्टरो जयदेव वर्मा जी।

क्या बात है, किया पिया पे किया जादू, पर मैंने क्या किया, क्या बात है। डिफिकल्ट सॉन्ग गाने के लिए छाया गंगुली जी के ब्यूटीफुल आवाज में ये अति सुंदर बयान आप श्रोताओं ने सुना। ऐद फिल्म त्रिको का चौथा कौन नीतिन सेसन तख्त कंपोज बाय मास्टरो जयदेव, और लायरिक्स था इस गाने का लिखने वाली माया गोविंद जी ने। तो आज का इस हसीन स्पेशल माएस्ट्रो जयदेव वर्मा का एक आखिरी बयान आप सुनेंगे यारो, और धीरे धीरे भी जितने गाने मैंने सेलेक्ट कर चुका था मेरे ख्याल से आने वाले हफ्ते में वो सभी मैंने सुना चुकाऊंगा आप सभी को। तो उसके बारे में कुछ जानकारी मैंने भी रिसर्च किया है, तो वो भी मैं सुनाऊंगा आप सभी को आने वाले हफ्ते में। तो मिल के सुनते हैं रात के पिछले पहरों में आशा भोसले जी का गाया हुआ अति सुंदर बयान। ऐड फिल्म अंजलि निकटीन सीफन फेफ्तख कॉम्पोज बाय मास्टरो जयदेव वर्मा जी, स्पेशल आप सभी प्रिय प्रिय श्रोताओं के नाम।

0: What a beautiful song from the movie, old movie Angeli 1957. Maestro Jay Deoji ke saaj aur Asha Bhosle ji ke beautiful awaaz mein thi sundar bayan aap shrotao ne suna. To hamare priye priye saathiyo, ye tak tha aaj ka ye haseen special maestro Jaydev Verma ji ka jo samapt hone ko aaya. अभी आप विज्ञापन सुनेंगे, देश विदेश का समाचार, उसके बाद मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाऊंगा. तो स्टे ट्यून ऑन, आप ही का तो आवाज है, जनता का आवाज है, फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो का आवाज है. एकदम आफ्टर द ब्रेक, कहीं जाना मत यारो.
1: Live vanuit onze high-tech studio in Den Haag.

फाउन हिंदुस्तानी रेडियो का कार्यक्रम आप श्रोताओं की सेवा में लाइव ब्रॉडकास्ट है। डबल एच त्रिफिया इंटरनेट के लहरों द्वारा फाउन FM.NL पर यह कार्यक्रम आप सुन रहे हैं। हमारे फुल टीम की तरफ से आप श्रोताओं को एक बार फिर से स्वागतम कार्यक्रम में। तमाम टैक्सी ड्राइवर्स जो कार्यक्रम को भी सुन रहे हैं, वर्क्स बॉयज एंड बेदंत गर्ल्स, सोशल ओबीडिएंट ब्लेसिंग्स, तो जो भी रेडियो का काम हो, खास फरमाई से जरूरी खबरें, इश्तिहारे, कॉमर्शियल्स, डेंक ऑन फाउन हिंदुस्तानी रेडियो ट्विन किफायत सस्ते दाम, यू कैन बेल अप 0736 2247 40 पर सभी जानकारी आप प्राप्त कर सकते हो फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के बारे में। तीनों खेल लिट फन फाउन हिंदुस्तानी रेडियो तो गुजारिश बिनती निवेदन किया जा रहा है कि आप भी हम लोगों का मेंबर बने, कोशिश करना औरों को भी बनाने के लिए। हैट्स ऑफ टू ऑल ऑफ यू। और इसके लिए हमारे फुल टीम की तरफ से आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद। तीनों खेल लिट फन फाउन हिंदुस्तानी रेडियो तो गुजारिश बिनती निवेदन किया जा रहा है कि आप भी हम लोगों का मेंबर बने और को भी बनाए, है ना, लाइक हम लोगों के बारे में कुछ बातें शातें करते रहना यारो, चर्चा करते रहना। इसके लिए हमारे फुल टीम की तरफ से तह दिल से धन्यवाद। एक ही दम लेकर चलते हैं प्रोग्राम की तरफ। सभी नगमे आप सुन चुके फिल्म जिंदगी का, तो आप सभी को लेकर चलते हैं 1965 में एक मूवी, जबरदस्त मूवी रिलीज किया गया था, जुबली हिट हुआ ये मूवी, फिल्म आरजू। तो फिल्म आरजू में से आप नगमे सुनेंगे। और इस फिल्म में राजेंद्र कुमार जी ने काम किया है ब्यूटी क्वीन साधना जी के साथ, और महान अभिनेता द ग्रेट फिरोज खान जी भी इस फिल्म में काम किए हैं। संगीतकार एक बार फिर शंकर जय किशन। तो उसी फिल्म में से नगमे आप सुनेंगे एक बार फिर सुरों का बादशाह रफी साहब जी के ब्यूटीफुल आवाज में। हसरत जयपुरी का ये क्या बात है, क्या लिखा है, ऐ फूलों की रानी बहारों की मलका, रवि साहब।

ऐ फूलों की रानी, बहारों का मलका, ब्यूटीफुल सॉन्ग, वंडरफुल सॉन्ग फ्रॉम द मूवी आरजू 1965, पद्मश्री मोहम्मद रफी साहब जी ने सुनाया। अगला बयान एड सेल्फ द फिल्म आरजू 1965, और इस बार भारत रत्न क्वीन ऑफ मेलोडी अजीर उठकर अब कहाँ जाएगा। इस फिल्म का सभी नगमे सुपरहिट साबित हुए।

सुंदर बयान छलके तेरी आंखों से, एक फिल्म आरजू ने तीन फैशन सिस्टर पद्मा श्री मोहम्मद रफी साहब जी। तो यारो वक्त भी धीरे धीरे करीब आ रहा है, कुछ आखिरी शेर हो जाए ना आज के मेरे हिस्से के कार्यक्रम में स्पेशल फॉर शेर्स के चाहने वालों के लिए। अर्ज किया यार कि आज भी वो मैसेज तुम्हारा पता ढूंढता है, आज भी वो मैसेज तुम्हारा पता ढूंढता है जिसमें लिखा था एक बार तो पूछ लो कैसा हूं मैं, एक बार और देख कर आजाद कर दे मुझे, एक बार और देख कर आजाद कर दे मुझे, मैं आज भी तेरी पहली नजर की कैद में हूं। बातें जरूरी है अगर रिश्ते बचाने हैं, बातें जरूरी है अगर रिश्ते बचाने हैं, वरना लगा कर भूल जाने से तो पतझर सूख जाते हैं। तखलीक ए कायनात की ये रीत बड़ी निराली है यारो, तखलीक के कायनात की ये रीत बड़ी निराली है यारो, इसे हम प्रेम कहते हैं। जो हो ना सके अपना, जो हो ना सके अपना, मोहब्बत भी उसी से होती है। आखिरी शेर, तन्हाई वो जानते हैं जिनको वफा ना मिलती हो ऐ दोस्त, तन्हाई वो जानते हैं जिनको वफा ना मिलती है दोस्त, वो क्या जाने, वो क्या जाने तन्हाई को जो मोहब्बत को मजाक समझते हैं। तो था कुछ आखिरी शेर्स आज के मेरे हिस्से के कार्यक्रम में। अगला बयान एक दर्द सा भरा हुआ बयान है लता जी के मधुर आवाज में, एंड फिल्म आरजू बेदर्दी बालमा, शंकर जय किशन के संगीत, हसरत जय पुरी के अल्फाजे।

जुलता जी के ब्यूटीफुल आवाज में इस दरमियान आप श्रोताओं ने सुना कंपोज बाय शंकर जय किशन। तो हमारे प्रिय प्रिय साथियों, वक्त भी धीरे धीरे करीब आ रहा है, तो आज के मेरे हिस्से के कार्यक्रम में आखिरी बयान आप सुनेंगे एड फिल्म आरजू नेगदीम फैंस सेस्तख, और सुनाने को जा रहे हैं आप सभी को जबरदस्त सॉन्ग है, जरा दिल थाम के बैठिए। सुरों का बादशाह किंग ऑफ मेलोडी रफी साहब जी का ये जबरदस्त सुपरहिट सॉन्ग कंपोज बाय शंकर जय किशन और लिखा है हसरत जयपुरी ऐ नरगिसे मस्ताना, वन ऑफ माय फेवरेट रफी साहब जी का। आप सभी प्रिय प्रिय श्रोताओं के नाम आखिरी बयान आज के इस कार्यक्रम में, जो मैं स्पेशल सभी रफी साहब जी के फैंस के लिए चलाता हूँ।

हमारे प्रिय प्रिय साथियों, ये तक था आज का मेरे हिस्से का कार्यक्रम, जो समाप्त होने को आया। ये आशा उम्मीद लेकर घर को जा रहा हूँ यारो, कि जिस तौर तरीके से मैं कोशिश किया आप श्रोताओं को सेवा करने में, मेरा पेश किया हुआ प्रोग्राम आप सभी को पसंद आया हुआ होगा। अगर जिंदगी कुदरत ने साथ दिया तो आने वाले दिनों में मैं आप सभी से फिर मिलने वाला हूँ आवाज के जरिए। तो जरूर प्रोग्राम को सुनते रहना, फॉलो करते रहना, जहाँ पर भी जिस हाल में हो, फाउन हिंदुस्तानी रेडियो का ढेर सारा प्यार दुलार प्रेम और मोहब्बत आप सभी तक पहुँचे। और जाते जाते हमेशा की तरह कुछ न कुछ गुनगुना देता हूँ और ये सोचता हूँ कि क्यों ना संगीत के साथ सुना दूँ कुछ दादा हेमंत कुमार के याद में।

साथियों, प्रोग्राम का शुरुआत तो सदियों से करते आ रहा हूँ, वही शिक्षा और सबक से भरा हुआ बयान के साथ, फ्रॉम द मूवी ललकार कंपोज बाय द ब्रदर्स कल्याण जी आनंद जी। और हमेशा की तरह आप श्रोताओं को सुनाने के जा रहे हैं सुरों का बादशाह द किंग ऑफ मेलोडी पद्मश्री मोहम्मद रफी साहब जी की। आज गालो मुस्कुरा लो महफिले सजा लो, क्या जाने कल कोई साथी छूट जाएगा। जीवन के डोर तो बड़ी कमजोर है यारो, ये कब टूट जाएगा, ये कब समाप्त हो जाएगा, ये तो सिर्फ ऊपर वाले को मालूम है। इसलिए हम लोग तो आप सभी से सदियों से यहाँ से कहते आ रहे हैं ना कि हैप टू नास्ट आउट एट लीफ, कांधे से कांधे मिलाकर भिड़ाकर लगाकर आगे को बढ़ना है यारो, खुद को आगे को बढ़ाना है, देश को भी आगे को बढ़ाना है, कौम को भी आगे को बढ़ाना है। तो इस शिक्षा सबक से भरा हुआ बयान के बाद आप सुनेंगे साप्ताहिक प्रोग्राम संगीतकारों का दास्ता नामक कार्यक्रम। कुछ रंग में रह गया है सुनाने के महान संगीतकार द ग्रेट जयदेव जी का, और उसके बाद आप नगमे सुनेंगे सिर्फ जिन फिल्मों में महान अभिनेता द ग्रेट एक्टर राजेंद्र कुमार मिस्टर जुबली कुमार ने काम किया है। बीच में कुछ ज्ञान के बातें है, शेर शायरी भी है। तो शुरू प्रोग्राम को सुनते रहना, मजे लेते रहना। रफी साहब

गालो मुस्कुरालो महफिले सजालो। रवि साहब जी के मधुर आवाज में हमेशा की तरह प्रोग्राम का शुरुआत। तो हमारे प्रिय प्रिय श्रोताओं, आज का इस हसीन प्रोग्राम का शुरुआत मैं करने वाला हूँ महान संगीतकार माएस्ट्रो जयदेव जी के बनाया हुआ ये अति सुंदर बयान के साथ। दिल धड़कने की सुनने वाले हैं महान गायक हमारे पुराने जमाने का ग्रेट भूपेंद्र सिंह, और साथ दे रही है शोभा जोशी फ्रॉम द मूवी त्रिको का चौथा कौन द्रियन तख्त। स्पेशल आप सभी प्रिय प्रिय श्रोताओं के नाम।

masterpiece of composing by Maestro Jaydev Varma from the movie Trico Ka Chautha Kaun 1983 Bhupendra aur Shobha Joshi. अगला बयान की तरफ बढ़ते हैं यारो, फ्रॉम द सेम मूवी एक बार फिर मशहूर गाने वाली शोभा जोशी उस जमाने की, और ये नगमा भी बनाया है श्री जयदेव वर्मा जी और लिखा है महादेवी वर्मा. मिलके सुनते हैं प्यार है अमृत, क्या बात है.

0: कितना चर्ब है।
1: मम्मी तुम ठीक हो?
0: हाँ।
1: मैं आपके पास सो जाओ?
0: नहीं बेटा, अच्छे बच्चे अस्पताल में नहीं सोते। बैठ जाओ मनीषा, वहाँ नहीं, मेरे पास बैठो।

0: उसका जरा मुश्किल हिंदी है, जैसे जब परोड़ा उससे जिद करता है कि तुम क्या चीज हो, मैं तुम्हारे बगैर बेचैन हूँ, और तो वो कहती है पर क्या बोलूँ क्या कहूँ, भ्रांत यह देह भाव, मैं जो कुछ भी हूँ इल्यूजन है माया है।
1: मैं मनोदेश की वायु व्यग्र व्याकुल चंचल

बात है। महान संगीतकार जयदेव का बनाया हुआ अति सुंदर धुन आप श्रोताओं ने सुना एस जानकी के मधुर आवाज में। अगला बयान की तरफ बढ़ते हैं यारो, और इस बार भारत रत्न क्वीन ऑफ मेलोडी लता मंगेशकर जी सुनाते हैं कुछ शाम के ऊपर। राधा जी कुछ कहते हैं कि शाम के तो मैं दीवानी हूँ। कंपोज बाय मास्टर जय।

Queen of Melody, लता मंगेशकर जी के ब्यूटीफुल आवाज में कोरस के साथ, कंपोज एंड अरेंज बाय मैस्ट्रो जयदेव वर्मा। तो हमारे प्रिय प्रिय साथियों, आप चुन है फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो का प्रोग्राम आप सुन रहे हैं महान संगीतकार मैस्ट्रो जयदेव वर्मा जी का स्पेशल चल रहे हैं। तो आखिरी बयान ये स्पेशल में आप सुनेंगे और एक बार फिर सुनने को जा रहे हैं आप सभी को भारत रत्न क्वीन ऑफ मेलोडी, ये मास्टरपीस ऑफ कंपोजिंग आप सुनेंगे मैस्ट्रो रवि वर्मा और लता जी का कॉम्बिनेशन भी बहुत ही ग्रेट था। मिलके सुनते हैं, जाने कितनी बार हृदय से मैंने उसे पुकारा।

0: भारत रत्न क्वीन ऑफ मेलोडी लता मंगेशकर जी के ब्यूटीफुल आवाज में दो गाने आप सुने, कंपोज बाय मैस्ट्रो जयदेव वर्मा। तो हमारे प्रिय प्रिय श्रोताओं, ये तक था आज का स्पेशल महान संगीतकार मैस्ट्रो जयदेव वर्मा जी का, जो समाप्त होने को आया। अभी आप विज्ञापन सुनेंगे, देश विदेश का समाचार, उसके बाद मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाऊंगा। तो स्टे ट्यून ऑन फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो, आप ही का तो आवाज है, जनता का आवाज है, फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो का आवाज है। ब्रेक के बाद मिलता हूं यारो, कहीं जाना मत।
1: Live vanuit onze high-tech studio in Den Haag.

प्यारे प्यारे भाई बहनों एवं प्यारे प्यारे बच्चों, इस समय दुनिया में जो धर्म के नाम पर भयानक विध्वंस हिंसा कांड जो हो रहा है, इसमें आपको दुख होता है सो ठीक ही है, बहुत ठीक है। प्रत्येक विचारशील पुरुष को दुख होता है सज्जनों, जो आज की दुनिया में हो रहा है धर्म के नाम पे। लोग ढोंगी बन चुके हैं काफी। वास्तव में अध्यात्म जगत का शिरोमणि भारत, जो प्रत्येक वस्तु परिस्थिति में आत्मा या ईश्वर को देखकर आत्मा कल्याण के कार्य करता था, आज वो भी पथ भ्रष्ट हो रहा है। तो अन्य देशों का क्या बात है, समझने की कोशिश कर। हर एक देश में आज धर्म के नाम पे लोग धर्म का चोला ओढ़कर लूट रहे हैं, जनता को उल्लू बना रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि सभी धर्म प्रचारक लोग ऐसे हैं, मगर ज्यादा से ज्यादा ऐसे जनता को डरा डरा कर उन्हें ये करवा वो करवा कर पैसा उनसे ले रहे हैं। ये बहुत बुरी बात है। सच्ची बात तो ये है कि हम पहले आत्मा हैं, फिर मनुष्य है, फिर हिंदू मुसलमान ईसाई आदि हैं। हम पहले हम आत्मा हैं, फिर अमुक देशवासी हैं, फिर अमुक जाति है सज्जनों, मगर पहले हम तो आत्मा हैं। अमुक प्रदेश के हैं, अमुक परिवार के हैं, फिर हम अमुक व्यक्ति हैं सज्जनों, मगर पहले हम आत्मा हैं। सभी लोग आत्मा हैं, और जिससे जिसमें आत्मा पर आघात होता है, प्रभाव पर दुखी होता हो, वैसा कोई भी कार्य कभी भी व्यक्तिगत स्थिति से लेकर मनुष्य की स्थिति तक किसी भी स्थिति में नहीं करना चाहिए सज्जनों। जो आपको अच्छा ना लगे दूसरों को लिए मत किया कर, दूसरों को ही अपना ही समझो, अपने आप ही समझो। पर भाई बहनों आज देखिए कितने लोग कुछ ऐसी स्थिति में पड़कर जहां उनके रास्ता बंद दिखाई पड़ता है, उनकी नजरिया में बंद दिखा पड़ता है, बिना सोचे समझे कि बात में इसका परिणाम क्या होगा, बस खुद खुशी कर लेते हैं, यानी सेल्फ मोड। ये क्यों, हमारे धर्म प्रचारक लोग कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं, ये जनता के लिए क्या कर रहे हैं, सिर्फ कार्य करवा रहे हैं, ये करवा रहे हैं वो करवा, क्या यही काफी है? जनता को समझाओ बतलाओ, प्रतिदिन टीवी पे रेडियो के माध्यम से उनको बतलाओ समझाओ कि धर्म क्या है, धर्म हमको क्या बतला रहा है, क्या करने के लिए, खुदकुशी क्या है, क्यों हम खुदकुशी करें, परिस्थिति आ गई ऐसा स्थिति ऐसा उलझन तो हम अपने को जान मार ले। अरे वो तो अनजान है, तुम तो ज्ञानी हो, तुम तो उनको बतलाओ प्रतिदिन। पैसा कमाना जरूरी है, मगर ऐसे ना कमाओ कि सिर्फ पैसा पे ही ध्यान रहे, मनुष्य जनता पर अपने आत्माओं पर ध्यान करो, उनको पहले सुखी बनाओ, फिर अपने आप पैसा आपके पास आएगा। क्षमा करना, शायद कोई को कड़वा लगा हो ये बात, तो हम आपको अपना हाथ जोड़कर चरण स्पर्श करके आपको आपसे क्षमा चाहते हैं, मगर ये सत्य है आज जो दुनिया में हो रहा है, ये धर्म प्रचारक लोग पीछे रह गए हैं, इनकी वाणी में कोई वैसे शक्ति कोई सच्चाई नहीं निकल रहे हैं, तभी तो दुनिया के लोग काफी लोग धर्म से हटकर धर्म को भूल गए हैं, धर्म पर विश्वास नहीं कर पा रहे हैं, अन्य चीज करने लगे हैं सज्जनों। ऐ दुनिया वालों, मैं आप सभी से यही विनती करता हूं कि जो भी व्यक्ति ऐसी स्थिति में पड़ जाए, खुदकुशी करने के लिए मजबूर हो जाए, और जिसने वो स्थिति पैदा किया है, आपस में दो आत्मा जानकर एक पिता के संतान मानकर उस समस्या को उस स्थिति को सुलझाओ, आपस में बात करो, सहायता करो, ताकि खुदकुशी करने वाली अशुभ घड़ी टल जाए, हट जाए। सज्जनों खुदकुशी नहीं ठीक है, मौत तो आएगा एक दिन, तो हम खुद जानबूझकर क्यों मौत के मुंह में कूदे।
खुदकुशी करने से आपका समस्या टल नहीं जाती, बल्कि और गंभीर आप उस स्थिति को कर देते हो, और गंभीर कर देते हो। परिवार दुखी हो जाते हैं, बच्चे बिखर जाते हैं, गृहस्थी टूट जाती है, ये सब जीवन रुक जाती है सज्जनों। और खुदकुशी करने वाले व्यक्ति तो किस अंधकार या नरक में जा पड़ता है, ये तो परमात्मा ही जाने। भक्तों, खुदकुशी करना कायरों का, बुजदिलों का, डरपोक लोगों का काम है, और आप तो इन सब में से तो नहीं हो। मानव, पशु पक्षी, हिंदू मुसलमान, ईसाई, मालिक मजदूर, ब्राह्मण चांडाल, सगे संबंधी, पिता पुत्र, पति पत्नी, सभी में एक आत्मा है। हर एक मनुष्य में एक आत्मा है, तो हमको आत्मा के माध्यम से आपस में सहायता करना है, लूटना नहीं, छल कपट करना नहीं, चलाकी नहीं करना है, ठगना नहीं है, किसी को डरवाओ मत। नाटक के पात्र की भांति अपने जिम्मे का काम करना, सावधानी के साथ भले भांति, पर कभी यानी कहीं भी किसी में भी राग द्वेष ना रहे। सज्जनों, राग द्वेष करने वाले के अंदर, किसी को डरवाने के लिए, और जो लोग चलाकी से कुछ काम कर रहे हैं, चलाकियां से कुछ कमा रहे हैं, कोई मतलब से इनको डरा करके ये कमा लूं, वो कमा लूं, मैं धनवान बन जाऊं, आप धार्मिक हो ही नहीं सकते हो, असंभव। आप मरने के बाद शायद नरक में भी जाएंगे। क्षमा करना, बात तो कड़वा लगता होगा मगर सत्य है। परमात्मा को जानने वाले प्रेम करते हैं, और प्रेम करने वाले किसी को देखकर जलते नहीं, किसी को ठगते नहीं, प्रेम करते हैं। किसी को देखकर जलन नहीं करना कि ये साला को हम क्या करें कि इनका बदनाम हो, ये परमात्मा का संतान नहीं हो सकता, असंभव। ये शैतानी आदत है जिसमें सबका हित हो, सब सुखी हो, ऐसा ही कार्य करना चाहिए। पर जब मनुष्य का स्व अत्यंत सीमित हो जाता है, तब वो छोटे छोटे स्वार्थ में सीमित होकर और उसमें अपनी भलाई समझकर ऐसे ऐसे कार्य करता है जिससे ना उसका भला होता है, ना दूसरों किसी का, सज्जनों, ना दूसरे किसी का। दुख अशांति बढ़ते हैं, जीवन अस्त व्यस्त तथा उखड़ा सा रहता है। किसी को दुख देकर आप आजमाइए, आप सुखी कभी नहीं हो पाएंगे, असंभव। पाप में ही कर्तव्य बुद्धि एवं गौरव बुद्धि होने का कारण पाप से छूटने की कभी इच्छा ही नहीं होती, और नए नए पाप बढ़ते रहते हैं। सज्जनों, जो लोग पाप करते हैं, दिन रात पाप ही सोचते हैं, कैसे कमा लूं, कैसे हड़प लूं, कैसे किसी को ठग लूं, तुम पापी हो, तुम्हारा बुद्धि स्वच्छ कभी नहीं हो सकता है, तुम प्रतिदिन पाप कमा रहे हो, अपने परिवार को भी उसमें डबो देते हो। सज्जनों, सत्य बात है, इसमें कोई संदेह नहीं है। क्षमा करना, एक बार फिर बोल रहा हूं, कड़वा लग रहा होगा बात मगर सत्य है। धर्म निभाओ तो ठीक से निभाओ, और ना सिर्फ बोलो कि मैं धार्मिक हूं, मैं ये हूं, मैं पढ़ा लिखा हूं, मैं ये करने जानता हूं। अरे क्या करने जानते हो, सभी तो कुछ कर लेते हैं। अशांति में ही मृत्यु होती है, और मृत्यु के बाद नरक भोगनी पड़ती है सज्जनों, पापी लोगों को। पर आज तो विद्वान, नेता, उपदेशक, शासक, आचार्य, विद्यार्थी, धनी, मजदूर, प्राय सभी मोह जनित सीमित स्वार्थवश इसी ओर जा रहे हैं। सभी लोग, मैं किस ओर जा रहा हूं ये तो मुझे पता ही नहीं, मगर फिर भी कोशिश कर रहा हूं। सज्जनों, कोशिश करना, अरे तुम्हें तो परमात्मा इतना दिया है, क्या और कमाना है, क्या और लूटना है किसी को।

अगर धन दौलत कमाना है तो मेहनत से, सच्चाई से किसी को दुख ना पहुंचाओ। जितने तुम खाली करोगे उतने ही परमात्मा तुम्हारे झोलिया में भरते जाएंगे। खाली करो वो डालेंगे दुगना, मगर तुम तो दूसरों को छीन रहे हो, कोशिश में लगे हो छीनने को, तो क्या भरेगा भगवान तुम्हारे लिए? कुछ नहीं भरेगा ना। पता नहीं क्या परिणाम होगा आपका, पापी लोग का क्या परिणाम होगा, लुटेरे लोग को, ढोंगी लोग का क्या परिणाम होगा। जो बचे रह सके उन्हें बचे रहकर तथा संभव हो तो भगवत कृपा का आश्रय लेकर, अमृतवाणी ज्ञान का आश्रय लेकर फैलते हुए विष प्रवाह को रोकने का यथा साध्य प्रयत्न करना सज्जनों, प्रयास करना चाहिए। आगे प्रभु का कृपा। और जो लोग ढोंगी रचते हैं धर्म के नाम पे, मैं आपको एक छोटा सा उपमा बतला रहा हूं। एक गांव में एक साधु, एक भक्त जा रहा था। रास्ते में देखा एक जगह, सामने एक सरोवर, पानी बह रहा है, खूब आनंदित। उसने सोचा कि चलो यहीं एक झोपड़ी बना लेते हैं, बड़ा आनंद में जिएंगे, भगवान का प्रार्थना भी करते रहेंगे, सूर्य सामने से उगता है। वो भक्त बना लिया झोपड़ी, बैठ गया। शाम को जब वो स्नान करके बैठा और ध्यान करके देख रहा है इधर उधर, तो नदी के उस पार एक कोठी, एक बड़ा सा बंगला। सोच रहा है कि वाह कितना शानदार बंगला है। अचानक उस बंगला के छत पर यानी बालकोनी पर एक बहुत खूबसूरत स्त्री आई और इसने सोचा कि ओ यही होगी ये घर की मालकिन। फिर देखते रहा, क्या देख रहा है कि एक पुरुष वहां पर आए वो गए, फिर दूसरा पुरुष आए फिर गए। अब ये देख रहा है कि कितने पुरुष आते जाते हैं, ये बीत होते होते कई दिन बीत गए और ये देख रहा है प्रतिदिन। बस इत्तेफाक से दोनों एक ही दिन का, इनके दोनों का मृत्यु हो गए, दोनों मर गए एक ही दिन। अब ये साधु बाबा को जमदूत लेने आए और वो औरत जो उस बंगले में रहती थी उनको देवदूत लेने आए, दोनों को ले जा रहे हैं। अब तो ये साधु बाबा सोच रहा है कि अच्छा कोई गलती हो गया ये समझ बुझने में, वैसे तो उल्टा होना चाहिए, देवदूत मेरे पास होना चाहिए और जमदूत वो लड़की के, वो औरत के पास। चलते चलते एक मोड़ पर आए, बाएं ओर नरक जा रहे हैं और दाएं ओर स्वर्ग। अब ये जमदूत साधु बाबा को लेकर नरक जा रहे हैं और वो औरत को लेकर जा रही है स्वर्ग को। बस ये साधु बाबा बिगड़ गए कि हाय क्या है खबरदार, मैं उम्र भर भगवान की भक्ति करने वाला, पूजा पाठ करने वाला, तू मुझे नरक क्यों ले जा रहे हो, हाय खबरदार। और ये औरत शरीर को बेचने वाली वेश्या को तुम स्वर्ग ले जा रहे हो, गलती कर रहे हो। अब ये झगड़ा करने लगे तो जमदूत ने सोचा कि बबुआ साला क्या झगड़ा कर रहा है, खोपड़ी का पीरा है ये, ले चलो इनको भगवान के पास, भगवान स्वयं निर्णय करे। ले गए प्रभु के पास दोनों को, ध्यान करना क्या मैं बतला रहा हूं, दोनों को ले गए भगवान के पास। अब ये बुढ़ा आदमी साधु बाबा भगवान से झगड़ा करने, हे प्रभु ये क्या अन्याय मेरे साथ हो रहा है, मैं उम्र भर आपका भक्ति करता हूँ, पूजा पाठ सेवा कर रहा हूँ और आप मुझे नरक भेज रहे हो, और ये औरत जो शरीर को बेचने वाली वेश्या है इनको आप स्वर्ग भेज रहे हो, खूब दिया भगवान। भगवान चुप होकर सुन रहे थे। जब ये साधु महाराज अपना कथा सुना चुके तो भगवान पूछते हैं कि हो गए ठीक बस, तो भगवान कहते हैं तू सुन, तू भले ही उम्र भर मेरे ही पूजा किया है, सब कुछ किया है, मगर शाम को स्नान करके जब तू अपने झोपड़ी के पास सामने बैठते थे और इस औरत के बंगला में देख रहे थे तो तू प्रतिदिन गिनती कर रहे थे कि कितने पुरुष उसके पास जा रहे हैं और कितने आ रहे हैं, ये गिनती तू कर रहा था और अंदर में अपने भीतर में तू उबी रंग ललिया मना रहे थे कि मैं भी जाना चाहता हूं देखने को कि कैसे क्या मजा मिलता है वहां, हम भी जाना चाहते, मगर तू गिरवा कपड़ा यानी साधु बाबा का कपड़ा पहिर कर
डर के मारे जा नहीं सकते थे, क्योंकि तुम्हें लोग साधु समझते थे, तू तो पुजारी है, तू धार्मिक है, धर्म प्रचारक है ना। तू मन ही मन में पाप कर रहा था और ऊपर से भक्त बना रहा था, तो मुझसे तुम्हारे ऊपर ऊपर से कुछ लेना देना नहीं है। तू अंदर से क्या है वो मेरे लिए महत्वपूर्ण है, बता है सत्य की झूठ है। तो ये बूढ़ा ने अपना सर नीचे कर लिया, क्योंकि सत्य बात रहा। इस ससुरा प्रतिदिन सोच रहा था कि हम भी जाए वहां कैसे लागी है, मगर डर के मारे जनता क्या बोलेंगी थी चुपचाप बैठे रहते थे। तो भगवान बोले, अब तू सुन ये औरत को जिसको तू वेश्या कह रही है, सुन, जब तू अपने झोपड़ी में घंटी बजा रहे थे, अगरबत्ती जला रहे थे, आरती गा रहे थे, शंक फूंक रहे थे, तो ये औरत अपने कोठी में वहां पर बैठकर इतना व्याकुल होती थी, तरफती थी, बेहोश हो जाती थी कि हे प्रभु, ऐसा दिन कब आएगा कि मैं भी आपका आरती उतारूं, हम भी अगरबत्ती जलाए आपके आरती करूं, पूजा करूं और आपकी सेवा कर पाऊं प्रभु। ये तड़पती थी शरीर से, इसने क्या की मजबूरी के कारण, मगर आत्मा से ये तो प्रतिदिन मेरे ही चिंतन में थे। तो आत्मा से तुम क्या कर रहे हो, आत्मा से तुम क्या हो, तुम्हारा भावना क्या है, ये हमारे लिए गिनती में है। और ना तू क्या पहन रहे हो, क्या खा रहे हो, क्या पी रहे हो, ये तो ठीक है, होना भी चाहिए, क्योंकि तुम्हें पेंशन सिस्टम से कुछ ना कुछ तो मिलेगा, कर्म के अनुसार कुछ ना कुछ तो मिलेगा, कोई जीवन में उसका फल मिलेगा। मगर इसी जन्म में तू मेरे को पाना चाहते हो तो तुम्हारा भाव कैसा है, आत्मा से कितना स्वच्छ हो, क्षमा करना। इससे हम आपको बतलाने की कोशिश कर रहे हैं कि हर एक आत्मा आत्मा है। तुम परमात्मा से किस तरह पेश आ रहे हो, बाहरी दिखावा भगवान के लिए कुछ भी नहीं है। अगर बाहरी दिखावा कुछ होता तो मरने के बाद परमात्मा तुम्हें शरीर सहित अपने पास बुला लेता, मगर तुम्हारा शरीर तो यहां छूट जाता है, सड़ जाता है, गंदगी, लोग कहते हैं कि भगाओ भगाओ हाली से, तो शरीर से नहीं और कर्म जो किए हैं उनके अनुसार अगले जन्मों भविष्य तुम्हारा बनेगा।

वर्णों और आश्रमों में श्रेष्ठ व्यक्ति वही है जो अपने कर्तव्य का पालन करता है, और जो कर्तव्य से गिरा हुआ होता है वो छोटा हो जाता है, छोटा हो जाता है।

महाकाय सूर्यकोटी संप्रभा निर्विधिनम कुरु मे देवा सर्वकार्यषु सर्वदा।

विष्णु गुरुर देवो महेश्वर गुरुर साक्षात पारब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। चरणं नमः विद्या प्रदायकं दीक्षं मंत्रं गुरु वंदे वंदे गुरु पद पुनम पुनम। फाउन रेडियो के सभी सुनने वालों को हार्दिक से अभिनंदन करता हूं और ये कहना चाहूंगा कि मैं हूं आपका सेवक संजय और आपके साथ इस समय जुड़ गए हैं।

जो बीमार है उनके लिए प्रार्थना किया जाता है कि उनके स्वास्थ्य में परिवर्तन आए। जिनके घर पे नया बच्चा आए है तो उन्हें हार्दिक से स्वागत और बहुत सा बधाई आप परिवार को दिया जाता है। जिनके आज जन्मदिन है उनके भी बहुत बहुत बधाई दिया जाता है।

सभी जो अपने नौकरी के लिए तैयारी कर रहे हैं तो उन्हें अम्प्रतख वैरक दाखतु खवंस। जो अपने स्कूल के तैयारी में लगे हुए हैं तो उन्हें भी शुभकामनाएं प्रस्तुत करते हुए और ये कहना चाहूंगा, हर बार की तरह कि माँ सरस्वती को भूलना नहीं, बुद्धि और ज्ञान के बांटने वाले माँ सरस्वती को जरूर नमन कर लेना।

जो हमारे देश में सफर से आए हैं तो उनको ये कहना चाहूंगा कि वेलकम इन नीदरलैंड लैंड फॉल मेट प्लेक वार ये कान बशिख्तिगे कुंस्ट एंड कल्चर मेट मोय मार्क्टन Brugge in Nederland. Mooie gebouwen langs Amsterdam en over het hele land. Maar jo Amsterdam mein kaha jata hai, unko dekhne ke liye log kitne deshon se aate hain. Langs de snelweg. इसी तरह से और भी सुंदर सुंदर घरों जो हमारे देश में बनाया गया है जिनके आर्किटेक्ट ऐसा ऐसा काम करके रखे हैं उनके देखने के लिए बहुत से देशों से लोग आते हैं कुछ सुंदर सा घर जो नौ तौर में भी बनाया गया है जिनको देखने के लिए लोग अनेकों देशों से आते हैं Architect van Nederland. इसी प्रकार से हर एक शहरों में कुछ न कुछ है जो आप देख सकेंगे और जो सफर पे जाने वाले हैं उनके लिए ये कहूंगा कि समय पे उपस्थित हो जाना ताकि आपको कोई तकलीफ ना पहुंचे सुनने वालों हम पहला भजन की ओर बढ़ेंगे

निखिल वर्मा की आवाज में ये सुंदर सा भजन हम सब सुने। सुनने वालों, कहते हैं कि मंजिले मुझे छोड़ गई, रास्ते ने पाल लिया है, जा जिंदगी तेरे जरूरत नहीं, मुझे ठाकुर ने संभाल लिया है। हम अगला भजन की ओर बढ़ेंगे।

दो ही मकसद है मेरे जीवन के, तुझे पाना या तेरा हो जाना। ये सुंदर सा भजन हम सुने सिंपाल खारल की आवाज में। हम अगला भजन की ओर बढ़ेंगे।

इंसान हमेशा अपने भाग्य को कोसता है, ये जानते हुए भी कि भाग्य से भी ऊंचा उसका कर्म है जो उसके स्वयं के हाथ में है। आप सभी को एक सुप्रभात कहते हुए हम अगला भजन की ओर बढ़ेंगे। राधा नाम की माला गजेंद्र प्रताप सिंह और निखार जूनियर ने गाए हैं।

चाहते हैं कि जिंदगी में ऐसा कुछ करो कि काम दोनों का चलता रहे, अध्ययन भी चलता रहे और दिया भी जलता रहे। सुना लो, हम अगला भजन की ओर बढ़ेंगे।

गाय ने केला देखकर और मुंह मोड़ लिया। सुनने वालों, एक महिला ने गाय के सामने जाकर फिर उसके मुंह में केला देना चाहा, लेकिन गाय ने केला नहीं खाया। पर महिला केला खिलाने के लिए पीछे ही पड़ गए थे। जब महिला नहीं मानी तो गाय सींग मारने के हो गए। महिला डरकर बिना केला खिलाए चले गए। महिला के जाने के बाद पास खड़े एक सांड, जिसे हम बैल से जानते हैं, और पूछा, वे इतने प्यार से केला खिला रहे थे, आपने केला क्यों नहीं खाया और उसे डराकर भगा भी दिया? गाय बोली, प्यार नहीं मजबूरी है, आज एकादशी है, महिला मुझे केला खिलाकर पुण्य कमाना चाहते हैं, वैसे ये मुझे कभी नहीं पूछती, गलती से उसके मकान के आगे चले जाती हूँ तो डंडा लेकर मारने को दौड़ती है, प्रेम से सुखी रोटी भी मिल जाए तो अमृत तुल्य है, जो केवल अपना भला चाहते हैं वे दुर्योधन हैं, जो अपनों को भला चाहते हो वो युधिष्ठिर है, जो सबका भला चाहते हो वो कृष्ण कहलाते हैं।

की प्रार्थना सदा कुछ मांगने के लिए नहीं, अपितु ईश्वर ने जो कुछ दिया है उसके प्राप्ति आभार व्यक्त करने के लिए होनी चाहिए। और जो हमारे देश में सफर करने को आए तो उनसे ये भी जरूर कहना चाहूंगा कि हमारे दनहाग शहर में जो मार्ग कहलाते हैं द ग्रोथ्स द मार्ग फॉर यूरोपा, 3 keer 450 मीटर लंग, और जहां से दुनिया के हर एक प्रांतों से लोग वहां भी अपना सामान लेने को आते हैं, सुनो हम अगला भजन की ओर बढ़ेंगे।

कहते हैं कि जिसके साथ बात करने से ही खुशियाँ दुगनी और दुख आधा हो जाए, वही अपना कहलाते हैं।

किसी ने अच्छा कहा है कि नया रोशनी नया दिन एक शुभ दिन आपको प्रस्तुत है। हैव अ ब्यूटीफुल डे। जो इस समय अपने कार में ये कार्यक्रम को सुन रहे हैं उन्हें शुभ यात्रा कहा जाता है।

रूबरू मिलने का मौका नहीं पा रहा, अतः शब्दों से अपनों को नमन कर लेता हूँ। प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी रूप में श्रेष्ठ होता है, इसीलिए आपकी श्रेष्ठता को हार्दिक से नमस्कार करता हूँ। सुनने वालों, ये है फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो और यहाँ से औख्तन भजन प्रोग्राम में मैं आपके साथ जुड़ गए हैं। जो छुट्टी मनाने के लिए हमारे देश में आए हैं उनको बहुत से स्वागत किया जाता है। हमारे देश हॉलैंड जो जिसमें चार ऋतुए हैं, विंटर, विंटर के बाद में आ जाता है लंत, फिर सोमर आ जाता है और सोमर के बाद में फिर हरफ्स आ जाता है, और जब ठंडी का समय होता है तो एक देश जो फूलों से भरे हुए है और पेड़ों तथा सभी वृक्षों जिसमें पत्ता नहीं होते हैं, पर एक ऐसा देश है जहां पर आपके लिए बहुत सा व्यवस्था किया गया है। Land met de meeste musea's misschien. दुनिया के हर एक अवलोक आते हैं हॉलैंड का दर्शन करने के लिए। कहा जाता है कि ये देश में 631 631 म्यूजियम से Een land vol met geschiedenis en kunst.

सुनने वालों, हम आज आपके साथ औक्तन प्रोग्राम में जुड़ गए हैं और ये कार्यक्रम में मैं आपके लिए पहला जो हमारा मांग किया गया भजन रखने वाले हैं।

तुम अपने रंग में माँ दुर्गे। दनाख फोर पार्क लाइटसफेन आनंद शर्मा ग्रोथ हैंडल बेफे जिनका तार का नंबर 0655732867 है। ग्रोथ हैंडल के कोई भी अवसमान आपको जरूरत है तो जरूर भाई आनंद शर्मा से मालूमात कीजिए। कहते हैं कि छोटी छोटी खुशियां ही तो जीने की सहारा बनती है, इच्छाओं का क्या वो तो पल पल बदलती है।

अगला स्पॉन्सर किया गया और भजन जो भी दना फोरक पारक लाइट सफेन सुंदा खुरुंतन एंड फ्रायत, जिनका मालिक श्रीमान परशुराम मोहलाल जी है, जिनका तार का नंबर 0622795862 है, उनके ओर से ये सुंदर सा भजन

जब भी कोई काम कीजिए तब माता रानी का ध्यान धरिए। और ये सुंदर सा भजन जो हमारे लिए स्पॉन्सर किया गया है ख्रोत हांदल जो लाइसफेन फोर पारक दनहाक्षे शुंदा खुरुंतन एनफ्राइट, जिनका मालिक श्रीमान परशुराम मोहलाल जी है, जिनका तार का नंबर 2279586 है।

दोस्त, किताब, रास्ता और सोच, ये चारों जो जीवन में सही मिले तो जिंदगी निखर जाती है, वरना बिखर जाती है।

सुनो वालों, अगला जो हमारा स्पॉन्सर किया भजन है, फोर पारक दनहाग शहर लाइट्स फेन दे हा एर बॉ एंड ऑनर होल्स बद्रैव, जिनका मालिक श्रीमान देव नारायण हरिदत्त रोहित जी है, जिनका तार का नंबर 9626 0241 है। उनके ओर से ये सुंदर सा सरस्वती माता का भजन जो हम आपके लिए प्लेयर पे रख देते हैं।

वादिनी ज्ञान की देवी, ये सुंदर सा भजन जो हमारे स्पॉन्सर किया गया प्रोग्राम जो श्रीमान देव नारायण हरिदत्त रोहित जी ने जो DHR बाउ एंड ऑन द रोड्स बद्रेव का मालिक है, जिनका तार का नंबर 06260702241। अगर आपको कोई प्रकार के ऑनरहाउस वर्कशॉप हेदन के बारे में प्रश्न करना है तो दनहाग शहर फोर पार्क लाइट सफेन से श्रीमान हरिदत्त रोहित जी को जरूर और मालूमात कीजिए।

दुनिया का सबसे पवित्र पौधा विश्वास का होता है, जो धरती पर नहीं दिलों में उगता है।

Je Sundar Sa Bhajan Jo Den Haag, Mekkeenstraat 6, Hindu Basisschool Fahon Vereniging Algemene Hindu Onderwijs Nederland ke or se rakha gaya. Aur sunne walo, agla bhajan ke or hum badhne wale hai, par is or badhne se pehle zarur is baat ko zikr karna chahunga ki jab hum bade ho jate hai to hame पेंसिल के बदले में पेन इसीलिए दिया जाता है ताकि हम समझ जाए कि हमारी गलतियां को मिटाना अब आसान नहीं है। अगला जो हम भजन जो हम चुन करके रखे हुए हैं वो है सुरिनाम लिफोर्नो मेनकंदम हुक इंदिरा गांधी वेख श्री भक्तराज शिव पार्वती मंदिर जिनका सभापति श्रीमान सुभाष महावीर जी है जिनका तार का नंबर है 00597867757877। हम उनके ओर से ये सुंदर सा भजन आपके लिए रखने वाले हैं।

ये सुंदर सा भजन का स्पॉन्सर करने वाले है सूरीनाम लिफोर्नो मैनकंदाम हुक इंदिरा गांधी वैख श्री भक्तराज शिव पार्वती मंदिर जिनका सभापति सुभाष महावीर जी है। हम न्यूज और कमर्शियल की ओर बढ़ेंगे और उसके बाद में फिर आपके साथ जुड़ जाएंगे

छोड़ना, तेरा सायों का रुख मोड़ना।

बारिशों में बेधड़क तेरे नाचने से, बात बात पे बेवजह तेरे रूठने से, छोटी छोटी तेरी बचकानी बदमाशियों से मोहब्बत करूंगा मैं, जब तक है जान, जब तक है जान।

हाथों से, तेरे जलते सुलगते ख्वाबों से, तेरी बेरहम दुआओं से नफरत करूंगा मैं जब तक है जान।

फिल्म से निकाला हुआ ये सुंदर सा गीत एक नया फिल्म है जिसमें आहान पांडे जो काम किए हैं और मेरे ख्याल से ये आहान कोई और नहीं है चौंकी पांडे का भांजाल यानी कि उनका नेफ कहा जाता है। दोस्तों मैं हूँ आपके साथ जुड़ा हुआ हूँ और कुछ नए नए गीतों के साथ हम कुछ समय तक आपके साथ व्यतीत करेंगे। दूसरा गीत जो हमने प्लेयर पर खोज करके रखे हुए हैं एक फिल्म जो 2025 में नई खंती मार्च में जो जिसका प्रीमियर हुआ है उससे पहले कितना पैसा कमा चुका थे और फिल्म जो एक मारतार वाला फिल्म है खूब धुरंधर नाम जिनमें रणवीर कपूर रणवीर सिंह ने काम किया ना रणवीर सिंह ने काम किया है और आदित्य धार जो ये फिल्म को डायरेक्ट किए है तो इसमें भी सुंदर सुंदर गीतों के साथ देखते हैं और प्लेयर पे तो चुन करके मैंने रख चुका है तो चलाते हैं और देखते हैं उसमें क्या और

एक फिल्म जिससे बॉलीवुड काफ़ी पैसा कमा रहे हैं, और एक फिल्म जो कि कहा जाता है कि पाकिस्तान और इंडिया के कुछ समस्याएं इसमें रखा गया है। दूसरा भाग जो बनाया गया है वो लगभग 4 घंटे के है, और एक फिल्म जिसे हम लगातार देखते रहते हैं। हमने तो कहा गया कि बियोस्कोप में ऐसा होता है माहौल कि शायद इंटरफॉल भी नहीं रखा जाता है, और कोई उठकर जब वहाँ से बाहर निकलता नहीं है, क्योंकि ये इतना सुंदर रूप में अब बनाया गया है कि आप सौ न्यूज़ीर बै हम नाटक आएगा। इसी प्रकार से और भी फिल्मों जो बॉलीवुड 2025 और 2026 में रिलीज़ करने वाले, एक और भी सुंदर सा गीत मैंने प्लेयर पर चुन करके रखे हैं, कोई और नहीं, और जिसमें अक्षय खन्ना और जाह्नवी कपूर के

सुन, कोई और नहीं, बस सिर्फ तुम हो, तुम ही तुम हो। और एक फिल्म जिसमें अक्षय खन्ना, जानवी कपूर ने काम किए, रोमांटिक बॉलीवुड सॉन्ग जो 2025 में आया। अगला गीत हमने प्लेयर पर चुन करके रखे हैं, सुनने वालों, टाइगर 3, सलमान खान और कतरीना का फिल्म।

प्रभु का नाम तो सब कहते हैं कि कोई भी काम करो तो लेकर प्रभु का नाम। तो यहाँ तो अपना संगीत में उन्होंने ये रखा कि म्यूजिक स्टार्ट करो तो लेकर प्रभु का नाम, पर कहने के तात्पर्य यह है कि कोई भी काम शुरुआत करो तो प्रभु का नाम लेकर। अगला सॉन्ग जो हमने चुन कर रखे हुए है वो हम सफ़र मेरे शाहिद कपूर और कृति सनान, एक रोमांटिक सॉन्ग है जो भी नया 2026 में और ये फिल्म रिलीज किया गया।

सुनने वालों, ये सुंदर सा गीत निकाला गया एक फिल्म जिसमें शाहिद कपूर ने 2026 में फिल्म रिलीज हुआ और हम सफ़र मेरा। हम अगला गीत जो चुन करके रखे हुए हैं और अगला गीत का बोल ऑल्सो बॉलीवुड तो रोमांटिक सॉन्ग देखते हैं और इसमें क्या संदेश रखते हैं, किस प्रकार से अपना रोमांस को और रखते हैं।

तू ही मेरा आज और तू ही मेरा कल, अ हिंदी इंग्लिश डुएट जो एत शेरान और श्रिया घोषाल अपने आवाज में रखे अति सुंदर रूप से और अपना रोमांस को प्रकट किए। दोस्तों, हम अगला गीत जो दिल तेरा नाम रणवीर सिंह जिस फिल्म में काम किया है 2026 में जो रिलीज हुआ धुरंधर, उससे एक और गीत रखेंगे।

0: समझ रहे हो, ये जगह सही नहीं है अर्जुन।
1: ये भूत बंगला जो फिल्म बनाया गया है और 2026 में रिलीज होने वाला है, प्रिया दर्शन फिल्म, जो काफ़ी दिनों से प्रिया दर्शन ने फिल्म नहीं बनाए थे और अब अक्षय के साथ, अक्षय कुमार के साथ जो ये फिल्म बनाया गया है, एक भूत बंगला जो एक कॉमेडी फिल्म में कहा गया है। और प्रिया दर्शन के फिल्म में तो कॉमेडी और कुछ उस हर एक फिल्म में उसका देखा जाए कि लोग एक दूसरे के पाछे दौड़ते तो जरूर है। और अभी तो रिलीज नहीं हुआ पर हाल ही में रिलीज होने वाले हैं। और अगला गीत जो हमने चुन करके रखे हुए दोस्तों प्लेयर पे, वो भी एक 2026 का फिल्म जो कि इमरान हाशमी और राशि खन्ना का फिल्म है, रोमांटिक सॉन्ग दिल में तू।

लव स्टोरी 2026 का, जिसमें इमरान हाशमी और राशि खन्ना ने काम किया रोमांटिक सॉन्ग्स में, और जो 2026 से जुड़े हुए एक और गीत जो हमने चुन करके रखे हुए है, और आवान जवान वॉर टू से निकाला गया है, जिसमें काम किए हैं ऋतिक रोशन और कियारा अतवानी। कियारा अतवानी और ऋतिक रोशन ने इस फिल्म में अपना कला से प्रदर्शन दिए हैं।

ऋतिक रोशन और कियारा आडवाणी का फिल्म जो जिसमें से ये सुंदर सा गीत निकाला गया। दोस्तों यहाँ तक मैं आपके साथ जुड़े रहे, हम न्यूज़ और कमर्शियल की ओर बढ़ रहे हैं।

मैंने प्यार किया तुम्हें रीजन से अभी आप सुन रहे थे द टाइटल फ्रॉम द मूवी सावन। प्यार में कभी कभी है फिल्म का नाम। इसी फिल्म से हम पेश करते हैं मुसु मुसु हासी।

0: Hoshi. I'm sorry.
1: प्यार में कभी कभी है फिल्म का नाम इसी फिल्म से हमने पेश किए हैं मुसु मुसु हाँसी। दिल है छोटा सा छोटी सी आशा।

0: रोजा है फिल्म का नाम। इसी फिल्म से हमने पेश किए है दिल है छोटा सा छोटी सी आशा। एक बहुत सुंदर सा गीत हम पेश करने वाले हैं यहाँ पर सभी के वास्ते। सोनू निगम जी की आवाज में आप सुनेंगे।
1: You and Robbie, huh? What's up?
2: Whatever.
3: Hey, but where's Rohan?
2: I don't know, and I don't care. I hate him.
4: But I love you.

देखा तुमको जब से बस देखा तुमको यारा, अलका याग्निक के साथ में सोनू निगम जी आपको सुनाने वाले थे। दीवाना है देखो बेकरार।

0: आयू
1: दीवाना है देखो बेकरार। अभी आप सुन रहे थे अलका याग्निक और सोनू निगम जी की आवाज में। कल हो ना हो है फिल्म का नाम। इसी फिल्म से हम पेश करते हैं प्रिटी वुमन।

प्रिटी वुमन भी आप सुन रहे थे, और प्रिटी वुमन के बाद हम पेश करते हैं ये सुंदर सा गीत आप सभी के वास्ते।

जग घूमया थाड़ी जैसा न कोई, अभी आप सुन रहे थे फ्रॉम द मूवी सुल्तान से हमने पेश किए हैं, अक्रोच है फिल्म का नाम। इसी फिल्म से आप ये सॉन्ग सुनेंगे।

0: हमारे गांव शबरामपुर।
1: आक्रोश से अभी आप सुन रहे थे सौदेबाजी, ब्लैकमेल है फिल्म का नाम। इसी फिल्म से हम पेश करते हैं तूने दी बेकरारी।

फ्रॉम द मूवी ब्लैकमेल से हमने पेश किए है तूने दी बेकरारी ए मेरे सनम, मैं रंग शरबतों का तू मीठे घाट का पानी। फ्रॉम द मूवी फटा पोस्टर निकला हीरो।

जी हाँ दोस्तों, भी आप सुन रहे थे हर किसी को नहीं मिलता यहाँ प्यार जिंदगी के मूवी जानबाज। चलो हम अगले फिल्म के नाम बताते हैं जो हिट था। ये दोनों फिल्म के गाने बहुत हिट था जिस साल में ये रसील हुआ था, काफ़ी हिट थे ये फिल्म। और ये देखा जाए फिल्म कुर्बानी बहुत हिट रहा फिल्म हुआ भी और उसके गाना भी। आशा भोसले मोहम्मद रफ़ी गाई सी गाना और कल्याण जानन जी इसका म्यूजिक है, लायरिक्स इंदिवर है। फिल्म कुर्बानी, फिरोज खान, सिना तमन्ना।

जी हाँ दोस्तों, क्या देखती हो सूरज तुम्हारी, क्या काफ़ी हलचल मचा रखा था इस गाना। इस गाना एक टॉप मूवी का गाना है, फिल्म कुर्बानी, और हम आप लोग को ले चलेंगे भी फिल्म जाबा से। मैंने कहा था दो फिल्म के गाने मैं आप लोग के सुनाने वाला हूँ, काफ़ी अच्छे अच्छे गाने हैं। फरीदा फरीदा फिर तीन ऑर्केस्ट्रा हो चुका है 2026 फरीदा के दोस्तों, कुछ ऐसा गाना हो जाए गीत, अभिनय से तनी से झलक ले। अभी आएगा बैठक गाना, 12 बजे से 1 बजे तक प्रोग्राम बैठक गाने का है। चलो देखते हैं सिंगर सपना, म्यूजिक कल्याण जी आनंद जी, इन दिवर लिखा, लाइरिक जो लिखा है सजाया है, और मूवी जाबाज़।

जी दोस्तों, याद करो उस दिन जब इस फिल्म को हम देख रहे थे। मैं अगर याद करूंगा इस मूवी को जब देख रहा था, मैंने कहा कौन सा इतना अच्छा मूवी, बहुत अच्छा मूवी थे, काफ़ी नाम कमाया है और काफ़ी हलचल मचा रखा था उस वक्त पे। ठीक है दोस्तों, ये था मूवी जानबाज। चलो हम चलते हैं मूवी कुर्बानी से, जहाँ देखा जाए नाज़िया हसन, म्यूजिक है मिदु और लाइरिक्स है इंदिवर, जिसमें फिरोज खान, सीना तमन ने काम किया है।

जी हाँ दोस्तों, आप जैसा कोई ही मेरी बात बन जाए। अभी आप सुन रहे थे मूवी कुर्बानी। चलो हम ले सकते हैं आप लोग के मूवी जानबाज़।

जी हाँ जी हाँ जी हाँ दोस्तों, प्यार दो प्यार लो, फिल्म जहांबाज जिसमें फिरोज खान, अनिल कपूर, श्रीदेवी और दीपक कपाड़िया ने काम किया है। ठीक है दोस्तों, हम आप लोग के लिए चलते हैं मूवी कुर्बानी। निखिल दिन तख तक में लोग जाने फिल्म वो बना ले, और एक बहुत हिट गाना रहा लैला ओ लैला, कंचन और अमित कुमार इस गाने को गाया, और म्यूजिक कल्याण जी आनंद जी। चलो सुनते हैं।

0: जी हाँ जी हाँ दोस्तों, लैला ओ लैला याद करने के दिन तक तक में जी फिल्म निकला ते गाना क्या करी सहा, हाहाकार मचा दिया था यार। आज आप तक हम पहुंचाते हैं, एक बार फिर से याद आ गया 1980 में हम क्या थे, इस फिल्म मूवी क्या था, वक्त क्या थे और ये मूवी क्या था। चलो हम आप लोग के ले जाते हैं, आज जुमा है, हर एक को जुमा मुबारक हो, और हम ले चलते हैं जाबास नेकतिन जैसन तख्त में। देखिए कल्याण जी आनंद जी की म्यूजिक क्या है, चलो मिलके सुनते हैं।
1: हयात आए कजा ले चली चले, अपनी खुशी ना आए ना अपनी खुशी चले,

जी हाँ दोस्तों, मूवी जानबाज ने कहा ससन तक तक का ये गाना है, और एक हिट गाना ये भी था जिसमें अनिल कपूर, जी देवी, डिंपल कपाड़िया, फिरोज खान ने काम किया है। चलो दोस्तों, लेकिन ससन तक तक का ये फिल्म था और ये गाना भी। चलो हम आप लोग के लिए चलते हैं, देखा जाए मनहर उदास, आनंद कुमार, हम तुम्हें चाहते हैं, ऐसे कुर्बानी से निकाला हुआ फिल्म है, ये मूवी है, काफ़ी अच्छे है। कल्याण जानन जी का म्यूजिक है और कलम चलाया गया है इंदिवर लाइरिक्स। चलो मिलके सुनते हैं।

हम तुम्हें चाहते हैं ऐसे मूवी कुर्बानी अभी आप सुन रहे थे दोस्तों निखिल जी तक तक का है मैंने उदास अनंत कुमार और देखा जाए तो कंचन का वास मैंने भी सुना है। ठीक है दोस्तों हम चलते हैं ले चलते हैं तेरा साथ है कितना प्यारा निखिल जी ससन तख्त के फिल्म चाबास किशोर कुमार और सपना मुखर्जी की आवाज़

जी हाँ दोस्तों, तेरा साथ है कितना प्यारा, बोले हमें आना पड़ेगा दुनिया में दोबारा। सही कहा है, हम सबको आना पड़ेगा दुनिया में दोबारा। जो जो जोन जोन काम ना हो पाए बा, बढ़िया बढ़िया काम पॉजिटिव हम लोग एक बार फिर से कर सकते हैं। मुझे भी आना है इस दुनिया में दोबारा। चलो दोस्तों, ले चलते हैं कुर्बानी की तरफ और देखा जाए किशोर कुमार, अनवर, अजीज नजर, कल्याण जी का म्यूजिक है इंदौर का लाइरिक से। मिलके सुनेंगे मूवी कुर्बानी, जो टॉप मूवी थे

0: जी हाँ दोस्तों, एक आखिरी गाना था कुर्बानी का और मूवी जान बास मैंने आप लोग सुना दिया था। मैं फिर से एक बार कहता हूँ, डायरेक्टर कुमार गिराव को हम सलाम करते हैं, राम राम कहते हैं। हमारा पूरा टीम फाहुन के जितना कोलिखा से उम्र ऊपर से सभी को हम राम राम कहते हैं। हर एक को मैं राम राम एक बार फिर से कहता हूँ, जहाँ तक की आवाज़ पहुँचे वहाँ तक हमारा पैगाम पहुँचे, ढेर सारा मोहब्बत पहुँचे। चलो दोस्तों, जहाँ पे दुख है सुख है, हमारा पूरा टीम आप लोग के साथ है, यही मैं आप लोग के बताना चाहता था। और देखा जाए आज शुक्रवार है, फिर 3 अगस्त 2026 में चल चुके हैं, वीकेंड हो चुका है। टाइम देखा जाए तत्व हो रहा है 3:04 12 हो रहा है। हम चलेंगे न्यूज और कुछ रिक्लाम की तरफ, उसके बाद हम आ रहा है फिर से यू गया यू आया।
1: म्यूजिक एंड इंफॉर्मेशन बाय फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो।
2: Dit is het Vahon Hindustani Radio Nieuws. Goedemiddag, ik ben Bart Meijer.
3: Bij een ongeluk met 4 auto's op de A59 bij Hees zijn vanochtend 2 mensen om het leven gekomen. Ook raakten meerdere mensen gewond. Het ongeluk gebeurde aan de achterkant van een file die was ontstaan door trekkers die op weg waren naar het provinciehuis in Den Bosch. Daar wordt gedebatteerd over het intrekken van vergunningen van pluimveehouders. Of de file direct de oorzaak is van het ongeluk wordt nog onderzocht. Trekkers mogen officieel niet op de snelweg rijden, maar de politie en het OM hebben vooraf afgesproken om niet in te grijpen vanwege het demonstratierecht. Afgebroken motoronderdelen hebben vorige maand het raam van een Ryanair-vliegtuig vernield, waardoor een man deels naar buiten werd gezogen. Dat schrijven Amerikaanse onderzoekers in een voorlopig rapport. In de rechtermotor van de Boeing brak vlak na het opstijgen een blad van de turbofan af. Rondslingerende stukken braken het raam en beschadigden de romp. De Duitse autoriteiten zijn vanochtend begonnen met de evacuatie van 1800 inwoners van het dorp Jay vanwege een natuurbrand. Het vuur is het dorp tot zo'n 200 meter genaderd. De bewoners zijn opgevangen in een basisschool in een nabijgelegen dorp. Jay ligt op zo'n 40 minuten rijden van de Nederlandse en Belgische grens. En honderden huisartsenpraktijken gebruiken kunstmatige intelligentie om automatisch verslagen te maken voor een patiëntendossier. Volgens een enquête van onderzoeksinstituut Nivel gebruikt intussen 36% van de praktijken deze spraakgestuurde rapportage, vergeleken met 14% een jaar eerder. Het systeem werkt nog niet perfect en ook is het onduidelijk of het voldoet aan de privacywetgeving. Het weer nog. Vandaag hebben we nog te maken met een hoge drukgebied dat zorgt voor zonnig weer. De temperaturen lopen op van 30 graden in het noordwesten tot wel 37 graden in het zuidoosten. Vanaf morgen slaat het weer om. Het wordt wisselvalliger en de temperatuur gaat omlaag.
2: En tot zover het nieuws op Fahon Hindustani Radio.
4: Hari kaam ke liye, har advertensi ke liye, maut ke samachar, farmaishe ya jo bhi khabare aapko dena hai. आप जाइए, हमारा वेबसाइट है और हमारा ईमेल है info@fahonfm.nl। हर एक एडवर्टेंसी, हर एक काम के लिए आप तार कर सकते हैं सोमवार से लेकर शुक्रवार तक, सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक, और टेलीफोन नंबर 07-3652-2447। मेरे इन्फो www.radiofahonfm.nl of mail ons op info@fahonfm.nl. Nogmaals, maandag tot vrijdag tussen 9 en 5 kunt u bellen op nummer 070-365-2247.
0: Ja, dus abhi aap sun rahe the news aur kuch reklam. Theek hai dosto, jaise maine program ko bana आप लोग से बता दिया है आज का प्रोग्राम क्या है। देखा जाए 5:12 हो चुका है, 12 बजे से 1 बजे तक कुछ बैठक कुछ नाच वाला गाना हो जाए, क्योंकि आज वीकेंड हो चुका है दोस्तों, सुख हो चुका है। और 12 बजे से 1 बजे 2 बजे तक लोग खाते हैं, 1 बजे तक जो कुछ ब्रेड खाते हैं, कोई बोलते हैं जो देखते इसका सी हम कलियाँ खाई को आबा डोक्सवा गरमा दे, ठीक है जो भी आप खाते हैं भोजन की तरफ से। खाने के जब खाना शुरू है तब कुछ चटनी आप लोग को सुनाने वाला है। और हम चला जाते, ये भी कहना चाहता हूँ, लाइने खुल चुका है दोस्तों, हमारा लाइन खुल चुका है 1 बजे से 3 बजे तक हम सिर्फ फरमाइशें चलाएंगे, सही जवाब पे हम फरमाइशें चलाएंगे। ऐसा कौन सा चीज़ है जे ओकर काटे है ओकर चमड़ा निकारे बको के ना पीला है, जे काटे उ रोवे है कौन सी बात, ठीक है दोस्तों। हम मैंने कह दिया है और देखा जाए तो दूर दूर से लोग प्रोग्राम को सुनते हैं, लेवादा से सुनते हैं, सुरीनाम से सुनते हैं, जर्मन से सुनते हैं, देनाक शहर से सुनते हैं, अलमेरा से सुनते हैं, ब्रेजा से सुनते हैं, जहाँ जे जहाँ सुनते भाई, एक बार फिर से शुक्रिया इसे प्रोग्राम को सुनते रहना, क्योंकि हम सब चून हैं द एफ अगेन लव फाहोन एफ एम हिंदुस्तानी रेडियो पे, हम सब चून हैं देनाक शहर से, हम इस प्रोग्राम को करते हैं और हम ले चलते हैं तवेंद्र सिंह शिवनाथ, क्योंकि आज वीकेंड हो चुका है और आप लोग खाने को तैयार कर चुका है। चलो हम सुनते हैं सिर्फ बैठक गाना, इस पर आप चुनमुन करना चाहता है, डांस का दूसरा नाम है चुनमुन। अगर आप घर पे चुनमुन करना चाहते हैं इस गाने पे, वेलकम, आप चुनमुन कर सकते हैं। हम तो यहाँ बैठे बैठे चुनमुन कर लो, राबिया जी भी इस वक्त स्टेडियो में, वो भी चुनमुन करेगा, हम लोग मिलके इस गाने पे चुनमुन करते हैं, क्योंकि वीकेंड हो चुका है।

जी दोस्तों, द किंग देवेंद्र सिंह शिवनाथ और लाइव रिकॉर्डिंग है दोस्तों, लाइव लाइव लाइव रिकॉर्डिंग है। क्या आवाज है, क्या अंदाज में, ये हमारा किंग है, बैठक किंग। दोस्तों हम चलते हैं, सुरिनाम का एक कलाकार है क्रिस राम खेलावन, नया गाना है, नया क्लिप बना है इसका, और चलो मिलकर सुनते हैं, क्या ये सुनाते हैं आप खाने के टाइम पे चटनी।

जी हाँ दोस्तों, पायलिया बाजे लगे पायलिया भी आप सुन रहे थे। क्रिसवम केलामन की आवाज, सुरीनाम देश का है, काफी अच्छे गाते हैं और ये न्यू गाना है इसका जो YouTube पे आ चुका है। उसे जाइए YouTube पे देखिए और उसे दम कर दिए, देखिए और क्या अंदाज में गाया। इसका क्लिप बहुत अच्छा है, क्लिप बहुत अच्छा बना है। ठीक है, हम ले चलते हैं रमेश चंद्र बिहारी, मेरा दिल की घड़ी करे टिक टिक टिक।

जादू तो भी आप सुन रहे थे रमेश चंद्र बिहारी, मेरे दिल की घड़ी कड़े टिक टिक टिक बजे रात की 12 बजे तक, 1 बजे तक चलेगा ये। आप जो खा रहे हैं खाने के वक्त पे कुछ चटनी नगमा हो जाए, कुछ बढ़िया बढ़िया गाने हम लोग सुनाने वाला है। चल हम ले चलते हैं रजत शिवनंदन की तरफ।

जी हाँ जी हाँ जी हाँ, गुजरा हुआ जमाना, रजीश सिंह नंदन के आवाज में अभी सुन रहे थे आप। चलो हम लोग के लिए चलते देवेंद्र सिंह शिवनाथ और सविता सिंह, मैं भौंरा तुहे फूल, 2026 का नया गाना है। आप इसका क्लिप देख सकते हैं, देवेंद्र सिंह शिवनाथ, सविता सिंह।

जी हाँ दोस्तों, दमेंद्र सिंह शिवनाथ कहते हैं, हमें दुनिया से नहीं है काम, मैं भौंरा तू है, मैं भौंरा। आप जानते हैं सविता सिंह से इसका जो लव के कहानी था सच में है, दोनों शादी कर लिया और कहता है इसका उकल लेती है, यार सही कहते हैं, मुझे दुनिया से नहीं है काम। ठीक है दोस्तों, हम चलते हैं ठंडे खाने के बगल में, गर्मे गर्मे गाना हम आप लोग को सुनाते हैं। सुखवार है, देखा जाए आख फोर हाफ एट हो चुका है, आज फ्राइडे आखिर फिर तीन और क्रिसमस 2026 में हम चल चुके हैं। देखो कमला अब तो ना हुई है जवान, सुरेन भगवान दिन की आवाज़ दोस्तों।

जी हाँ दोस्तों, कमला अब तो ना हुई ये जवान, सुरेन भगवान दिन की आवाज जिसे हम बिरबल कहते हैं, हमारा उम्र ऊपर है पवन का। ठीक है दोस्तों, हम चलते हैं हमार मसीनिया त्रिनी के दविंदर सिंह शिवनाथ की आवाज हम सुनाएंगे। जैसे मैंने कहा है, ठंडे गाना के बगल में गर्मी गर्मी गाना, चटनी गाना

वाह वाह वाह रे शिवनाथ। दविंदर सिंह कहते हैं अकेले के देखिए चिखिए नहीं। वाह रे दविंदर, क्या गाना गाया यार, बहुत अंदाज में गायले और क्या अच्छा गाना है। हमार मसीनिया त्रिनी कहे उसे दो दो खेवावे। ठीक है, हम चलते हैं, देखा जाए सुदेश सिउदीन और मिस रेणुका।

जी हाँ दोस्तों, छलकी न जाए ज़्यादा छलकी न जाए, सुदेश शिवदिन और मिस रेनुका अभी आप सुन रहे थे। ठीक है दोस्तों, जैसे मैंने कहा था अभी 1 बजे से 3 बजे तक होगा सवाल और जवाब। तार का नंबर है 9 6 4 3 8 0 8 3 3 2। इस पर मुझे ऐप कीजिए। एक बार फिर से सवाल मैं करता हूँ। बोले ओकर हाथ ओके, बोले काट के चमड़ा निकाले है, जेकर चमड़ा निकसे ओके पिलाना है, मजे काट के निकाले उरोवे है कुंजवा। ठीक है दोस्तों, काफ़ी काफ़ी अच्छे जवाब आया है। तब तक के लिए हमने चलते हैं दविंदर सिंह शिवनाथ।

ये मान दविंदर सिंह शिवनाथ को आवाज भी सुने थे हम, एक बार फिर ले चलते हैं दविंद्रनाथ शिवनाथ और सविता सिंह दो साथी।

ठीक है दोस्तों, दविंदर सिंह शिवनाथ और सविता सिंह सच में ये सब दो साथी बन चुका है और दो साथी जीवन में बन चुका है। क्या अच्छा पार है देखा जाए तो, जोड़ी भी अच्छा है। क्लिप देखिए, बहुत अच्छा क्लिप है। चलो एक बार फिर से दविंदर सिंह शिवनाथ सेल दी गर्ल।

वाह उस्ताद देवेंद्र सिंह सेलिगल हवाई कोको डिनर दाल भात और भाटा के चोखा खाने के समय पे गरम गरम गाना। ठीक है, हम चलते हैं एक बार फिर से एक आखिरी गाना हम चलाएंगे, उसके बाद हम चलेंगे न्यूज और कुछ रिक्लामों की तरफ। देवेंद्र सिंह सिवनाथ

0: जी हाँ दोस्तों, नहीं चाहिए रंग महल, हम तो यही चाहता है कि हर घर घर में खुशहाली हो, हर एक सुख सभी कोई पाए, ये मैं भी चाहता हूँ। ये दिल से निकला हुआ दुआ है, हर एक जो प्रोग्राम को सुनते हैं हर एक के घर में दुख निकाल दे भगवान, और सिर्फ सुख रखे और तंदुरुस्ती बना रखे हर एक को। यही एक आखिरी गाना था जो 12 बजे के खाने के समय पे कुछ चटनी गाना, कुछ गरम गरम गाना मैंने आप लोग को सुनाया है। ये शुक्रवार का प्रोग्राम है दोस्तों, जैसे वादा के मुताबिक हमने प्रोग्राम को बनाया है। अब हम चलेंगे न्यूज़ और रखलामक, उसके बाद हम प्रोग्राम फिर से आगे ले जाते हैं। सवाल और जवाब आएगा न्यूज़ और रखलामक के बाद।
1: Adverteer nu bij Vahon Hindustani Radio en bel met de afdeling sales. Telefoonnummer 070 365 22 47.

0: 22 en 23 augustus. Voor meer informatie www.minimsummerfestival.nl.
1: Ja, dat is het nieuws over reclame. Ham chalte hai, wacht nahi lenge, wacht kam par jayenge. Ham chalte hai, dosto, sawal aur jawab. Sawal jo maine kiya tha, ke koi kisi ke haath ka chamra kaat ke ghinchta hai. Jekar chamra bo ke peera na hai, majhe kaate hai, urove hai. Ukarantor, konchiba, theek hai, ham chalte hai. देखा जाए तो भाई अंद्रेई मिस्टर अंद्रेई प्रोग्राम को सुनते हैं और सही जवाब को दिया है और सही गाना भी मांग किया है. देखा जाए मिस्टर अंद्रेई, ठीक है मिस्टर देई को गाना मांगे से बहुत ही पुराना गाना है, दिल का दर्द न जाने, और फिल्म नौजवान का है. देखा जाए दोस्तों सही जवाब को दिया है. हम जवाब देते हैं प्याज है, प्याज प्याज प्याज जे काटे वो रोबे है वन प्याज में को इतना वो है स्वार एक स्टेरक तो तू रोबे लगे ना और जेकर प्याजवा काटे है प्याजवा के पीरा ना है. सही जवाब है प्याज है. और चलो भाई अंद्रे मिस्टर अंद्रे आपका गाना आ रहा है.

जी हाँ दोस्तों, दिल का दर्द न जाने कोई, मिस्टर अंदरी जो प्रोग्राम को सुनते हैं और हमेशा सुनते हैं, शेयर पसंद भी करते हैं और सवाल पे जवाब दिया है। ये मूवी नौजवान और इसका जो म्यूजिक भी आया है एस डी बर्मन है, लता मंगेशकर का आवाज़ और इसका लायरिक्स है महेश कौल जो लिखा है। ठीक है भाई, मिस्टर प्रोग्राम को सुना है, आपका गाना मैंने पहुंचा दिया है आपके पास। और ऐसे प्रोग्राम चलते हैं दोस्तों, देखा जाए तो। और संद्रा दिहल दनाक शहर से है और सही जवाब को भी दिया है और सही गाने को मांगा है। ये रात भीगी भीगी देखा जाए, चोरी चोरी मूवी, चोरी चोरी निकंजी ससम फैज तक आए देखा जाए, सिंगर यहाँ दिखा हुए है लता मंगेशकर मन्ना दे, म्यूजिक लायरिक्स से शैलेंद्रा और म्यूजिक है शंकर जय किशन। ठीक है मुफरव, देखा जाए तो कौन यहाँ पे इफ़ देखा जाए, नाम संद्रा दिहल दनाक शहर से। लीजिए आपका गाना आपके घर तक मैं पहुँचाता हूँ।

जी हाँ जी हाँ जी हाँ दोस्तों, ये रात भीगी भीगी लता मंगेशकर मन्ना दे की आवाज और शारदा शारदा दिहल सही जवाब को दिया था और इस गाने को मांग किया था मफरो शारदा दिहल, ये गाना आपके नाम मैंने कर दिया। घर तक सुन ले लता, ओके ऐप द्वारा भी दोनों सुनिए प्रोग्राम, 3 बजे तक हम रहेंगे दोस्तों। हम चलते हैं, देखा जाए मई नहीं खन की तरफ चलते, जहाँ से क्रिस सार्जू प्रोग्राम को सुनते हैं और पसंद भी करते हैं और सही जवाब को दिया है। कहता है प्याज है प्याज है और मांग क्या है तुम बिन जाऊं कहाँ। देखा जाए नई मेख से है, नई मेख से है और देखा जाए तो सिंगर है रफ़ी, रफ़ी साहब के गाना है, एस दे बर्मन है, इसका म्यूजिक बजाया है सुल्तानपुरी, जो मजूर सुल्तानपुरी का लायरिक्स है, मूवी है प्यार का मौसम। हम चलो मिलके सुनते हैं क्रिस के नाम, क्रिस नई मेख की तरफ चला गया, क्रिस सार्जू के नाम।

जी हाँ दोस्तों, क्रिस सर्जो जो नए अमेरिका से प्रोग्राम को सुनते हैं, सही जवाब को दिया है। और मां क्या था तुम बिन जाऊं कहां, पद्मश्री मोहम्मद रफी की आवाज। भाई क्रिस, खुश है आप? ऐसे ही ऐप पर रहना, प्रोग्राम को ऐसे सुनते रहना। 3 बजे तक हम रहेंगे आपके साथ, हर एक के साथ। हम है तो आप है, आप है तो हम है, ठीक है। ये इस गाने को बहुत बहुत शुक्रिया कि आप प्रोग्राम को सुनते हैं। और एक शुभ दिन हो, वीकेंड आ चुका है, फैन वीकेंड इधर इन अब प्रोग्राम ना दो ने तो इबे तक प्रोग्राम को चलेंगे, ठीक है दोस्तों। प्रोग्राम को चलाते हैं और आगे देखते हैं। ऐप पे राबिया सही जवाब को दिया है, सही जवाब। और ये सवाल जो मैं कर रहा हूँ, ये राबिया ने खोज के मुझे देते हैं हर हफ्ते। तो मैं इस सवाल को आप तक पहुंचाता हूँ और उसका जवाब आप लोग देते हैं। इसलिए सही पर नंबर फॉर दिन नमस रेडियो फाहोन एफगिन लव द लव फाहोन हिंदुस्तानी रेडियो से राबिया जी इस गाने को हम लोग उसके लिए इस गाने को सुना रहे हैं। राबिया जी आप प्रोग्राम को सुनते हैं तो आपके नाम।

जी हाँ दोस्तों, ये राबिया के नाम चला गया। राबिया, आप प्रोग्राम को सुनते अच्छा लगा, गाने को मैंने आप तक पहुंचा दिया है। ठीक है दोस्तों, हम चलते हैं लिवर्द की तरफ, जहाँ पे राकेश राकेश प्रोग्राम को सुनते हैं, सदा सुनते हैं और सही जवाब को दिया है प्याज। ठीक है, प्याज है और मांग किया है, हमारा ही गाया हुआ गाना है और हम आपको उसके नाम करते हैं, तुझ बिन सुनी प्रेम दगरिया हमारी आवाज़ में, म्यूजिक ज्वाला ने बजाया है। तुम चलो हम सुनते हैं, आपके नाम करते हैं भाई राकेश लेवार्ड से, आपका नाम

जी हाँ दोस्तों, राकेश जत्तू जो लेवरदस्त प्रोग्राम को सुनते ही हमारा छोटा भाई है, नईफ है हमार, एख्त नईफ है, छोटा भाई है हमार, और सही जवाब को दिया है और गाने को मांग किया था, तुझ भी सुनी प्रेम नगरिया मेरा आवाज़ थे दोस्तों, और बहुत खुश है कि मेरी आवाज़ में इस गाने को वो सुन रहा था भी आपके घर तक पहुँचाए, और जहाँ भी है जिस हाल में खुश रहे भाई राकेश, सदा हमारा रेडियो को सुनना फाहुन को, और ऐसे ही सुन के सवालों के जवाब देके अपना एक गाना को मांग सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद राकेश के आप प्रोग्राम को सुनते रहना, तीन बजे तक हम रहेंगे, और काफ़ी अच्छे प्रोग्राम है, काफ़ी अच्छे अच्छे गाने जो लोग मांग किया है, एक वन बाय वन हम सभी का गाना पूरा करेंगे, ये वादा रहा। ठीक है, हम चलते हैं भाई रॉय मंगली सही जवाब को दिया है और सही गाने को मांगा है, देखा जाए हालफ तुई हो चुका है और हालफ तुई के गाना मांगने से सही गाने को मांगा है। जिया ओ जिया कुछ तो बोल दो, मूवी जब प्यार किसी से होता है, नई खंतीन एजन सस्त का है, और देखा जाए देव अनंत आशा परेक प्राण इसमें काम किया है, म्यूजिक बजाया है शंकर जय किशन, और देखा जाए हसरत जयपुरी का लाहिरिक से रॉय मंगली आपके घर तक ये गाना हमको हम पहुंचाते हैं।

के साथ में चलते हो चेहरे से बयां हो जाता है, हर बात पे आहें भरते हो, हर बात पे दिल भर जाता है।

जी हाँ दोस्तों, मूवी जब प्यार किसी से होता है, निकटतम इन शस्त्र का पद्मश्री मोहम्मद रफी का आवाज और भाई रॉय मंगली ने इस गाने को मांग किया, सही जवाब को दिया है और सही गाने को मांगा है। अच्छे अच्छे गाने मांगते हैं, हर हफ्ता इस प्रोग्राम को सुनते हैं, सदा से सुनते आया है, आज भी सुनते हैं। रॉय मंगली बहुत बहुत धन्यवाद यार, हमारा कार्यक्रम ग्रुप का एक मेम्बर है जो काफ़ी अच्छे गाता है, मिस्टर अंदर ही है अभी, वो भी था, वो भी ऐप पे थे, रॉय है मंगली है। ऐसे बारी बार हम सबके फरमाइशें सुनाएंगे, हक है बनता है क्योंकि सही जवाब को दिया है। ठीक है दोस्तों, बहुत बहुत शुक्रिया, ऐसे प्रोग्राम को बनाते सजा के लाते हैं रखते हैं। और देखा जाए तब फोर वेलक से मफराओ सोनिया सही जवाब को दिया है और मांग किया है फिल्म गुद्दी, निगदी फैफन सस्ते का है सॉन्ग, तेरे मेरे सपने अब एक रंग है, पद्मश्री मोहम्मद रफी म्यूजिक, एस दे बिरमन लाइरिक्स, साई लिंद्रा। चलो मफराओ सोनिया फोर बरख से आपका नाम।

या दोस्तों तेरे मेरे सपने बस एक रंग के गुदी नहीं का दिन वही फंसे आज तक का पद्मश्री मोहम्मद रफी का आवाज अभी आप सुन रहे थे और फोर बेरक से मफरो सोनिया सही जवाब को दिया है और अपने गाने को मांग किया था। मफरो सोनिया ऐसे ही प्रोग्राम को सुनते हैं ना, बहुत बहुत धन्यवाद, आप प्रोग्राम को सुनते हैं काफ़ी पसंद भी करते हैं, शुक्रिया धन्यवाद। और प्रोग्राम हम आगे ले जाते हैं, हम चलते हैं 8000 किलोमीटर दूर, हम चलते सुरीनाम वेलखदाक से ही से गीता काशीराम प्रोग्राम को सुनते हैं। सही जवाब को दिया है गुलाम अली गुलाम नबी वैक से वेलखदाक से ही से प्रोग्राम को सुनते हैं और सही जवाब को दिया है और मांग किया है चांद छुपा मूवी हम दिल दे चुके सनम, सिंगर उदित नारायण आल का यग्नी लाइरिक से महबूब और म्यूजिक इस्माइल दरबार, सलमान खान अजय देवगन ऐश्वर्या राय इस फिल्म में काम किया है। ठीक है मफरो गीता काशीराम आपके गाना आपके घर तक।

जी हाँ दोस्तों, चांद छुपा बादल में, हम दिल दे चुके सुनम उदित नारायण और अलका याग्निक का आवाज अभी आप सुन रहे थे। गुलाम नबी वैक वेल खदाक से, इसे गुलाम नबी वैक से गीता का श्रीराम प्रोग्राम को सुनते ही अपना बाल को बनाते हैं वहाँ पे, और सलोन है ना, बाल सलोन है, बार करिया या जो भी कलर चाहते करते हैं और प्रोग्राम को सुनते हैं, पसंद करते हैं, सही जवाब को दिया था और सही गाने को मांग किया था। ठीक है दोस्तों, हम चलते हैं आगे। देखा जाए सुरीनाम से प्रभा जी हाईवे से प्रोग्राम को सुनते सभी जवाब को दिया है और मांग किया है मूवी प्रोफेसर निकंदन त्रिशतक से आवाज देकर। शमी कपूर कल्पना का जो फिल्म में काम किया है और म्यूजिक डायरेक्टर शंकर जय किशन। ठीक है प्रभा जी, आपके गाना आ रहा है।

0: जी हाँ दोस्तों, मूवी प्रोफेसर निकंजन ट्विन सिस्टर का आवाज से देकर शम्मी कपूर और कल्पना ने इसमें काम किया था और चला गया था हाईवे सुरीनाम हाईवे से, जहाँ प्रभा भी प्रोग्राम को सुनती ही और सही जवाब को दिया था प्रभा प्याज। ठीक है, आपका नाम मैंने गाने को कर दिया है और हम चलते हैं दोस्तों। बताना चाहते हैं कि प्रोग्राम कैसे जहाँ तक हमारा आवाज़ पहुँचा है वहाँ तक हमारा एक बार फिर से प्यार पहुँचे, मोहब्बत पहुँचे हर एक जो प्रोग्राम को सुनते हैं। मैं बहुत खुश हूँ कि लोग ऐसे प्रोग्राम को सुनते हैं, काफ़ी ऐप है। अभी मुझे गाना को चलाना है, अभी एक घंटा का टाइम है, अभी एक घंटा और टाइम, एक घंटा हम आपके साथ रहेंगे। तीन बजे तक हमारा तुम्हारा मिलन है, साथ है, ऐप द्वारा हम लोग के मिलन है, कुछ बातें होते हैं, काफ़ी ऐप है, अच्छी अच्छी बातें हैं। और देखा जाए, हम चलते हैं न्यूज़ और रेखलामों की तरफ। यूं गाया यूं आया, एक घंटा और हम आपके साथ रहेंगे, तब तक के लिए हम न्यूज़ और रेखलामों को सुनते हैं।
1: हर काम के लिए, हर अपर्टेंसी के लिए, मौत के समाचार, फरमाइशें या जो भी खबरें आपको देना है, आप जाइए हमारा वेबसाइट ही और हमारा ईमेल है info@fahunfm.nl। हर एक अपर्टेंसी, हर एक काम के लिए आप तार कर सकते हैं सोमवार से लेकर शुक्रवार थे सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक। अब टेलीफोन नंबर 9763 2047। Of mail ons op info@fahunfm.nl. Nogmaals, maandag tot vrijdag tussen 9 en 5 kunt u bellen op nummer 070-365-2247.
2: Advocatenkantoor Anand Ram Sood wakalat ka kaam karta hai jab bhi aapko ek badhiya wakeel ki zaruri par gaya hai.
3: Ingeschreven en gespecialiseerd in de rechtsgebieden register van de orde. Algemene rechtspraktijk, hieronder vallen burgerlijk recht, oftewel civiele zaken, bestuursrecht en strafrecht. Personen- en familierecht, zoals echtscheiding, alimentatiezaken, omgangsregelingen, ouderschap en erkenning. Jeugdrecht met volgende gebieden: jeugdbeschermingsrecht, onder toezichtstelling, uithuisplaats en jeugdstrafrecht.
2: Advocatenkantoor aan het Raamsoet aan de Hof van Delft, Laan 87B. Delft meer, telefoonnummer 015-21-59-22-7.
4: Voor hulp bel nu 015-21-59-22-7.
2: Advocatenkantoor aan het Raamsoet.
5: Dit is het Vahon Hindustani Radio Nieuws. Goedemiddag, ik ben Edwin van het Geloof.
6: Door de oorlog in Iran en hogere energieprijzen daalt de koopkracht van de doorsnee Nederlander in 2027 met 0,3%. Dat blijkt uit ramingen van het Centraal Planbureau. Dit jaar stijgt de koopkracht nog met 0,6%. De Nederlandse economie groeit volgend jaar naar verwachting met 1,2%. Bij een ongeluk op de A59 bij Hees zijn 2 mensen omgekomen en een onbekend aantal mensen gewond geraakt. Volgens de politie zijn er 4 auto's bij het ongeluk betrokken. De snelweg is op dit moment volledig afgesloten. De politie verwacht de weg rond 4 uur vanmiddag weer vrij te kunnen geven. Organisatoren van het boerenprotest dat vandaag voor het provinciehuis in Den Bosch wordt gehouden vinden het verschrikkelijk dat er 2 mensen zijn verongelukt bij een file op de A59. Het podiumprogramma met sprekers buiten het provinciehuis gaat door, maar in ingetogen vorm. Er wordt tussendoor geen muziek meer gedraaid. Dat zegt de Zuidelijke Land- en Tuinbouworganisatie namens de partijen. Op het DFDS-terrein in Vlaardingen, van waaruit veerdiensten naar het Engelse Felixstowe vertrekken, heeft de politie 12 migranten aangetroffen in een Turkse vrachtwagen. De chauffeur is gearresteerd op verdenking van mensensmokkel. De groep bestond uit mannen en vrouwen, waaronder mensen met een hoge leeftijd. En dan het weer. Vanmiddag is het zonnig en droog. Bij een matige wind uit het westen is het 35 tot 38 graden. Vanavond is het eerst nog zonnig, later in het zuiden wat bewolking. Vannacht koelt het af naar 19 graden.
5: En tot zover het nieuws op Vahon Hindustani Radio.
7: Je hebt ons gevonden. Laat ons nooit meer gaan. Vahon Hindustani Radio.
0: जी हाँ दोस्तों, जी हाँ, आप सब चुन है फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो पे देफगी लव। ठीक है दोस्तों, हम चलते हैं आगे, बढ़ते हैं आगे। मेरा भी कुछ हक बनता है आप लोग के सुनाने के लिए। हम अपने तरफ से और हमारा पूरा टीम के तरफ से हर एक जो प्रोग्राम को सुनते हैं आज भी और हरदम से जो लोग प्रोग्राम को सुनते हैं, पूरा फाहुन की टीम से हमारा हर एक कोलेखा और हमारे तरफ से आपके नाम देखा जाए। मेरा प्यार भी तू है, ये बहार भी तू है, जैसे आप सब हमें प्यार करते हैं उसे हम सब आप लोग के भी प्यार करते हैं। मूवी साथी सिंगर मुकेश देखा जाए, म्यूजिक है जो म्यूजिक सजा करके बजा करके लाया है वो नवसात है, और लाइरिक्स चलो देखा जाए हाथ सिहाई जो सिहाई से कलम पे लिखा गया है वो है मजूत सुल्तान पूरी। रजत कुमार फियंतीमाला इसमें काम किया है, फिल्म साथी।
8: मेरा प्यार भी तू है,
0: नाम से लतीम फन फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो फॉर योली।
9: तुम भी गाओ

जी हाँ दोस्तों, मूवी साथी मेरा प्यार भी तू है ये बहार भी तू है, सिंगर मुकेश और नौसाद का म्यूजिक है, मजरूत सुल्तानपुरी का ये जो लाइरिक्स है, ये एक गाना हम अपने तरफ से और हमारा पूरा टीम के तरफ से आपके नाम मैंने किया है, क्योंकि दिलों से प्यार किया जाता है हमेशा की तरह, जैसे आज भी आप लोग पूरी रेडियो को सुनते हैं, आप लोग मुझसे प्यार करते हैं दूसरा रूप में, क्या अनिल इतना मोज बतिया है, इसमें भी एक लिफ्ट है, एक प्यार है, जहाँ छुपा है भाई है बहन है मफरव है, हर एक से हम भी प्यार करते हैं, हमारा पूरा टीम है हर एक से हम सब प्यार करते हैं, इसलिए ये गाने को मैंने आपका नाम किया है। ठीक है दोस्तों, हम जाते हैं पोस्ट खुरुनेंगन सरमा का, जहाँ से सीता जी प्रोग्राम को सुनते हैं और हमेशा का तरह आज भी प्रोग्राम को सुनते हैं और पसंद भी करते हैं और सही जवाब को दिया है और मांग किया है, तुम्हें जो मैंने देखा मूवी मैं हूं ना, जिसमें शाहरुख खान और सुष्मिता सेन, काम क्या है अभिजीत और श्रिया घोषाल के ये जो आवाज़ है अभी आप सुनेंगे, ये अभिजीत है और श्रिया घोषाल है, लाइरिक्स से दफित अख्तार और म्यूजिक डायरेक्टर है और कोई नहीं है अनु मलिक इसका म्यूजिक बजाया सजा करके हम सब सुनते हैं। और ये गाना जा रहे है पोस्ट खुरुनेंगन सरमक्का, जहां सीता जी

जी हाँ दोस्तों, तुझे जो मैंने देखा मूवी, मैं हूँ ना। ठीक है दोस्तों, ये पोस्ट क्रोनिंगन चला गया जहाँ सीता जी प्रोग्राम को सुनते हैं और इस गाने को मांग किया था। आपका नाम चला गया है मफरोजीता पोस्ट क्रोनिंगन सरमका से। ठीक है दोस्तों, देखा जाए तो हम चलते हैं जहाँ पे सुनीता बुधाई भी प्रोग्राम को सुनते हैं और सही जवाब को दिया है और मांग किया है, दोस्त बन के आए हो पद्मश्री मोहम्मद रफ़ी, उषा खन्ना। म्यूजिक उषा खन्ना का है और फिल्म है बिन फेरे हम तेरे, नेकन तीन नेकन सीफन तक के है ये गाना।

जहाँ दोस्तों दोस्त बन के आए हो, पद्मश्री मोहम्मद रफ़ी और उषा खन्ना, विनोद खन्ना शरीका इस फिल्म में काम किया है बिन तेरे फेरे, नेखन सीफन तक का ये गीत है। और सुनीता बुधाई प्रोग्राम को सुनते जनाक शहर से सईद पारक से, और सही जवाब को दिया और बहुत ही अच्छा गाने को मांग किया है। ठीक है दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद सुनीता जी। हम चलते हैं जर्मन, जहाँ नॉइस से, जहाँ मेंशन ग्लाकबाख नॉइस से ममता जी प्रोग्राम को सुनते हैं, सही जवाब को दिया है और मांग किया है मूवी चलते चलते सिंगर अभिजीत आलका याग्नी, देखा जाए सुनो ना, जिसमें शाहरुख खान ने काम किया और रानी मुखर्जी। ममता के नाम एकदम जर्मन तक पहुँचाए लशा।

जी हाँ दोस्तों, सुनो ना, सुनो ना शाहरुख खान, रानी मुखर्जी मूवी चलते चलते और चला गया था जर्मन की तरफ। नौ इस जहाँ से मोहताजी प्रोग्राम को सुनते हैं, सही जवाब को दिया और सही गाने को मांग किया है। ठीक है दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद मोहताजी, प्रोग्राम को आगे सुनते रहना। अभी कुछ देखो जाए 40 मिनट हम आप लोग के साथ रहेंगे, फिर तक मिनट हमारा तुम्हारा साथ रहेंगे और फिर तक मिनट में काफ़ी अच्छे अच्छे गाने हैं, काफ़ी लोग हैं, काफ़ी लोगों के प्रोग्राम फरमाइशें हम पूरा करेंगे। तब तक के लिए चलते हैं अमृत, अमृत मोहन जो मेयर सौरभ कमवई ने कहा है, लेकिन यहां पे देना शहर में रहता है और सही जवाब को दिया, मांग किया है ये काली काली आंखें, सिंगर कुमार शानू अनु मलिक, और जो म्यूजिक बजाया गया वो भी अनु मलिक है और इसका लाइरिक से देव खोली। हम आपको सुनाते हैं अमृत मोहन की फरमाइश।

जी हाँ दोस्तों, ये काली काली आंखें मूवी बाजीगर शाहरुख खान और काजल इस फिल्म में काम किया है अनु मलिक का। अनु मलिक का म्यूजिक है, कुमार शानू अनु मलिक ने इस गाने को गाया है और अमृत मोहन इस गाने को मांग किया था। मेर सड़क का है जहाँ हम रहते हैं, हमारा बगल में रहते हैं रहता था, आज जनक शहर में है। जैसे हम भी, हमारा भाई से बड़ा है और प्रोग्राम को सुनते हैं, पसंद करते हैं और उसी का नाम मैंने इस गाने कर दिया। भाई अमृत आपका नाम है और देखा जाए तो हमारा एक और भाई है, भाई रुदी गोली, जो प्रोग्राम को सुनते हैं, सच में प्रोग्राम को सुनते हैं हमेशा की तरह। आज भी वो इतना लाइक करते हैं प्रोग्राम को, फाहुन को, कि या हम कुछ बोले बहुत ज़्यादा लाइक, बहुत मोह से लाइक करता, दिल से, दिल किस ओकर जवाब निकसे जो ऐप लिखे तो दिल से निकसे है। भाई गोलिया प्रोग्राम को सुनते हैं और यहाँ पर मांग किया है एक गाना, हाथों की चांद लकीरों का, और देखा जाए और यहाँ लिखेगा इधर दी लजतर नर रेडियो फहन एन फॉर यू। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद हर एक जो फहन को सुनते हैं, हर एक के लिए मांग किया है और स्पेशल हमार खत भी मांग किया है। भाई गोली बहुत बहुत धन्यवाद। देखो ये गाना आ रहा है आप तलक, हम पहुंचाते हैं। बाकी एक फराक है फोर द थमी एक तलक के सुनावे, एक फराक है आप जानते ही, सवाल और जवाब है मंगल के खतिन फॉर देंसदाग के खतिन एगो फराक पहम में। एगो हाथी से हे भी और कोंची बा, एगो हाथी से हे भी और कोंची बा, वात इस वार्दर दन अन एन ओलिफांत। ऐप खुल चुका है आज से, हम मतलब ऐप कर सकोगे अंतर देंसदाग के होकर हम गाना आप लोग के सुनाएंगे। तब तक के लिए हम चलते हैं गोली के तरफ।

जी हाँ जी हाँ दोस्तों, विधाता मूवी विधाता निगम दिन ताकतक सुदेश वलकर अनवर की आवाज थे और दिलीप कुमार शामी कपूर इस फिल्म में काम किया है। म्यूजिक कल्याण जी आनंद जी आनंद बख्शी का लाइरिक्स है। ठीक है दोस्तों, हम चलते हैं ब्रीदा की तरफ जहाँ से बिस्ना दीदी प्रोग्राम को सुनते हैं, पसंद भी करते हैं और मांग भी किया है। बहुत ही अच्छा गाना, बहुत ही अच्छा गीत है, लेकिन इस गाने तो दो है। हमने ऐप द्वारा पूछा है दीदी आपसे कि यही गाना है, सही जवाब दिया है। हम गाने को पहुंचाते हैं, कुमार शानू अलका याग्निक है, नदीम शर्मा का म्यूजिक है, लाइरिक्स है शमीर।

जी हाँ दोस्तों, ये दिल आशिकाना चला गया था बरेला की तरफ, जहाँ पे हमारा बहन बिश्ना इस प्रोग्राम को सुनते हैं और पसंद भी करते हैं, और ये गीत मांग किया था कुमार शानू आल का यज्ञ के। अभी सोनू भाई भी है, एक गाने को मांग किया है। हम दो गाने के बाद आपके गाना जरूर लाते, बरेला की तरफ हम चलेंगे फिर से दो गाने के बाद, क्योंकि काफ़ी लोग हैं प्रोग्राम पे और हम बहुत अच्छा लगता है कि ऐसे ऐसे लोग इस प्रोग्राम को सुनते हैं। काफ़ी लोग हैं जो हमारा हमारा प्रोग्राम को पसंद करते हैं। द एवरग्रीन लव फाउन हिंदुस्तानी रेडियो पे आप सब चून हैं, बहुत बहुत धन्यवाद है लोग कि आप लोग सुनते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं, देखा जाए। हाँ, हमने तो रख दिया यार सोनू सोखर के जो गाना मांग किया था, हम उस गाने को रख दिया है, हमने तो भूल ही गया था कि इस पैसे पे हम गाने को रख दिया है। चलो फिर से एक बार बरेला के तरफ, जहाँ से हमारा बहन और हमारा भाई प्रोग्राम को सुनते हैं, काफ़ी पसंद करते हैं।

जी हाँ दोस्तों, मौसम है आशिकाना ए दिल कहीं से, फिल्म पक्की सा है लेकिन जिन ट्वीट सीवंद का मीना कुमारी इस पे काम किया, लता मंगेशकर की आवाज़ अभी सुने थे और चला गया था देखा जाए ब्रीदा की तरफ जहाँ पे सोनू प्रोग्राम को सुनते हैं और बिश्ना। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, आपके गाना मैंने पहुँचा दिया है आपके घर तक, आपके कानों तक। अब हम ये बताना चाहते हैं दोस्तों, दो गाना और हम चलाएंगे, उसके बाद न्यूज़ रहेगा और कुछ रिक्लाम। आज के प्रोग्राम, आज का हिस्से का प्रोग्राम मेरा यहीं तक था, लेकिन अभी मैं आ रहा हूँ, ज़रूर दो चार बातें और करेंगे। तब तक के लिए हम चलते हैं फोर्स को उतन, जहाँ से शांता सारजू प्रोग्राम को सुनते हैं, सही जवाब को दिया है और मांग किया है, तो बेमिसाल है तेरी तारीफ क्या करूँ, पद्मा श्री मोहम्मद रफ़ी का आवाज़, शंकर जय किशन, देखे जाए शंकर जय किशन का म्यूज़िक है, हसरत जयपुरी का हाथ है, कलम है और स्याही से लिखा गया था इस गाने को, क्या गाना लिखा है। चलो शांता को, अभी जो फोर्स को उतन शहर से सुनता प्रोग्राम को, उनका नाम हम करते हैं

जी हाँ दोस्तों, तू बे मिशाल है तारीफ क्या करूँ। पद्मश्री मोहम्मद रफ़ी का आवाज़ अभी आप सुन रहे थे। शंकर जय किशन का म्यूज़िक, हस्त जयपुर का लाइरिक से। ठीक है दोस्तों, ये था सांता सार्जो जो फोर्स कोटन से प्रोग्राम को सुनते हैं और पसंद भी करते हैं और सही जवाब को दिया था और बहुत ही अच्छा गाना को मांग किया है। शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद हो शांता सारजू, मेरा बहन है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद हो प्रोग्राम को सुनते हैं। टाइम नहीं है, वक्त नहीं है, एक गाने के बाद हम न्यूज़ और बयान न्यूज़ और रखलावन चलाएंगे, उसके बाद हम जरूर विदाई लेंगे आपसे। ठीक है दोस्तों, एक आखिरी गाना चलेगा अमृत मोहन जो हमारे कमवेन वैखना पे पौध के हम लोग बगल बगल में रहते थे और दनाक शहर में रहते हैं। हमारा भाई से बड़ा है, भाई जैसा है, और वो भी प्रोग्राम को सुनते हैं, बहुत बहुत पसंद करते हैं। और भाई मोहन, अमृत मोहन के कल जन्मदिन है, लेकिन हम जन्मदिन के गाना नहीं चलाएंगे क्योंकि एक गाना है जो हम उनके नाम करते हैं, हमारा भाई जैसा है। और जब हम लोगों ने 2-3 हफ्ते हुए टिकटॉक द्वारा हम लोगों ने फिर से कॉन्टैक्ट हुआ है, इस कॉन्टैक्ट के लिए भाई अमृत आपके नाम में एक गाना करता हूँ। एक आखिरी गाना चलेगा स्पेशल अमृत मोहन के लिए,

0: मैंने जवाब नहीं दिया।
1: यकीन नहीं आया
0: रेशमा, तुम नहीं जानती तुम मेरे लिए क्या हो। जिंदगी में इतनी कमी का एहसास कभी नहीं हुआ। हाँ कह दो रेशमा, हाँ कह दो।

0: जी हाँ दोस्तों, ये गाना मैंने अमृत मोहन के नाम किया है। अमृत भाई, आप इस गाने को सुन रहे हैं, खुश हुए हैं और ज़रूर आपको पसंद आया होगा। जी हाँ दोस्तों, मैं ये बताना तो भूल ही गया हूँ कि मैं आने और जाने के एक वक्त भी होती है। यहाँ तक था हमारा हिस्से का प्रोग्राम ख़त्म हो चुका है। यहाँ से हम चलेंगे न्यूज़ और कुछ रिक्लामा की तरफ। अभी इससे पहले मैं इस सवाल को एक बार फिर से दोहरा रहा हूँ, व्हाट इज स्वार्डर दन एन हाथी, एक हाथी से और हेवी और कुंची बा। सवाल ऐप खुल चुका है, तार का नंबर है 0 6 4 3 8 0 8 3 3 2। निकल अंतर में दे सके और देंसदा के रेडियो बहुत अच्छा रहेगा। एक अलग सा प्रोग्राम बनाएंगे और हम देंसदा के आप लोग के बताएंगे प्रोग्राम क्या है। यहाँ तक से दोस्तों मैं ये भी कहना चाहता हूँ, जे जहाँ तक ये आवाज़ पहुँचा है, हर एक को हमारा राम राम नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम हो। हर एक को मैं यही कहता हूँ, बचा के अपना सभी कुछ करना भी कहता चुका है पुरसख तक मितालस। और जहाँ पे एक बार फिर से कहता हूँ, दुख और सुख में हमारा पूरा टीम आपके साथ है, आपके ज़रूर हम जो भी है हम लोग सभी बातें कर सकते हैं, हर एक दुख में हम लोग शामिल है पूरा टीम। तो मैं यही कहना चाहता हूँ, बाय बाय स्वाई स्वाई, फिर मिलेंगे मंगलवार को। सवाल मत भूल जाना, ऐप कर सकते हैं मुझे।
1: The best of Bollywood hits from toen en nu. Bij Vahon Hindustani Radio.

मुसूरी लाइन जाना है, गाड़ी हीर करना है तो आपको जाना पड़ेगा मखेंता वेग 259 बाय ऑटो फॉर बिड्रेव अमालिया सेर जुइनिग ऑटो सोअल्स टोयोटा प्रीमियो टोयोटा रक्टिस टोयोटा फिट्स कांटेक्ट इन सुरीनाम de heer Parkas Gokul op telefoonnummer 00597 875793. Contact in Nederland 06

रही है, सदा रहेगी मेरी मोहब्बत जवा रही है। चाहे उमड़िया घट जाए लेकिन मोहब्बत जो है हमेशा जवाब होता है और हमेशा जवाब ही रहता है। राजन है मेरा नाम।

मैन ऑफ इंडिया स्वर्गीय धर्मेंद्र का कमाल अभी आपने सुना दोस्तों, ये फिल्म ब्लैक मेल का सॉन्ग अभी आप सुन रहे थे, पल पल दिल के पास तुम रहते हो। और जो प्यार मोहब्बत के कहानियां रहते हैं तो दिलीप साहब को हमको कभी भूलना मत चाहिए। दिलीप का एक फिल्म जिसमें वी एन टी माला के साथ काम किया है, एक पुराना काफ़ी पुराना फिल्म है, नीखती आखन फेफ तक का फिल्म का सॉन्ग अभी आप सुनेंगे। फिल्म मधुमती।

सुहाना सफर और ये मौसम हसी हकीकत है दोस्तों, वास्तव में मौसम तो हंसी है। जो भी करना है सोच समझ के कीजिए और सारा से पानी पीते रहना दोस्तों, न एक दफ़े में 1 लीटर लगातार नहीं, थोड़ा थोड़ा पिया करो।

प्यार का गीत है, उन्हें हर को इस किसी को गाना पड़ेगा। वास्तव में दोस्तों, जब प्यार नहीं है तो ज़िंदगी नहीं। और मैं सोचता हूँ कि ज़िंदगी में सभी इंसान जो है कभी न कभी किसी न किसी से ज़रूर प्यार किया होगा, किसी न किसी से कभी न कभी तो दिल लगाना पड़ेगा। वाह वाह, श्यामी कपूर का कमाल फिल्म का नीख फिर शस्त्र में जो रिलीज हुआ,

बजकर 2 मिनट बीत गया है। फाहोन इंसान रेडियो पर आप चुन है। जैसे आप सभी को मालूम है तो शुक्रवार है दोस्तों, और आप जानते हैं फाहोन इंसान रेडियो आप ही का रेडियो है। 24 घंटे तक प्रोग्राम आप सुन सकते हैं। और आज हो गया है 14 तारीख और क्रिसमस, कल है 15 अगस्त दोस्तों। आप जानते हैं 15 अगस्त जब रहता है 15 अगस्त तो इंडिया का अनफांगलखेज डाक होता है, आसानी का दिन रहता है। मैं जानता हूँ, मुझे मालूम है कि बीते हुए दिनों में सुनाम देश में गांव-गांव में लोग झलवा बनाते थे, करसर बनाते थे और फीस रहते थे। इन दिनों में नहीं होता है, फिर भी बीते हुए दिनों का बात मैं बताता हूँ। जब हमारे दादा पिता और दादा लोग को भी मालूम था कि उसका पिता भारत से आया है, तो सब अभी भारत को अपन देश मानते थे। अब तो धीरे धीरे लोग भी सुरनाम को भूल रहा है। कोई बात नहीं, जैसे जिंदगी काटना उसे काटती है, लेकिन सोच समझ के दोस्तों। अभी 4:30 बजे लोग मिले जुले गिरोह के साथ आपका दिल बहलाऊंगा। उसके बाद 4:30-5 के अंदर आइटम बयान जो रहेगा शाम को, वो है तेरे। हर एक गीत जो तेरे शुरू होता है लगभग आधे घंटे तक मैं आपके लिए पेश करूँगा। प्रोग्राम में स्पोर्ट बरक्त भी रहेगा और छोटे छोटे खबरें, मौसम के समाचार, फील बरक्त भी आप सुनते रहना। छह बजे के बाद मिस्टर जर्नी नंबर 1 का प्रोग्राम चलेगा दोस्तों, उसका न्यूज बरक्त जो है आप जरूर सुनते रहना। एक काम जो आपको रेडियो के सिरे कराना है, कॉन्टेक्ट कीजिए हमारे दफ्तर से 9 से 5 तक 3 से 5 2 8 2 फिर 0 पर आपको तार करना है।

चेहरा क्या देखते हो, दिल में उतर कर देखो ना। दोस्तों तैलफ का कहानी है, वहाँ का बिरखर बिस्तर इनक्रेप किया है, इसलिए कि पांच जगह पर जहाँ सुजंदर रहता है वोनिंग में, वहाँ इलेक्ट्रॉल सेक्स का कारोबार होता है। तो सिपाही छापा मारा है, दो मकान को बर कर दिया है और तीन मकान में भी खोजबीन कर रहा कि कैसे क्यों लोग ये कारोबार वहाँ पर करता है। दोस्तों फकांती अपार्टमेंट है वहाँ पर और साथ ही साथ स्टूडेंट भी रहता है, तो सेक्स वर्क भी साथ ही साथ लोग वहाँ पर करता है। ऐसा मत करना चाहिए, इस सब चीज़ का, इस सब कारोबार का जगह सरकार बना कर दिया है। अगर आपको ये सब कारोबार करना तो उसी जगह पर जाइए जहाँ पर सरकार ने छापा नहीं मार सकते हैं। आइटम का शुरुआत मैं करता हूँ, तुरंत चला जाता हूँ हैंगलो। हैंगलो में रहता है श्रीमान चांदर रघुनंदन, चांदर की तरफ से जीवन साथी नैली के लिए।

ये मेरे सपने बस एक रंग है, पद्मा श्री मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में। अभी फिल्म गाइड का सॉन्ग आपने सुना, और ये गीत हैंगलो के रहने वाला श्रीमान चंद्र रघुनंदन के तरफ से जीवन साथी नैल के लिए बड़े प्यार और दुलार के साथ पेश था। आइटम है दोस्तों आज शाम का, जो है तेरे, और तेरे के आइटम में भाग लेती है रेस्ट के रहने वाली आशा। आशा आपके लिए सॉन्ग।

आशा स्पेशल फॉर यू, तेरे चेहरे में वो जादू है। मैं चला जाता हूँ सुरीनाम देश दोस्तों, वहाँ पर लिफोर्नो, जी हाँ लिफोर्नो में रहती है मेरे बहन और बहनोई श्रीमान कमल राम खिलावन की तरफ से निर्मला के लिए बड़े प्यार के साथ ये सॉन्ग।

तेरी आंखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है, सुनामल लिफोनों के रहने वाला है श्रीमान कमल राम खिलावन की तरफ से जीवन साथी निर्मला के लिए बड़े प्यार और मोहब्बत के साथ ये सॉन्ग पेश था। आप सभी को हमारा नमस्कार पहुँचे। आइटम जारी है दोस्तों, एक घर बनाऊंगा तेरे घर के सामने। लेकिन उससे पहले हर एक काम जो आपको रेडियो के जरिए कराना है, जैसे कि खास फरमाइश, जरूरी खबर, मृत्यु समाचार वगैरह वगैरह, कॉन्टैक्ट कीजिए हमारा दफ्तर से। पर तार करना है और जल्द से जल्द आने वाले दिनों में है राखी का त्यौहार दोस्तों। अगर आप अपन भाई या बहन को एक फरमाइश से खुश करना चाहते हो तो वो भी हो सकता है। आप कॉन्टेक्ट कीजिए हमारे दफ्तर से पर आपको तार करना है श्रीमान मून जीबोध के तरफ से जीवन साथी माला के लिए। एक घर बनाऊंगा तेरे घर के सामने।

एक घर बनाऊंगा तेरे घर के सामने। श्रीमान मून जीबोध की तरफ से जीवन साथी माला के लिए छोटा सा स्पॉट ब्रेक थे दोस्तों। पेरिस पे एसकी जो है यूरोपीय कंप्यून, तो वो सीपर कप, यूरोपीय सीपर कप भी जीता है। यूरोपा लीग का कंप्यून जो है एस्टन फिला, उन्हें टू इन से जीता है ये सीपर कप, और ये दूसरा बार है लगातार। बीते हुए साल जीता था, अब की साल फिर भी पेरिस ये सीपर कप को जीता है। और स्पॉट ब्रेक थे दोस्तों, एन ए सी प्ले ऑफ चैंपियंस लीग में वो ग्रीक्स ओलंपियाकोस को टू इन से जीता। पहला खेल 0-0 में हुआ और दूसरा खेल कल हुआ है, तो टू इन से खेल को जीता था। तो एन ए सी के कंस है अभी यूरोपा चैंपियंस लीग में भाग लेने के। और स्पॉट ब्रेक थे एफ सी ट्वेंट डी आर सी से खले खेला है दोस्तों, धीरे धीरे खले खेला है। तो ट्वेंट पहला खेल घर पर जो खेला था सेस नेल से खेल को जीता है, और कल धीरे धीरे खले खेला। फिर भी इन्हें भी होप टू ने कॉन्फ्रेंस लीग में भाग लेने का मौका है। आयक भी मुकाबला किया है कल, और इस वैसे जो हुआ था वो 23 वर्ष रही था, तो द्री इन से आया सी ईर्स क्लब शेलबर्न से को जीता। और कल ट्वी ट्वी में एक खेल समाप्त हुआ, आया से एक स्लापो वेस्लाइट खेला, फिर भी ट्वी ट्वी में ये खेल एंड हुआ है। और आयास को भी मौका है आगे जाने को कॉन्फ्रेंस लीग में। और स्पॉट ब्रेक जब शुक्रवार है तो आप जानते हैं एरेडिविजी में हमेशा फुटबॉल का मुकाबला रहता है, तो टेलस्ट्रास पार्टा रोटरडाम से खेले गए आज रात्रि में 8 बजे। और कल जब शनिवार है तो वेलम टुई एन ई सी एफ सी यूट्रेख्ट आसेट एक्सेलसियर पी एस वी फोर्टिना सीतार्थ एस सी कम्बीर सोमदाक रविवार को आरू डेन हाफ एफ सी ख्रोनिंग फैनोर गुहत ईगल्स एफ सी ट्वेंट पैक स्वल और आखिरी में आयक्स हेर फिन से मुकाबला करेगा। 299 से अलफताल जो है उन्हें एक नया कोच मिला है, और वो है शाफी, बार्सिलोना का कोच जो था शाफी वो हो गया है नीदरलैंड्स का अलफताल का ट्रेनर। और शाफी कहता है कि वो बहुत बड़े खुश है नीदरलैंड को ट्रेन करने, इसलिए कि योहान क्रुइफ रिनस मिकल्स फन खाल और रे कार्ड के साथ भी एक काम किया है। तो देर तक तलुक उनका कॉन्ट्रैक्ट टेकन किया गया है, और ये कोशिश करेगा नीदरलैंड को आने वाला वीका में विरल कैंपियन बनाने को। तो यहाँ तक था छोटा सा स्पॉट ब्रेक। फिल्म दीदार का सॉन्ग है तेरे होतो को तेरे लाली को, श्रीमान आंद्रेई राजकुमार के लिए।

श्रीमान आंद्री राजकुमार के लिए तेरे होठों को तेरे लाली को माइटी मुकेश के मीठी आवाज में भी आपने सॉन्ग सुना। तेरे का आइटम में एक आखिरी सॉन्ग चलेगा, उसके बाद रिक्लाम न्यूज ब्रेक तो आप सुनेंगे। वंस अगेन माइटी मुकेश, लेकिन आपकी बार लता दीदी के साथ।

आफ्रिका हैप्पी स्टेशन फाह हिंदुस्तानी रेडियो और आप सुन रहे प्रोग्राम गीतों का संगम राजन के साथ। 5:02 बीत गया है, पूरे 6 बजे तक मैं शुरू में रहूंगा, उसके बाद मिस्टर जर्नी नंबर 1 का प्रोग्राम आप सुनते रहना। प्यारा प्यारा मौसम है, लेट्स डांस।

अब की बार दोस्तों नुस्पांग रानी मी लोबी गुडो लाइव बैठक गाना महफिल सरनामी चटनी पार्टी सॉन्ग। आप नाचते रहिए।

मिलो भैया मी गुडू क्या बात है सरनामी बैठक साइल। अभी आपने सुना जो सब की बार मैं घर को देखता हूँ तो 17 मिनट रह गया है 6 बजने में। भैया जॉनी आ गया सामने बैठा हुआ। वैसे तो हमेशा बगल बैठते थे लेकिन आज पता न कैसे अब सामने बैठे। हो सकता है कि लॉज जीते हुए तो सोचे हम सामने तो बैठब आज बगल न बैठब। माँ ठीक है दोस्तों, जब चलना है तो किसी के बगल मत चलना, अब पीछे भी मत, मैं कहना चाहता हूँ किसी के पीछे मत चलना, आगे मत चलना, बगल चलना। तो जो ठोकर खाएगा तो आप भी ठोकर खाएंगे, वो ठोकर नहीं खाएंगे तो आप भी नहीं खाएंगे। फिर भी नानी नानी से बोले नाना दारू पिएगा।

दोस्तों जैसे मैंने कहा तो भैया जॉनी अभी प्रोग्राम उफलेगा और आने वाला शुक्रवार शाम में 4 एक बार फिर मैं प्रोग्राम गीतों में उपस्थित रहूँगा। 4 बजे से सेवा किया आप सभी को मैं आशा रखता हूँ कि आप सभी खुश होंगे और जो लोग प्रोग्राम सुना और प्रोग्राम में तार के उसको मैं बहुत से धन्यवाद कहता हूँ। गर्मी का मौसम है दोस्तों, पानी पीते रहना, हो सकता कभी कभी ठंडा बीर खलास मत हो। खुशबू रहेगा तो फूल खिलेगा, जिंदगी रहेगा तो फिर मिलेगा। आप सभी को एक सुहानी रात, अंधेरा न भय दोस्तों, लेकिन धीरे धीरे 6 बज रहा है तो मैं कहता अभी से एक सुहानी रात और जय हिंद।

जॉनी नंबर वन है हमारा नाम, आज का देश और विदेश का समाचार सुनाना है हमारा काम, यही है हमारे मोहब्बत भरी प्यार की पैगाम। और दोस्तों आज हम फिर से आ गए हैं और अभी आप लोग हमारा कोड़े का साथी और वो है राजन द्वारका से एक मस्त भरी प्रोग्राम को सुना है और यहाँ से हम अपना देश और विदेश का समाचार आपको हम सुनाएंगे, क्या कैसे है कैसे नहीं है और ले जाकर और देश की बात भी आप लोग को हम बताएंगे। तो हमारी जनता हमारे दोस्तों हमारी जनता हमारे दोस्तों आपको तुरंत लेकर हम चलते हैं और सूरीनाम के निकेरी की ओर, हमारी जनता निकेरी की ओर। तो निकेरी में भैया बड़ी जबर गंध मचल है, तो बोलिए जॉनी बांध कैसे है, कौनची के फाइल ऑयल कहीं है का ना भैया, निकेरी के बाद बतियाए लगो मुगरा मीज से सेंट्रम है गा, जाने की मीज से सेंट्रम है फॉलोस खसों थाइट के और बतावे है गा निकेरी में और बोले हुआ पे बोले है गा निके हो फरमा लांग दूरख बवारिंग फन तुवे नीत अब ऐसे लेखामन, तो एगो लेखाम के बारे में भैया और एम एम सी यानी कि एगो मार्तुआरियम है फन मुंगरा में जैसे सेंटर में जहाँ लेक धरा है, जैसे अकादेमी सिकन है इसके पाछे लेक धरा है मार्तुआरियम, ऐसे मुंगरा में जैसे सेंटर निकेरी में भी है भैया और हुआ लेक हैसों में से गंध मचल भाई बताए गए है बोले दुई गो बोले लेखाम है वहाँ पर, बोले फरक्लारिंग दोनों तक के 13 तारीख ऑफिस के बताई गई है, सिकन है शेख कैनस तेह बरखन उमन बोले वो बड़े खेफिंग है सोरखन दी हीरो फॉर बिरिन द खमीस का सैन ओस्तान द डायरेक्सी बना दियो कर दाते हिकीनन हिकीने Volks gezondheid en respectvolle omgaan van overleden zeer serieus worden genomen. En bolle hoe heb je die gelijk hebben? Ja, bolle bara gand hè. Dan bolle volgens de verklaring, bolle doe je gewoon lasje, stoffelijke overschotten zich reeds geruime tijd in het mortuarium mee behoed diensten die gelijk daar al hoe heb je. Bolle ego gelijk hebben wat je gaan. Bolle hega verkeerde volgens het ziekenhuis vergevorderde staat van ontbinding. Of de bevoegde instantie is hierover als schriftelijk geïnformeerd. Over het mortuarium mee. Toen kan je via kabel koeling naar hij gaan. Koeling hoe je het hebt zo lastig. Dat je hing aan de Ja, schrik. Ontbindende toestand. Directie betreur is op je aanleiding hoe je gaat. Of je ziekenhuis benadrukt dat de huidige situatie. Wil verband houden met een langdurige bewaring. Wil bouwdienstbewaring hebben. Niet. Opgeëiste stoffelijke voorschotten en niet moet worden gezien als een algemene structurele tekortkoming op het gebied van hygiëne. तो कितना रोष दी गो लाश धरल भैया एक बारे में दे आना ले जो नहीं रविंद्र रघुनंदन बोले है, बोले अपरूप करे है कि बहुत स्नेल स्मूथ चाहेगा मात्र इखल करे के यारंस्त खस्तंग जो लेके हैस में बा हुआ के बहेरदर, बोले द बहेरदर हाथ इन खवनन बोले हैगा सिचुएशन और लेतन ब्लाइफन मोनिटोरन। तो ये बात है निकेरी के मर्जुवारियों में दोस्तों, दुई लाइक बहुत दिन से धरे ले दुई को लाइक वही की सब अनबिंदन स्टार्ट पे है हमारी जनता। तो हमले आप लोग को बताए निकेरी के बातचीत कैसे है दोस्तों। तो हम चलते हैं और आगे भैया आग लगल है सूरीनाम में, डिस्ट्रिक्ट ब्रोको पोंडो में ब्रोंस्वेक के गैल है और देखे हुआ पे जबरदस्त आग लगल भैया ब्रोको पोंडो में स्टेशन ब्रोंस्वेक के
ई मेलिंग पाई से और बतावे हैगा एगो फरदख्त फुरतेक में हुआ मिलल है फर्स्ट किलेंडर पुलिसी इन हेडन हुआ पे गए क्लास क्रीक में और बोले हुआ एगो फरदख्त के सफर पकड़ी से भैया कि उही अगिया लगाई से और उके भैया एगो क्यूबान है क्यूबान हुआ पे गए ले फरदख्त के पकड़ी से और बोले हैगा मुख लग यही अगिया लगाई सफर उके पकड़ी से। तो रामोन बहुरी भी आकर हमारे प्रोग्राम में जुड़ गए है। तो भैया रामोन देखो कोकई ने हम लोग जाने भैया पिंडा काशी मावे है का बोले मछरी मावे सगरो आवे भैया देख फिर मिलल है कोकई ने सर नाम से भैया पिंडा में मिलल भाई पिंडा में मिलल है को का मिलल है नानी नीदरलैंड के दुआने जो है नीदरलैंड के दुआने जाए के पकड़ ली से और पिंडा में समय कोकईन नीदरलैंड लावत रहा नीद पिंडा सुवार फर बोर कमार ही क्लेन दृक्ष बोलचेस ओई में रहा दृक्ष जो बोले पिंडवा सबन लपेटे ना उ दृक्ष लपेटे रहा भैया नूर खवाल दी से नूर बसोर खीन अने अलर्जी मार वेल अंदर एलेंद हेट इस कोकाइन भैया द नोटन सेन इन बसला खरुए फनीते नीदरलैंड के दुआने एक के पकड़ी से हमारी जनता। तो कुमार आ गया है यानी रकेश समुझ भी आकर हमारा प्रोग्राम में और जुड़ गया है। भैया जब सुनो सूरीनाम देश में तब बोले हैगा आम तो नारोलून दुई दुई सलारस पावे है बिनलांस शाखा के मिनिस्टर और सब कोई बोले बोले ना हो सके है सोशल शाखा के मिनिस्टर बोले ना हो सके है बोले दुई सलारस ना पाए अब पता चलल भैया जे चिल्लात रहा कि अमतनार लोग के दुई साल आरस ना चाहे मिल के ओही पकड़ाएगे भैया और के है दिया ना पो की भाई मिनिस्टर फंशोशाल साके के मिनिस्टर फंशोशाल साके के भैया जो हरदम चिल्ला है दिवल्ला चाहे यूएन पे असर हुई है और बताए गई है पोद पोद पोकी भैया देवल सलारस पावत रहे को देना के पावत रहा और हमें यहाँ स्कूल में लड़का पढ़ावत रहा ओहुक सलारस पावत रहा असा जो मिनिस्टर है गा दियाना पोके सोशल साख के बोले 11 बरिस भैया 11 बरिस ऑन ट्रैक उद्योबल सलारस पाई से और बोले हैगा फोलखत हर बस्तों इन बतरेफन प्रियुड नो हीन वेट लेकर रीखलिंग अरे तो उकर बाद में तो कह जाएं अपरे ना स्टॉप करे के मैं सोचे मलिया आवे है रकेश मलिया आवे तो कह मैं थोड़े चाहें देवे के तो इदियाना पोकी सुशाल साख मसूरी नामे में भाई तू चोर के ऊपर चोर रही है तू बच जाइए भाई जब तू रिखेरिंग में बाटे अब देखो अबे हम बतावे का भैल हैगा भैया त्रिक के बारे में अक्रोमो सुशाल यानी कि सुरीनाम पर पोस्ट पर बांग के सबसे बड़का देश जो प्लुंदर कर ले रहा त्रिक भी उस सब के बारे में अबे हम बतावे भैया बंद रहा मैं सब छूट गए भाई सब छूट गए है जो सुरीनाम में चोर लोग के सब पोसे है बचावे है और मांगे देश आ गया और हमारा प्यारे प्यारे जनता लोन वही रखे रिंग वन के जाए के बैठा देवे जो चोर के तुलो बचाओ और देश लूट लूट बढ़ गया। अब देखो दियाना पोकी 11 बरी से भैया डबल सलारस पावे है बोले द वेद डबल फ्यूचर्स रिकल इज पास फोर यार इन वर्किंग खतरीन ऑल दिस पोकी बोले हमें माखरा पावे के बोले वे तो अब आए लेगा कि हमें ना माखे डबल सीट और बोले हैगा ना चलाला असेंबली ना सिम पार्लियामेंटरी फ्यूचर्स ओ एल्डर्स वर्क सम वार and inkomst uit verschillende functies ontvingen. तो दियाना पोकी बोले एकवा बरिस से इन गेल बोले 11 बरिस से पाइला। तो भैया ये सब बात है हमारा देश में जब तू चोरन के बैठियो या तो का हुई द मिनिस्टर किंग ओक इन द रिसेंस एक्सिस फॉर मी द वर्कर्स एगो एस्टर स्टिक थिंग के राम द बोन फॉर द अफकलोपन वीक एक्सी ओम दैट अफस्प्राक इन द फोकस वर्क नेम सिंस 2023 ओपन स्टार नोग नीड फॉर लेड वन uitgevoerd पोकी बोलेगा बोले बोन से बोले गाय बतिया है ब्लैक डील फॉर problemen achterstallig betaling worden verder afgehandeld te diana poki 11 barise de salaris pai bhaiya aur suriname bole cha chhod de ab to pai chukal hai means a risk in wet jo suriname se main nikal rahe bhaiya to dubbel salaris hai na mujhe toch terug betalen met terugwerkende kracht mensen en nog erbij met de rente moet je erver betalen want je hebt zoveel geld namelijk ontvangen van de overheid
onterecht, mensen. Dat is puur diefstal. Toch kan jij terug barrikeren als je niet terug bent. Of moet je gevangenis geven? Maar dit, maar ja, ze van zomaar tolobolle Suriname. Oké, bakbouw in kri. Hamna bolil, maar ja, dunia pe. Sociale media pe chalja. Zegro bolle bolle bananen in de Republiek Suriname. Maar dit zijn een van die zaken die namelijk niet goed geregeld wordt in ons land Suriname. Dan krijg je dit soort uitspraken van bepaalde mensen. Maar je daar je ze bewaart Diana Pokike. To, dosto, ab ham jai aur aange bataye gaye hai. Tulon jano hai asat ke to ujon December mordak ke December mordak advokat raha. Ha, bara charpar advokat hai bhai. Bari chalak advokat hai. Ou bole heeft besloten zichzelf te gaan verdedigen met terechte oorlogsverklaring. Osad bole heeft Assad en hem bole Assad Hugo Assad advocaat bole heeft een oorlogsverklaring van de regering. Bole rechtelijke macht John Hega rechtelijke macht Hega Ohe Simonske of Ruslandke regering heeft ervoor gekozen zichzelf nu te gaan verdedigen. Obwohl hij vindt dat de samenleving in deze achter een HVJ moet staan. Toen hebben we de HVJ met het Hof van Justitie. Obwohl hij de Hof van Justitie heeft een brief DNA voorzitter Ashwin Adin gekozen. Ondertekend gekozen door alle rechters van Hof. Waarschuwen is een mogelijke verzwakking van de contentiële positie van de rechtelijke macht. Het gaat om de amendementen op de initiatiefvoorstellen tot wijziging onder de grondwet. De Jabhoutjalak advocaat heeft de Iker waarmee Jitra Haiga sublikische rechtelijke macht op het oude de PG moet een kopje kleiner worden gemaakt, stelde hij. Daarnaast vreest hij dat ook het constitutionele hof geleidelijk wordt uitgehold. Volgens Assad moet de voorgestelde hervorming daarom niet alleen worden bekeken. To janta i Assad ke bare mein ka news chal ke padhe kal inki iska jo samachar hai bahut strakam virok hai bhaiya strakam virok sab bole to ha to hum jai bhaiya Croati ya Netherlands ke admi loan bahut ja hai vacancy se Vakantie periode hè, koi Kroatië ja hè, koi Spanje ja hè, koi Frankrijk ja hè. De busreizen Kroatië bij ja, dosto, hem bij to jij chukli hè. To hier pata milal hè, ki jungle me aang lagge Kroatië me mensen. Or jaha pe hem lukke Nederlander bij raha bhai. Hier betawe hega Nederlandse vakantie kanga jon day reizen se gail ha. Prijsvrij vakantie, sub geëvacueerd bij de jungle met aangelegd Kroatië. En bole hega reisorganisatie bole he, voor koi na chotan he, reizigers gebeurde op last van lokale autoriteiten. Ketra Nederlanders zo he, patana he, Kroatië kam met hevige bosbranden, jura te bahu jabber bhaiya. Or ik erbane me go lokfa, ik go jagha ke naam he. Na bahu dur hai ego split ego sahar ke naam ba o batawe hai ga dasan anmi wel gewoon bail hai ook zijn tiental mensen gewoon gemeld o bole reis organisaties staan in no contact met de mensen to agar ya aap log Kroasi jaiyo bhaiya to jungle angal mein na jaiyo to Shardha aa gaya hai hamara program mein jud gaya Shardha aapko hum bahut pyar se swagat karte hai apna प्रोग्राम में भैया आप देखो किंदर बुर्द रही है किंदर बुर्द रही छोटा छोटा लड़का लेके किंदर बुर्द रही में सब कोई जा है और हुआ पे बतावे भैया बतावे हैगा कि हुआ के भेड़ा लाश होई गया भैया किंदर बुर्द रही में सीरी नामक नहीं नीदरलैंड के बात है एक जगह का नाम बा फेफर होफ इन ओल्स्ट भैया बताए गए बुधवार के बोले तीन भेड़ा लाश होई गए भाई कहड़िया में चल गए करैया में चल गए सरदा यहां बतावे गए ये सिपाही बोले हैं ओम से 2020 वर्ष के बुरे ओक ऑल इंस अन धुलवे 2020 में भी चोरी भईल और आज अब फिर होई गए भैया सिपाही एकर बारे में बहुत जबर से खोजे हैं बोले हैं चोरी भईलेगा तीन गो भेड़ा
diefstal van 3 van zijn 20 schapen. 20 gorama 10 go chori hui ke kender bus rahi se. Ab bole use batave khun bhe hua milal bhaiya hue saban ke gata hite kaat ke se ek chal gaye hain aur tu edition 20 tak mein vikit ko kender bus rahi main chori bhaila ab milal la hua rasta tulo jane diran tain mein bhaiya hua ke harna bhi sab mar ke chal gaya kaima bhi le ke chal gaya bhai aur hiya netherlands mein ab dekho bheda chal gaye kender bus rahi se बोले दारफुर से तुई मेंसे 2020 में पकड़ा रहा जो नीचे युवा कर ले रहा बोले इलेगाल स्लाक्टिंगन इन पीरियड 2020 द तुई वेर द 2024 फॉर ओर्डिल टू द रेस्पेक्टिव 5 एंड 6 मंथन सेल हेफरमैन सेड दैट इन ऑफ इज फन मेंशन वेर और एक चोरी भईले दोस्तों भेड़ा चोरी भईले नीदरलैंड से केंदर बुड़दा रही में नानी तो अब ऊपर से खून मिलल है तो सीकर हुए पसे अने ओके मार और के स्लाख्ती करके और भेड़ा के तीन गो जिसे लड़कन जात रहा भैया आये कर रहा और वही भेड़ा आज भैया

और बोले एगो एथलेटिक स्ट्रात है सर नाम में हुआ पे दुई गो ट्वी स्कॉट फॉरवॉन्डिंगन करी से और बोले हेगा अपरे जाई के मेल करी सिपाही के हम दगली बाटी खास बुक से एम्बुलेंस जी के दागे रहा वो बिचारन के लेगे है और बोले हेगा Vervolgens heb ik op een gastbuk zo'n Facebook met haar een beetje te gaan. Dus dat ik jullie kreeg een bericht. Kijk, ik heb een belang stellen. Ik heb een gastbuk zo'n. De twee spraken af dat de koper gastbuk zou kunnen bezichtigen. En dat zijn, omdat de koper niet over vervoer beschikte, werd gesproken dat de slachtoffer hem aan de atletiekstraat tegemoet zou rijden. Of je hongergeil hem op de afgesproken locatie. Terwijl hij daar stond te wachten, zag hij Dingo en mij aan welke richting mee. En ik wilde herkennen als persoon met wie hij via de Facebook contact had gehad. Deze vroeg naar de gastbux. Nadat de slachtoffer deze aan hem had overgehandeld om te testen, zou de verdachte het wapen gelijk op hem hebben gericht en twee keer hebben geschoten. En wilde hij slachtoffer oude dus geila, beetje van ja, ik jod het mij geila kunnen, ook het dag dit bij. तो ये तो क्या-क्या हो रहा है हमारा देश में भैया अब तो तुझे ये कुछ कीने भाए तब वो डड़िए की काम बात है बढ़िया चीज है कि ना अब देखो भाई नहीं बतावे है एगो आदमी मर गए अल्बिना में जबरदस्त आगी लगल है 10 तारीख अगस्तस के एगो जगनाक नाम बा पीरी कोंद्रे भैया निकियावल देश हिंदुस्तानी में बोले पीरी कोंद्रे बोले हैगा वार्निंग ब्रांड भइले ओमा एक आदमी के देहांत हो गए फिर तक याद रखे आदमी बहुत अफसोस के बात है हमारे जनता तो लॉन्ग आर्ट सूरीनामे में है भैया गोपी बोले रोग फैंस्टॉफ एंड सहारा स्टॉफ करे एरस्टक क्लासन फॉर ओर साकन ते लॉन्ग आर्ट से भैया तमाकुमाकु जो ने पिए है तमाकुमाकु ना पियो भैया हाँ यहाँ पे लॉन्ग आर्ट बोलेगा बोले सहारा के जो जाने संतियन झूरा में उड़ आवे है ओके भी जे तू इन आदम करिए आस्मा होई लुख्त वेख प्रॉब्लम होई और एक बारे में और बतावे है का फिट्स खिराल गोपी बोले अकादमी से कौन है इसमें अडविशेर करे आदमी लोग के आनम हालस प्रॉब्लम हो ले के जा आए वहाँ पे सहारा शांति और तमाकू से ये सभी चीज हो भैया तो आप लोग को हम बताएं दत्रा के बोले है बचाई के रहियो जा बोले फॉर मेन से मेन अस्मा कान ब्लूट स्टेलिंग अन रोग फॉल्क अर्स एर्स्ट गफॉल्कन हुए मन जो अस्मा है तो सुमिन सो तमाकू ना चाहे पिए के हमारे जनता ना खाली अस्मा तमाकू बुरा चीज है तमाकू ना चाहे पिए के दोस्तों वो तो हम भी बोले ला दोस्तों हम चलते हैं हमारा त्रिम की ओर भाई अमेरिका के त्रिम की ओर हम जाई है हाँ तो त्रिम के बोले फ्राक होखरेखतोफ ओम बहु बाल साल दौर तलातन खान तो आशा समझ भी आ गया है तो आशा जी आपको हम स्वागत करते हैं अमेरिका से प्रेसिडेंट बोले है डोनाल्ड ट्रिप गैल है भैया होगा रात में नम होगा खरेक सौफ में बोले जो नोकर बाल साल है गो वे तो है इसमें दौर तलात खान रुक गया ना बाव होता बोलो चीजों चाहे दौर हो जाए के फोर खबे एक दाने बोफर खबाओ अन बोफर खान से बाव मुझ वेल स्टेल खदाई ओम दा त्रिम हिस टुस्टेमिंग फॉर ना पार्लियामेंट हाथ के क्रीकर दा त्रिम चल गया भैया होगा रात में $400 million लगेगा ओके बनावे के और पार्लियामेंट ओके खुद के नकल ले रहा अभी गए लो हो खरान कि हमार उसलवा चाहे दोरो बनेंगे हमारे जनता तो ये बात है भैया दौदन ताल ना स्वार रीखन फाल जापान में इतना बरखा भैया और यह हॉलांत में यह झूरा मारी से एकदम खड़ खड़ भाई घास ओझिया सब झूरा है जापान में बूढ़ा मारी से जहाँ पे आदमी मर गए भैया जापान में रीखन फाले जापान इस उपखलोपन तो 8 मिला जापान में मरल है बतावेगा 300 मिलीमीटर 24 घंटा में पानी उतरा गिरल है बोले को जगह नाम बा शिबा और बताए गए हैगा और हुआ पर इतना बरखा बरसल बोले 7000 आदमी मेंसल मुतद नाख दूर बरेंगे को फ्लिक फेल है जेके नाम बा नारिता में तो हुआ पे जाई के 7000 आदमी के

वहाँ जाए के जगह मिले कि तो लो जलो यहाँ पे और लुकान रो भैया इतना बरखा जापान में बरसल है हमारे जनता अब देखो जापान वर्स्ट ऑफ रिस्लान दे से एलान द स्थान इन द मिडल फील्ड अब जापान के वहाँ बरखा बरसे यहाँ पे भैया जापान व्लादिमीर पुतिन के ऊपर बहुत जबर गुस्सा आने को बसुक फन व्लादिमीर पुतिन ऑन द कोरियन ट्विस्ट एलान ग्रुप इज नीट इन खुद आर द गफालन बाय जापान बोले है आई हैव द स्लेक्टर रिलेशन बिटवीन द टू लैंड और बोले है स्कैरा बोले द सो असम जाले बोले तू गेले बाटे हुए पे तो दोस्तों असाइड जापान यानी कि रिसलान और नॉर्थ कोरिया में बहुत जबर हुआ पे सामवर्क हुए है अब एक बारे में बताबे कि नॉर्थ कोरिया जो है बॉम देवे है भैया बॉम देवे है का बोले हैगा रिसलान के और रिसलान यूक्रेन पे जाई के दागे है उस बॉम यूक्रेन में मिलल है दोस्तों तो एक बारे में अभी आप लोग को हम और आगे को बताएंगे जनता फिर यहाँ पे की ओर हम जाएला नानी हाँ फिर यहाँ पे भैया और आए मूवमेंट है बोले ट्वीप नल पड़ते वार्स क्यू लीडन फॉर ऑन खल ऑन और लोडन इनिशिएटिवन भैया ओकर बारे में जो हुआ पे तेल के फोर सीटर है फाइव यहाँ पे के फिर यहाँ पे के बोले लीडन इन स्क्राइफन ना दुर्गलक वार्स क्यू करिसेगा की बोले दी वार्डन ख और खानी सेट ऑन द नाम ऑनिश मूवमेंट 2.0 सो खनाम सुख के रात के फरखादर भइल है सो खनूम द फ्राइडाग से आफोन सुख सुख से फरखादर करे है और बोले सोर्थ खलाई का बनामिंग पाई से फिर यहाँ पे क्यों का नाम होएगा ऑनिश मूवमेंट और बोले हैगा खेन ऑफिशियल स्टेटस अब बेन द पार्टी भइल है बोले हेड पार्टी बस्ती उस तेल द दर खल का बेन कोम्स तो ऑनरेक्ट ऑनरेक्ट द इंद्रिक फिर के बारे में तो सबर मांगे के दूसरा नाम धरे भैया देखी खालिफ नमूए धरे कुछ ना हो काम भी हुई से चाहे करे के तो जो दाखिल से पस्ती रहे फिर यहाँ पे के वो इस चीज के बारे में सुख के बोली से सिंबोलिक ऑफ एस्ट्रा फना फिर यहाँ पे बैठे द ऑफिशियल स्ट्रक्चर नीट इज टू खस्तान तो एक बारे में भी आप लोग को हम और बताएंगे कि कैसे अब देखो फिर यहाँ पे ही बोले बहुत बस और है तू जाने सर मक्का में बेन लांद में कितना मछली मरल भैया उलट गए मछली क्वेक से फिर यहाँ पे नीदरलैंड बस सौरख ऊपर फिस तरफ सर मक्का रिफी नीदरलैंड के फिर यहाँ पे ही बहुत बस सौरख हैगा जो हम लोग के सर मक्का में इतना ढेर मछली मलर है मसाला फिर तरफ क्वेक के बारे में मछली के बारे में हम लोग के फोर सीटर बलू करेला प्रेसिडेंट जो है सीमोस ना जाए के फरकलार करे कर बारे में बहुत घिचक कहानी हो रहा है देना में कि कहे न आए के बतावे कि हम लोग के क्वेकुआ कहाँ है मच्छरिये सब कैसे मरल है बोले तोत नीतू बकैन खमाक तो ऑन द सुख की फिर ब्लेड दैट इन द वाटर मॉन्स्टर ऑन द मेर कायाने एंड क्विक सेन आन खतरोफन उत्ती मिल है तेल पानी में जैसे उतरा ढेर मछली भरल है द ना सेन फॉर हुक द वार द फन ऑन द मेर एसर अल्मुनियन मान खान स्वीफ इन द स्टोफन एंड केमिकल डिमेन दमांत फर्स्ट कस्टेल तो उतरा चीज मिलल है ते फिर यहाँ पे नीदरलैंड के बारे में सौरखमा के करे हम लोग जाए तेरी फेस के भैया फेस के रामाउ तार सिंह बोले क्रिटिस ओवर द गोल्ड बोर्ड बीतर बस्तीर फल हंड हाफिंग फल एस्ट विंस्टन रामाउ तार सिंह बोले हैं फ्राक्टिक बे द फोर्निंग फन द रेगेरिंग जो बोले गोल्ड बोर्ड है इंटरस्टेलन फॉर द रेगुलरिंग फन द गोल्ड सेक्टर के सोना के बारे में बड़ी लंबा चौड़ा लिखल है दोस्तों लेकिन आप लोग को हम इसके बारे में फिर से और ज्यादा हम बताएंगे पहले तो हम जाए अपन और न्यूज के बारे में क्या हो रहा है क्या ना हो रहा है ऐसे लेमुआ भैया पीनो फर तरा कोई गे है नानी पीवाई नहीं का फिर शुक्रवार 14 तारीख को क्रिस्टस के व्हीकल्स टेक्निकल प्रॉब्लम भैया फिर फर तराखिंग हुई है
SLM verzorgde verbinding Nederland-Suriname Zee. Opbollen met de Airbus van A340, Duitser chartermaatschappij Skycare Zee. Opbollen technische probleemraad Pino Huyenbeja. Reizigers met vragen worden geadviseerd contact op te nemen met hun reisagent of een van de ticketkantoren van de maatschappij. Orbetaige he. Passagiers zo snel mogelijk te informeren over de nieuwe check- en de vertrektijden. Kikap hoi, kapana hoi. To je baan cheat, hè, bhaiya. 10 kilo, nani. Natari se 10 kilo. Drugs per milal hè, on the scap, kadi se, bhaiya. 10 kilo milal hè. Verdoven de middelen, ego 45 kergo. En het bouwen is 52-jarige mixer van Pakrisse. 11 tarik augustus. Korpspolitie Suriname. Narcotica brigade Pakrisse. Itraad heer. Drugs draaien. Bij jou lage. Of betaal je tijdens onderzoek. Betaal je rakam. Rakam ke drugs milen. Bij jou jijze kapra kleur. Kleur keer. Haaj milen. Bij jou graan. Marwana milen. Of kaka milen. Of bole verpakkingsmateriaal milen. Dosto. Suriname me itraad cheese milen. De hambolie te loke. Betaal je. Kijse toria. Hei to. तो सुरिनाम से हमारा बहिन भी आ गया है मुन नारायण बड़ा रोज पे ले दीदिया आपके हम स्वागत करते हैं अपना प्रोग्राम में हम जाए तेरे भैया मीसी काबा की ओर तू जाने मिनिस्टर फॉर फॉलोस खसन थे जे एनडीपीर है अब बोले फॉर ब्रांडिंग्स ओफंस ओवर अंडर फोरग रेगिंग नीट गब्रेक omdat het NDP-project had, bole de VHP-regering, bole ki, ego verbrandingsproject he, bole oven he, bole over na lera, bole omdat u NDP verwouwt raha, bole kellek omdat het NDP-project was, bole ook zoetje vorige periode, op het eigen, natuurlijk kan ik de schuld niet alleen leggen bij de overheid, want de gemeenschap was toch ook daar. Toen betekent je bewijs gaf aan de Turkse samenwerkingscoördinatieagentschap TICA. Bolle heeft aangeboden voor het project en dat hij staf heeft gevraagd. Toen misschien gaan wij kerbaren mee bolle, hemare piare piare janta. Kichi joa kaise hai, or kaise na hai. Hamare janta ham tari jai Simons keur bhaiya president Simons zet uitgifte mijnbouw concessie tijdelijk stop. Johnson van Keto dewe mijnbouw concessie dewe sona korek lakri kaadek bole voorlopig stop kari se. Bole hega verlengde overschrijven ap uka phir kholi pata na dosto. Lekin khali hem batai hai ki hum log ke president Suriname ke wo ka kia hai aur kia nahi kia hai. हमारे जनता तो और आगे हम आप लोग को बताते हैं अब देखो क्या हुआ भैया अरे नहीं सुरिनाम में बहुत जबर हुए भैया बड़ी फूट कांग्रेस मरा है ब्रोमोल मरा है अरे नहीं बहुत ज्यादा हुए भाई तो एकर बारे में हम अपन जनता से ही बोली ला ब्रोम ब्रोम चलियो भैया तेतरी देख का के चलिए बहुत जोर ना उड़ियो दारू पी के हो तो ना चलियो कोला पी के चलियो एक को प्रॉब्लम ना है दारू पी के चलियो तो यही सब बात हुई तो हम जाएला फान ट्रिक के उप लगे भाई फान ट्रिक फल उप फ्रेय ना खग्रोंद बसवार के बारे में त्रेब जोन हम लोग के सेंट्रल बैंक लूट के बैठ गए ला और बोले हैगा बुधवार के फ्रेय फुतप है सब ने के छोड़ दी से और बताए गए है चंद्रा अलगू कन्हई एडवोकेट openbare minister had geen bezwaar tegen het verzoek. Bolle 5 tarief februari 2020 ze. Ook is er bankkeller aangehouden en verbleef gedurende behandeling van de zaak 33 maanden uit de helkaartie ze. Oké, miljoen pijsa van eigen thalle ze, bhaiya. Ketra raha, kiu gewauw bhi bechet raha. O bolle, heiga, een hoger beroep werd de trek veroordeeld door een gevangenisstraf van 6 jaar.
Pantarik februari 2026 opnieuw vast en had hij inmiddels 6 maanden van deze straf uitgezeten. Bij de berekening van de resterende straf is ook rekening gehouden met de 9 maanden gratie op Paisenomahinakabaya die hem door de president waren verleend. Toen Hamara president Simon ook een nominake gratie deed van ja, je Hamara deske loot gebeurde he, ohike president geile gratie dewe in plaats dat hij alle geld moet terugbetalen. Geef onze president gratie aan dit soort mensen. Bolle van Trek heeft uiteindelijk nog 6 dagen langer in de detentie verbleven. Het hof heeft zijn bezwaar nu gegrond verklaard, waardoor hij vandaag de gevangenis mocht verlaten. Or even ja, hij Trekje waren mee. Hamare janta. To ikar bare mee. Hamara journalisten kahena jai ke puche hai. चीजुआ कैसे है भैया बात ऐसे एक औरत गैल 25 बरिस के मुर्गी लईफर करे एगो हंदलान लगे गैल है मुर्गी लईफर करे ब गैल है मुर्गी लईफर करे 25 बरिस के एक लड़की ते एगो नेखने से ही पता कि यार के आदमी भैया बोले ओके छुआ छावत रहा छुई मुई करत रहा ई औरत बड़ी गुस्सा आई के गैल मुर्गी लईफर करे के गैला अपरे के छुआवे और जाए के नालिश करी से एक कम 80 बरिस के आदमी के अब सिपाही पकड़ के बंद करी से लिफोर्नो के बोले तू के आयला और क्या मुर्गी देवे ना अपरे के आयला तो के देवे पुलिस ही फर देंगे नहीं कि जीव तक यार के फन फेट लगा आन रांडिंग ना ओवरलेग फन असली नाम से ओएम एक के पकड़ के बंद करी से ओएम बोले तो के मुर्गी आयला देवे लीफर करे ना तो के आयला की तो के चाहेगा ओके छुई मुई करे के हमारे जनता अब एगो मैया बोले है दी दृष्ट नार अब खुशलो उतन सोन ब्राक बलान सेल्फ एगो मैया जा है लड़कन के खाई देवे बेटवा बंद रहा दी बेटवा बंद रहा और माई गए लोग के खाई देवे एगो इने से तक यार का औरत गैला बेटवा खाई देव खाई ना गैला बेटवा गैला दृष्ट देव भैया ते लड़कवा के जिंदगी तू अपने ना बर्बाद करे है और लड़कवा जब यहाँ जेंकी हो जाए तो ही के मारी तो ही के आओ फी के पैसों ले के जाए दृष्टवा पिए यहाँ बतावे है कि बजे गैला दृष्टवा बेटवा के देवे जहलियाँ बस अपने पकड़ाई के भैया अपरो पकड़ाई के बन भले अब ओके के लाई के देगा बताए गए ड्रग्स वेदन आन खतरो लीफस मिडल में दिसे आन हेम में इकोनोमन दिस गए लाके खाई गए वही में ड्रग्स वा दे रहा को कही ने दे भैया तो बतावे तेजन से स्पेक्सी लीफस मिडल वा में और जाए के पाई से 432 ग्राम verpakking van cheese puff konnetje je bij ja marwana 20 gram ke paise ki beta hua pipi oma mouch kariga to se anto boma ke sipahi ke pakri se 19 baris ke ladka raha an klein zoon van een verdachte vrouw zich op maandag 10 augustus bij de narcotica brigade klein zoon rabia te itra piar nakker op een klein zoon ke ke tu jai ke oke drugs jahal me die khabar kareke Brunswijk भैया जो रखेरिंग में बा सिमोंस के गैगरी रेटलान के एनपीएस में बड़ी क्रिटिस बा ओवर द स्टेकर द विंकल प्राइस एंड दुकानिया के प्राइस हुआ बोले बहुत जबर चढ़े भाई बोले कुछ ना किंकी भाई ले है बोला सिस्टम नो किंकी बोला सिस्टम एरखर कबा Ja, bolle leider Ronnie Brunswijk is er niet over te spreken. Regering Simons Kuruslandke. O bolle, uno bodu asan moro boon toch? Bolle tulo armoina chalaite. Bolle, in plaats dat de prijzen in de winkel naar brede gaan stijgen die prijzen. Bolle tulo, bolle armoi karte. O bolle, hier heb je een prijs. O bolle, sakawe prijs. O outchahre jahe. O bolle, hoe gaan wij dan het leen van de Nederlandse bevolking naar de beheerbare proporties brengen? तो दोस्तों हम सोची तुलुक के गो गनवा हम एगो गनवा तुलुक के हम तरी से सुनाई दे तो अभी हम आ जाएंगे आपके पास आ जाएंगे जनता और ये गीत आपको जरूर सुनना चाहिए ये एक
क्या है, सुना जाए।

goreng-goreng भौजी और बोले गरम-गरम मसाला पीसो। तो ये बातचीत हो रहा है हमारे यारो हमारी जनता। तो हम जानते हैं दोस्तों मिलियन पॉलिसी सूरीनाम में, तू जानो तो बोले 20 आदमी के भैया पकड़ के बूटू दे इसे, पकड़ के बूटू दे इसे। मिलियन पॉलिसी जो मिलियन के बारे में देखे है प्रयोग द ट्वेन ट्वेन तक परसों के सेवन ऑब्सपोर कर इसे शुल्क कर रही सब यात्रा तू जाने हैं। एलिखाल एलिखाल रोमल जो सब अफाल डामों पे बिगे हैं तो पॉलिसी पकड़े इसे 20-22 आदमी के ट्वेन ट्वेन तक सही तो बड़ा सही फर काम कही से भैया ना खाली पकड़ जाए के हाथ से बिनवाओ चीजन तब उस सब कायदा सीखेगा ये सब गैला एलिखाल दुम्प करे का बोले है अफाल और फरकेर द लोकासी हमारा सूरीनाम देश में। तो बताए गए हर खात और परसों ने दी अफाल है बर खदीम और लातन दिम पर लांग्स वेखन और बेरमन एंड और अंदर उपंबार प्लेकन दंग से इन मिलियो पुलिसी इस सब के पकड़ी से। और बताए गए रहे अख्तर खाल अनवर मुने वार्ड निमन डायरेक्टर जो बा उपबार खरून के मिलियो पुलिसी के बा एक बारे में बताई से माँ अनमियन के चाहेंगे सब अपरेम भी करके है इस दारों unacceptable bewijs voor kiezen van afval grofvuil verschillende plekken moet zijn jij dumpen kunnen hebben moet verwijzen milieuvervuiling niet alleen het straatbeeld aantast maar ook gevolgen heeft voor volksgezondheid en leefmilieu maar ornami moet toen jij een rommel wega bij jou bouw jabber agi hua lagallaha ki hua kabel brandweer sab jai ke अब उताई सेगा हमारी जनता। तो देखो भैया इकोनॉमी से नुस्तान कोलंबिया में तुलन जानो है स्वार आर बीफिंग भाई लहा 265 आदमी मर गए है कोलंबिया में। कोलंबिया में मर गए 265 आदमी 4 dagen na de zware aardbeving in de westen van land heeft de Colombiaanse president op een discussie hulp te Itra Janta Maral heeft. Daarnaast wil het $15 miljoen vrijmaken voor de wederopbouw. Mexico heeft 2 militaire vliegtuigen met houdbaar voedsel naar Colombia gestuurd. El Salvador heeft hetzelfde aangeboden vanwege het vredesakkoord tegen de regering FARC-rebellen 2016 लेकिन हमारे सूरीनाम कुछ ना पठाई से दोस्तों पठाई गया तो हम जरूर आपको बता यानी कि वेनेजुएला में चाउर हमारा सरनाम के रखेरिंग पठाए रहा लेकिन कोलंबिया में बिना पठाई से हो सके शायद फिर से पठाई गया हमारी जनता। पलस्तीन में तुलन जानो भैया इसराइल दागी से गाजा में 3 बरिस पुराना में 112 पलस्तीन पलस्तीन एक पलवार के 3 बरिस में पैन में मसे निकारी से भैया हाँ गाजा में 112 पलस्तीन दी ओमेड लीफन सेन कोमन बे इसराइल लुखफालन लुख अनफालन बोले हैगा इन द हेरफ्स फन 2023 में यूं दागे रहा बोले 112 आदमी के लेक अब जाए के सब निकारी से अनफालन ओंदंग बस्तान है दो दिन ताल फन और लग गाजा पलस्तीन के बोले 73,000 आदमी बोले हैगा मेडिस volgens medische bronnen uit ruim 73,000 आदमी हुआ पे तो राज राम लगन आ गया है आपको स्वागत करते हैं राज्य और हमारा प्रोग्राम में भाग लेने को मनोरथ भैया बड़ा एक आदमी सोजा बाद मनोरथ के नाम बतिया भैया इतना इतना चीज दे सो हम लाल से मनोरथ हरीश मनोरथ है भाई और हनीश मनोरथ खाली बूटू देवे भाई और हुआ का बोले है क्वेक चोरी हो गए सोना चोरी हो गए का चोरी हो कर बारे में कभी मुँह ना ठीक से खोले है बोले ऑन द फेल खैस रही बोले हम ना जा बतावे
कहां कोंची है हमने इन लोग के कुछ इन्फॉर्मेशन है कि सच्चे ना मांगे बतावे लेकिन यहां मनोरथ बोले भैया बोले ट्वेडेशन बोले इस तरह से इफ़ामान्दे में ट्वेडेशन 65 तक आदमी मरल रहा तरवेल 2259 verkeersslachtoffers भैले तो इस अब चीज़ भैया बढ़ के गिने हैं और ना बतावे कितना रूप भी भैले भाई मोखलक इंतरक फरखीरिंग बहरहाल को ओवरट्रेडिंग तो एक कर बारे में कुछ चटकीला न्यूज रही जो करके यरमिया प्रेसिडेंट यानी कि मिनिस्टर बैठेगा तो एक बारे में कुछ बोल सके तिरक फरेक तो सब छूट गए भैया सोचो जो हम लोग के सेंट्रल बैंक में इतना चोरी कर ले रहा आज हम लोग के प्रेसिडेंसी में उनके नई कमांड के खरासी दे से जो आज हमारा जनता इतना दुख काटे है यही सब के कारण दुख काटे भैया दिल बुद्धू और हम लोग के प्रेसिडेंट जो नहींगा जाए के इस सबके खरासी लेवर कर इसे तो इर्शिला भग्गू समुझ भी आकर हमारा प्रोग्राम में जुड़ गए हैं तो इर्शिला जी आपको हम स्वागत करते हैं और यहाँ पे दे नाम है भैया रिक्लमेंट इंडस्ट्री लाइक दम यूनानीम आन तो वहाँ पे मेरे दर है स्टेम कर दी से रायमोन सपून फॉरम द वेट वीच की फन बला रहे स्टफ ऑन द नेम इस क्लीमांत के बारे में है हमारे जनता तो अब देखा जाए भैया 5,000 जितना आदमी नीदरलैंड में है 5,000 आदमी के खखीफंस जो दाता बैंक में बा यूएमसी यूनसी कन है से यूट्रेख में मेजी से हुआ से लैक हो गए भाई लैक हो गए तो खखीफंस 5,000 आदमी के डाटा लेखवेज इन बुक होल्डर सिस्टम फॉर अ खास्टन फॉर ब्लू बोले 2 अगस्त से मेरे लीवरेंसिन फॉर अ सिस्टम और बोले हैगा फियर लेक हैव दर्दन टू खा खा टॉट बुकिंग एंड पर्सन्स गिवन दी दैट होरन नाम खसलाख कांटेक्ट गिवन बुकिंग इंफॉर्मेशन दी बड़ी दुख के बात है भैया कि नीदरलैंड में हम लोग के का बोले हैगा लेक हो गया तो धर्मेन इसरी हां वो भी आ गया है बड़ा देरी में ले बैठे तू आज कहां रह लो गर्मा गर्म है नहीं दलाओ थी पर हित खौफ में से बहुत गर्म है द बखरे पिग में से नाम लदर तो दे फॉर कूलिंग खान जुकन तो हमारे जनता हम आप लोग को और आगे अपना समाचार लेकर बताते हैं सुनाते हैं क्या हुआ और क्या नहीं हुआ है मिली हुई पॉलिसी के बारे में तो अभी आप लोग को हम बता दिया है कि हुआ क्या हुआ चिकनगुनिया के बारे में भैया औ द बिल्डर वेकन इंद्रिक फॉर न्यू चिकनगुनिया इज ब्राक मार एपिडेमिसी फेस इन सुरिनाम इज फॉर बाय फास इज फॉर बाय मींस और चिकनगुनिया बोले अपना है मां बोले तब वो आदमी लोन के अबे प्रोक्लक क्लक तो हैगा 15 गो लैपटॉप होंदर 13,000 ऐसे दे दुकान तूर के लुटेरा ले के भग गए भाई इंदिरा गांधी वेख में परफॉर्म अनिका के को दुकान है वहां पर एक दुकान के नाम बा मंगर के रात के हा एस डी एस हंडल्स ड्राइव हा एस डी एस 15 गो लैपटॉप हुआ चोरी भैले होंदर 13,000 ऐसे थी भी चोरी भैले दुकान में से और हुआ के मैनेजर आ बोले है सोमवार के 7 बजे बोले हम लोग नहीं आफ बोले हम लोग बंद कर ली है और मंगल के सवेरे 8 बजे हम लोग आईली काम पे तो हम लोग देखेला कि हम लोग के लोहा कमाड़ी काटल है फोर शेर भैल है और बोले दुकान में घुस गए फ्राकिंग माँ ऑफ सेवेल अलार्म हाथ में से बताई गए दारबे वेरनम बद्राक फोन होंगे दर तीन दर्शन चोरी भैल है 100 गो डाला चोरी भैल है अने बद्राक फोन 100 USA एंड 400 USD स्टोलन सिरनाम से पुलिस भेज इतना बड़का बड़का दुकान भैया तो लोग चाहिए अपन दुकान फैलख करे के तो ऐसे बतिया है तो लेकिन हमारी जनता ये फरकोसो फिर लैपटॉप है पेखीन कैमरा ना लिखल हो सके होगा भाई मैं जैसे रहेगा आप लोग को हम बताते ही रहेंगे बात कैसे है कैसे ना ऑस्ट्रेलिया का भैया को बिशप है तू जाने तो किरकिर वाला मियां लाल टोपी पहले बा फॉर्मालक बिशप ऑस्ट्रेलिया के भैया फॉर क्राफ्टिंग में ओके से मन पकड़ी से एगो बोले मिस ब्रेक फॉर मिंद्र मेरद्र यंग
mannen, de 76-jarige Christopher was vanaf 95 een de bischof van Brome in Noordwesten. Toen je ze bebaard van ja, kerkie met toe lang aan in Londen, toen je verkracht kreeg. En bola van ja, uitbraak bij de Congo met bhaai, toen een janeu bij Maria Kaisie he. Embola met 2000 admin maral he, record tempo he bhai, jongste cijfer van 4381 raan, die he embola met bhai, en janneke bemari he, Congo me, Afrika ke die se, to waan pe itra admin, jai ke, bas met bhai le bhai, to hi bara duk ke baat he, haan, bari duk ke baat he, ki kya ho raha he, kya nahi ho raha he. आप लोग को हम एक गीत और सुना देते हैं तो अभी हम वापस फिर से आ जाएंगे आपके पास

बस दोस्तों हमारा उस्ताद के उस्ताद वो है भैया सुंदर हीरा भी आ गया है और हमारा प्रोग्राम धीरे धीरे को हम खत्म करेंगे। घंटा हो चुका है यारो। अब बताइए भैया फ्लार दिंग के को फ्राक वाहन में मिलल है भाई, मिलल है नंद्रक्ष, मिलल है भैया आदमी, मिलल है आदमी, मिलल है स्मोकल हो तरा भाई ही ऐसे हुआ तू जाने इली खालवन तू। शुक्रवार के 12 आदमी के मिलल हैगा फ्राक वाहन के लात रेंत में और फ्राक वाहन इन फ्लार दिंग में सबन पाई से बोले हैगा एगो बदरीफ ट्रेन हैगा फ्यूल कानवेक में डार से DFS एगो बदरीफ है बोलेगा मेयर फेयर दिनस्तन वसोरक ना द फरीन को निकरे जो जा है अब मिलान से पर्सनल जो नेगा 12 आदमी के निकारी से भैया फ्राक वाहन वास वेग ऑफ नार इंग्लैंड फरटेल द जनरल मैनेजर तो 12 आदमी के पकड़ान है हमारी जनता नीदरलैंड के बातचीत हो रहा है। तो दोस्तों ये सब बात है हमारा नीदरलैंड के एगो ट्रेम भैया ऑन स्पोर भइल है यूट्रेख्ट में ऑन स्पोर दर बॉसिंग में लाइन बेस एगो बिस में भइल है और एगो ट्रेम जाए के ऑन स्पोर हो गएगा दौड़ लग स्लाख तो फॉर ऑगलक भैया सेवन तखर ऑस में आ रही नहीं भइल का चार गो आदमी के पकड़ान है इन फुर कलला ड्रग्स फिया स्किप होल से। और दोस्तों प्लुट स्पोरन के बारे में हम बता चुके जो चार आदमी के पकड़ान है इसके बोल में एक बारे में हम बताइए फिर अंदर तक अख्तन दर तक सर फिर तक अख्त फिर तक यूत्रक वारिंग स्पेन के रहा वासनार के रहा एन सुतमेर के बोले अगर वेरक शाम से बिर लुक फख्त फ्राक केतन ऑफ स्किप हॉल है इज नीट बकैन ऑफ वेलक बद्रेब डर लुक हाफ एन सू वेरकन। तो ये सब आदमी काम कर रहा भैया तो ये सब चीज हो गया है। तो हमारी जनता यहाँ तक था आज के समाचार सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा नाम है जॉनी नंबर वन। बाय बाय स्वाई स्वाई नमस्कार हो इर्शिला भग्गू समूच आपको स्वागत करते हैं और धन्यवाद देते सुरेन हीरा लुंडा के नाच आसा समूच कुमार यानी के रामोन बहोरी राज एनोख मेरमेंस मून दिलप रजे धर्मेन इसरी आप सबको हम स्वागत करते हैं। बाय बाय नमस्कार हो तो फोल्क लेके बाय।

बलमा बलमा अगर जिंदगी हो तेरी, रोमांटिक सॉन्ग रोमांटिक सॉन्ग के मूड में है। मूवी का नाम है झनकान फन नहीं खतक और बलमा नहीं खत नहीं खतक का आशा भोसले, आशा भोसले का सॉन्ग के बाद हम चलते हैं दिल लगी ना किया करो, दिल लगी ना किया करो।

0: क्या करो एवरी ग्रीन एवरी ग्रीन। और दोस्तों सॉन्ग लवली सॉन्ग, और हम चलते हैं अगला गीत की ओर। और अगला गीत क्या होगा सुना जाए।
1: नहीं देखा कभी पहले,
0: और हम ही नहीं

प्यारे प्यारे भाई बहनों एवं प्यारे प्यारे बच्चों, अभी जब आपकी माता पिता जीवित है तब उनकी खूब देखभाल करो, सेवा करो, और ये ना सोचो कि मैया बप्पा बुढ़ा बुढ़ी हो गया अब उस सबका कुछ काम लायक ना है, ना धन दौलत ना कुछ है। ये नहीं देखना है मित्रों, क्योंकि परमात्मा को आपने नहीं देखा है फिर भी हम उनके पीछे भाग रहे हैं। और जिसने आपको जन्म दी है, मैया और बप्पा सेवा की है, पोषण पालन, वो है आपके लिए भगवान। भगवान के बारे में तो माता पिता ने आपको ही बताया है ना, तो मैया बप्पा की खूब

बलमा बलमा अगर जिंदगी हो तेरी, रोमांटिक सॉन्ग रोमांटिक सॉन्ग के मूड में है। मूवी के नाम है झनकान फन नहीं खतक और बलमा नहीं खत नहीं खतक का आशा भोसले का सॉन्ग के बाद हम चलते हैं दिल लगी ना किया करो, दिल लगी ना किया करो।

0: Every Green, Every Green. और दोस्तों सॉन्ग लवली सॉन्ग, और हम चलते हैं अगला गीत की ओर। और अगला गीत क्या होगा सुना जाए।
1: नहीं देखा कभी पहले,
0: और हम ही नहीं

और बुधराम होलास दोस्तों, और थार गोरी और क्या क्या गाए हैं, ये एक चटनी जोंग है दोस्तों, चटनी जोंग। तो आज कुछ चटनी हम आप लोग को सुनाएंगे, आओ एक और सुना जाए, हरि सुखदियो के ड्रिंकिंग वाइड बार, और एक सुखा चटनी है दोस्तों।

और ड्रिंकिंग टू बार दोस्तों, कुछ सोकान चटनी आप लोग को हम सुनाते हैं और सुनाते ही रहेंगे। तो दोस्तों हम चलते हैं केनेथ सालिक की ओर, ये भी एक सोकान चटनी आप लोग को सुनाएंगे।

और ये था सविता सिंह। दोस्तों कुछ शोकास सॉन्ग आपके हमने सुनाए हैं। तो हमारे दोस्तों एकदम एकदम एकदम हम चलते हैं अपने कुछ लोकल सॉन्ग के बारे में, लोकल जोंग की ओर हम चलते हैं। तो लोकल जोंग क्या क्या है, आओ सुना जाए कोई मेरी प्राणों में।

प्रणमी आखिरी प्राण बस आखिरी लोकल सॉन्ग आपको हम आज सुनाएंगे रिकी ज्यू जरन का है हमारे यारो हमारे दोस्तों। तो हम और आगे को अपना गीत लेकर चलते हैं, तो हम चलते हैं एक और लोकल सॉन्ग हो जाए और वो है मेरे दिल यानी कि रोहित चांद का ये सॉन्ग है।

ये एक यानी लोकल सॉन्ग थे आपके, हमने सुनाई दिया और हम उसके बाद तो चलते हैं और वो अपने ही देनहाख का है और वो है भैया जॉन मॉकम सिंह का एक सॉन्ग हम आप लोग को सुनाएंगे और आओ मिलकर सुना जाए।

और दोस्तों कुछ लोकल सॉन्ग आप लोग को आज सुनाएंगे। अभी आपने जॉन मोहकिम सिंह के बारे में सुना है और जॉन मोहकिम सिंह के बाद में अभी हम आप वापस और यानी कि और आगे को लेकर चलेंगे। और यह है अपना

लो मोर कहनिया, हम आए सूरीनाम तो इस गीत को और ये चलाए हैं, गाए हैं मोहम्मद शरीफ ई झाक ने, हमारे यारो हमारे दोस्तों लोकल जोन हम आप लोग के लिए चलाएंगे। हम चलते हैं और कहाँ चलते हैं, ये कहाँ अनिल भीम की ओर हम चलते हैं, वो भी एक लोकल जोन है।

और तेरी दुनिया से बहुत मजबूर इंद्रोनील रॉय का ये सॉन्ग है, कुछ लोकल सॉन्ग आज सुनाएंगे हम। चलते हैं किरण केदार की ओर।

0: son eres tú. तो हम चलते हैं यानी कि
1: दोस्तों मुकेश भाई थी मुकेश करोड़ों का दिल चुराने वाला हार्ट ऑफ मिलियंस और वो है माई थी मुकेश का ये सॉन्ग है शंकर जय किशन के साथ में हसरत जयपुरी शैलेंद्र

लगी जाए। और ये गीत के बाद हम चलते हैं और एक सॉन्ग की ओर। ओ हे करोड़ों का दिल चुराने वाला, द हार्ट ऑफ मिलियंस, और वो है माइटी मुकेश का ये सॉन्ग है। दोस्तों आओ सुना जाए क्या है ये।

0: पसंद होगा वही गीत जॉनी आपको सुनाएंगे। हमारे यारो,
1: Je hebt ons gevonden. Laat ons nooit meer gaan. Vahon Hindustani Radio.

मेरा रंगला और राम की सुन कविता, राम की सुन का ये गाया हुआ ये सॉन्ग है यारो। हम चलते हैं अगला गीत की ओर, वो क्या होगा, देवी निहा सरस्वत राधे व्रजा, और क्या क्या नाम है इसमें दोस्तों, आओ सुना जाए ये क्या सुनाते हैं।

और जाहूं दोस्तों कृष्णराम खरवान की आवाज में आप लोग सुना है, और जितने हमारे लोकल उस्ताद है सबके नाम लेकर हमारे उस्ताद को उस्ताद कृष्णराम खरवान आपकी सुनाए हैं। तो हम चलते हैं बैठ गाना रिमिक्स।

दोस्तों दोस्तों दोस्तों और हमारा बैठक गाना के प्रोग्राम तो हम जोर तोर से चलाते हैं और एक हो जाए कृष्णराम खिलावन की जोंग।

0: 24, 22 en 23 augustus. Voor meer informatie www.minimsummerfestival.nl.
1: हम हैं जॉनी नंबर वन और जॉनी नंबर वन जो है तो वो जरूर कुछ शायर के गीत आप लोग को सुनाएंगे, तो आओ सुना जाए। मैं शायर नहीं तो और क्या हूँ, फिल्म के नाम है बॉबी का ये सॉन्ग है।

और दोस्तों मैं भी शायर नहीं हूं, लेकिन हम कुछ आपको शायर के गीत को सुनाते हैं। और शायर के बाद हम क्या सुनाएंगे, हम चलते हैं, ये दुआ है मेरा रब से दुआ है दोस्तों, और जब रब से दुआ करेंगे तो आपको जरूर रब आपका दुआ जो है वो कबूल जरूर करेगी। तो फिल्म के नाम है सपना साजन की, अलका की और कुमार शानू का ये सॉन्ग है।

दोस्ती पसंद आए हमारे दोस्तों, तो बात क्या है, कैसे है, आपको हम जरूर सुनाएंगे। तो हमारे दोस्तों आज प्यार के मूड में फिर आ गए हैं, और प्यार के मूड में आए हैं तो प्यार तो करना चाहिए। तो हम चलते हैं बाला सुब्रमण्यम की ओर, ये भी बहुत लवली गीत गाया है दोस्तों, आओ एक और सुना जाए, और वो है बाला सुब्रमण्यम के आवाज में।

और दोस्तों बाबुल सुब्रमण्यन के बाद तो हम चलते हैं और एक गीत के और, वो भी आज प्यार के मूड में है। कुमार शानू के ये गीत है, आओ प्यार करे, आप भी प्यार करो ना।

0: और चांद से पर्दा कीजिए, कोई चुरा न ले और चेहरे के नूर हमारे। ये तो एक और हो जाए बाला सुब्रमण्यम का ओल्ड सॉन्ग
1: बहुत प्यार,
0: और मैं भी
1: तुमको
0: बहुत प्यार करते हैं हम।

और बहुत प्यार तो करते हैं और सदा करते ही रहेंगे, ये हमारा वादा है। बहुत प्यार करेंगे और करते ही रहेंगे जब लेख सांसों में दम रहेगा। दोस्तों तो हम अगला गीत की ओर जाते हैं, अभी सांस लेने की फुर्सत तो नहीं है। अलका याग्निक सोनू निगम का ये सॉन्ग है।

और कहते हैं अभी सांस लेने की फुर्सत नहीं है, और इसलिए कि तुम मेरी बाहों में हो तो आप कितनी महान हैं कि सांस लेने की भी हमें फुर्सत नहीं है, क्योंकि तुम मेरी यादों में नहीं मेरी बाहों में हो। दोस्तों हम चलते हैं नाइटिंगेल और लता मंगेशकर और परमा श्री मोहम्मद रफी के एक मस्त भरी प्यार भरी गीत आतिश वेलन हील अवली ची फन 1957 और फिल्म के नाम बा भाभी, और ये गीत हम चलाते हैं आप लोग सुनो।

छुपा कर मेरी आंखों को, तो पूछे कौन है और बता दीजिए नाना जी लता जी और प्रणाम श्री मोहम्मद रफी का ये गाया हुआ सॉन्ग है। और हम चलते हैं कभी कभी जब प्यार हो जाता है तो लोग खुजते हैं, क्या खुजते हैं, लोग खुजते हैं कि हम कहां अपना प्यार को ढूंढू और प्यार में लोग क्या क्या देखते हैं। और ये गीत है, रब को भी लोग देख देते हैं प्यार में हमारे।

और दोस्तों हम चलते हैं एक ओल्ड इन गोल्ड का पुराना गीत है, वो है फिल्म का नाम है मेरे ख्याल से ये है, ये कुछ और फिल्म का नाम है, तुम अकेले तो कभी बाग में मत जाया कर आओ प्यार करे, मूवी का नाम है आओ प्यार करे, ये रजत खन्ना का ये एक फिल्म है और ये गीत आओ सुना जाए मिलकर।

फन होंट हिंदुस्तानी रेडियो के माध्यम से यह कार्यक्रम आपके घरों तक पहुंचाया जाता है। अगर आप भी हमारे साथ देने के वादा करें तो हम यही मस्त नंग में लुटाते रहेंगे। साथ देने के लिए रेडियो फाहून के मेंबर बन जाइए और हमारे कार्यक्रम से आनंद उठाइए। लेट होने के लिए तार कीजिए 9 7 3 5 6 3 2 6 9 8। फाहून हिंदुस्तानी रेडियो।

और जाने क्यों लोग मोहब्बत करते हैं, क्या आपको मालूम है? आपको पता है कि लोग मोहब्बत क्यों करते हैं हमारे यारो? तो जरूर हमसे आप बता देना। हम चलते हैं अलका की ओर, अलका याग्निक की ओर, और फिल्म का नाम है खल नायक। इस नहीं सोन ओ फिल्म से मार अति से हेल मोई नंबर लात वे वीडियो के खान draaien voor de mensen die namelijk niet alleen oude nummers, maar ook nieuwe nummers horen. Het is niet helemaal nieuw, maar toch wel.

पालकी में होके सवार चली रे, फिल्म के नाम है खलनायक। खलनायक के बाद हम जाते हैं, क्या आपको भी प्यार हो चुका है और अपने प्यारी को कहते हैं कि आज नहीं कल नहीं लेकिन 100 साल पहले भी हमें तुझसे मोहब्बत थे। नाइटिंगेल लता जी, आशा परेख देवानंद का ये फिल्म है, सॉन्ग है पद्मश्री मोहम्मद रफी और नाइटिंगेल लता जी का ये सॉन्ग है। बहुत लोग इस गीत को पसंद करते हैं, मुझे यही उम्मीद है कि आपको भी ये गीत अच्छा लगेगी, कारण कि ये गीत सुनते सुनते सुनते सुनते लेकिन दिल कभी भरता ही नहीं है। आओ सुना जाए।

और 100 साल पहले तो मुझे ये प्यार था, मालूम नहीं है कि 100 साल पहले हम क्या थे दोस्तों, वो तो मुझे मालूम नहीं है। लेकिन एक गीत आपको हम सुनाते हैं और वो है कभी कभी दिल से लग जा गले। नैतिकी लता जी फिल्म के नाम है, मूवी का नाम है वो कौन थी। वो कौन थी निगति होंडेड एंड फिनेस अस्तका। इस फिल्म में काम किया है मनोज कुमार, साधना, हेलन, प्रेम चोपड़ा। आओ चला जाए लग जा गले में। क्या है

तो फिर ये मुलाकात हो ना हो नाइटिंगेल लता जी फिल्म का नाम वो कौन थी और ये गीत जो है दोस्तों हम चलते हैं हुस्न वाले तेरा जवाब नहीं है किसी से जब प्यार करते हैं तो उसका जवाब तो कभी हो ना हो हो ना सके परमा श्री मोहम्मद रफी का गया हुआ सॉन्ग है मूवी के नाम है घराना 1961।

हुस्ने वाले तेरा जवाब नहीं है, और हुस्ने वाले तेरा जवाब के बाद हम जाते हैं, और वो भी एक ओल्ड एंड गोल्ड सॉन्ग आज के मूड में है, वो है और ये है फिल्म का नाम है, मूवी का नाम है आपकी परिछाइयां। मैं निगाहें तेरी चेहरे से परमाश्री मोहम्मद रफी, एक रोमांटिक सॉन्ग है जिस फिल्म में धर्मेंद्र काम किया है। आओ सुना जाए ये क्या है भाई, मेरे ख्याल से तो बहुत अच्छा गीत होगा।

दूर दोस्तों, और मैं निगाहे तेरी चेहरे से परमान श्री मोहम्मद रफी का ये सॉन्ग है। उसके बाद हम चलते हैं एक सुपर हिट ओल्ड एंड गोल्ड का सॉन्ग है, और वो है माइती मुकेश नाइटिंगेल लता जी का एक फिल्म है। आपको ये गीत जरूर सुनना चाहिए, जरूर सुनना चाहिए।

फन हंट हिंदुस्तानी रेडियो के माध्यम से यह कार्यक्रम आपके घरों तक पहुंचाया जाता है। अगर आप भी हमारे साथ देने के वादा करें तो हम यही मस्त नंग में लुटाते रहेंगे। साथ देने के लिए रेडियो फाहून के मेंबर बन जाइए और हमारे कार्यक्रम से आनंद उठाइए। लेतोने के लिए तार कीजिए 9753523 तक सेफ नफेटा फाहून हिंदुस्तानी रेडियो।

आज आप लोग को हम सिर्फ ओल्ड रात के सोहना सफर का गीत हम आपको सुनाएंगे कि अगर जब आप सोते हैं या कुछ रिलैक्स करते हैं तो ये सब गीत आप सुनकर और इसमें अपना यानी कि खायली खुद खनीतवें से ओल्ड इज गोल्ड।

लाल दुपट्टा मलमल का हो जी तो कुछ मिली जुली गीत आपको हम आज सुनातेंगे हमारे यारो। तो हम चलते हैं अकियों के झरोके की ओर। तो अकियों के झरोके में क्या होता है आओ सुना जाए।

आंखियों की झरोके से एक क्लासिक रोमांटिक सॉन्ग है। इस फिल्म में सचिन ने और रंजीता ने काम किए हैं हमारे दोस्तों। और इसके बाद हम बढ़ते हैं अगला गीत की ओर। चोरी हो गई है और चोरी किसी को दिल हो जाते हैं, चोरी किसी को पैसे हो जाते हैं, लेकिन यहाँ कुछ और बात है।

और नींद की चोरी हो गई रात, और रात के बोले है सपना निनिया चोरी हो गई, क्यों सूत ना पावे, इतना प्यार हो गया है कि सपने क्या, और बोले है रात के निनिया बोले वो चोरी हो गया भैया, तो इतना प्यार करना कि रात की जो निनिया है वो भी उड़ जाए। उसके बाद हम चलते हैं, एक फिल्म के नाम है, मूवी का नाम है कल की आवाज, नहीं कहती हों एंथवी नहीं कहता का ये फिल्म है, और एक हिट सॉन्ग है, फिल्म का नाम है कल की आवाज तुम्हारी, और गीत को किसने गाया है आओ देखा जाए दोस्तों। इतना बात है कि इस गीत को इस फिल्म में काम किया है अमृता सिंह और धर्मेंद्र जी काम किया है, और आओ सुना जाए ये कौन सा गीत है।

और कल की आवाज मूवी का नाम है और इस फिल्म के नाम है कल की आवाज नीघंत का ये जोंग है जो आपके लिए हमने चला दिया। तुम्हारी नजरों में हमने देखा अजब सी चाहते झलक रही है। हमारे दोस्तों उसके बाद हम चलते हैं अगला गीत की ओर। तो आपको हम बता दें तो हम चलते हैं इस गीत की ओर। मेरे दिल ने जो मांगा नाइटिंगेल लता जी का ये सॉन्ग है। फिल्म के नाम है रखवाला। निखती होंद एनन जीवन तक का ये गीत है और यानी कि मूवी के नाम है रखवाला। मेरे दिल ने क्या आपको दिल ने जो मांगा है उसको मिला है या नहीं मिला है आओ सुना जाए।

और मेरे दिल ने और जो मांगा वो मिल गया, क्या आपका दिल जो मांगा है उसको क्या मिल गया है। हमारे दोस्तों, हमारा यही आशा उम्मीद है, दुआ है, प्रार्थना है कि आपका दिल जो मांगते हैं उसको बहुत जल्द मिल जाए, इसलिए कि इस प्यार से मेरी तरफ जब देखोगे तो सब कुछ आ जाएंगे। द टाइगर ऑफ इंडिया कुमार शानू और अलका याग्निक का फिल्म चमत्कार।

और इस प्यार से, इस प्यार से मेरी तरफ न देखो भैया, नहीं मुझे प्यार तो जरूर हो जाएगा। टाइगर ऑफ इंडिया कुमार शानोल का याग्नि का फिल्म के नाम है चमती कार के बात। हम चलते हैं और अगला गीत के ओर, अपनी अपनी मोहब्बत की, अपने मोहब्बत को कभी ना मारो और उसे कभी कोई दुख न दो। नाइटिंगेल लता जी और किशोर दादा के आवास में इस गीत को हम चलाते हैं। मूवी का नाम है लैला, लैला और मजनू का सॉन्ग है।

दीवाने को पत्थर से कभी मारना नहीं चाहिए, तो इस गीतों से मुझे याद होता है कि कोई ज़माना में मैं भी 16 बरिश के था। और क्या आप भी कभी 16 बरिश के थे? अगर जब कभी 16 बरिश के थे तो आपके ये गीत सुनना चाहिए और खूब ठीक से सुनना चाहिए और अपने आप को लेके चलो चलो जब तुम 16 बरिश के थे और उस समय पे 16 बरिश के जब तुम थे तो उस जमाना में उस समय पे आप क्या थे, इस गीत से आओ सुना जाए।

마주 마주 마주 마주

You chewed up a mustache, bitch!

और दोस्तों सलाम ही सलाम के ओर हम चलते हैं। एने तेरे नीले नीली आंखों का और ये जोंग है फिल्म के नाम जैसे यहां पर हम देख रहे हैं। तो यानी जाने अनजाने नीख जो होंगे नसीबंद का और पद्मा शर्मा मुझे नाई दिन गई लता जी का ये जोंग है।

और तो वहाँ ये मतवाली चाल, और इस गीत को आपने फिल्म का नाम है पत्थर की शरम। और आप लोग जानते हैं हमारे यारो पुराने गीते की मजा कुछ और है। हम चलते हैं परमा श्री मोहम्मद रफी और लता जी की आवाज में।

और दोस्तों प्यार में तो कभी कभी छोटी बात से बड़ी बात हो जाती है, आपको तो मालूम है। और कभी कभी प्यार में लोग भूल जाते हैं कि कौन से बात वो करते हैं, कब करना चाहिए कब नहीं करना चाहिए। तो ये सब बात है हमारे यारो। तो हम चलते हैं अगला गीत की ओर, वो है ओ साथी रे।

0: जीना है और रेडियो फाहुन के बिना कैसे रात कटेगी। तो हम चलते हैं एक रोमांटिक सॉन्ग किशोर जी के आवाज में।
1: हाँ
2: या चुप रहूं
1: ना,
2: दिल में मेरे आज क्या है?
1: क्या है?

हाथ डाल, ऐ गुल चेहरा परी जमाल, मुद्दत से दिल उदास दादा दास है, तेरे होठों की प्यास है, ऐ दिल पर मेरे लब पर कब छलकेगा तेरे लब का दादा।

हजारों को याद आएंगे, मर के भी हजारों को याद आएंगे, किसी के आंसुओं में मुस्कुराएंगे, कहेगा फूल हर कली से बार बार, जीना इसी का नाम है। सुनने वालों के सेवा में विजयंती का प्यार भरा नमस्कार। आपका जन्मदिन है, आपके घर पर एक नए मेहमान आए हैं, यानी एक बेटा या तो एक बेटी ने जन्म लिया है, या तो कोई जश्न आपके घर पर है, तो आप सभी को हम बधाइयां पेश कर रहे हैं। जो बीमार है या लाचार है, तो भगवान से तंदुरुस्ती के लिए प्रार्थना कर रही हूँ। जिसके घर पर विपत पड़ी है, भगवान उन्हें सहन शक्ति प्रदान करे। जो हमारे देश में मेहमान बनकर आए हैं, हम आपको हृदय से स्वागत करते हैं, और जो विदेश जाने वाले हैं, हम आप सभी को एक शुभ यात्रा पेश कर रहे हैं। जहाँ पर भी आप हैं, जिस साल में भी आप हैं, आप सभी को भी हम याद करते हैं, और जो लोग इंटरनेट द्वारा हमारे प्रोग्राम को विदेश में सुन रहे हैं, आप सभी को भी हम याद करते हैं। सुनने वालों, अब से लेकर दिन में यानी 12 बजे तक मैं आप सभी की सेवा करने वाली हूँ, इसी आशा के साथ कि जिस तरह से मैं अपने हिस्से के प्रोग्राम पेश करूँगी, आप लोग को ज़रूर पसंद आएगी।

ये सुंदर शब्द जिन हमने पेश किए हैं आप सभी सुनने वालों और सभी दुखी प्राणियों के लिए। मैं तो एक ख्वाब हूँ, इस ख्वाब से तू प्यार न कर। मुकेश जी आपको सुनाने वाले हैं फ्रॉम द मूवी हिमालय की गोद में।

मैं तो एक ख्वाब हूँ, इस ख्वाब से तू प्यार न कर, अभी आप सुन रहे थे फ्रॉम द मूवी हिमालय की गोद में। किशोर दा आपको सुनाने वाले हैं, तुम बिन जाऊँ कहाँ।

मोहम्मद रफ़ी जी की आवाज़ में अभी आप सुन रहे थे तुम बिन जाऊँ कहाँ कि दुनिया में आके कुछ ना फिर चाह सम कभी तुमको चाह के अभी आप सुन रहे थे। सुनने वालों लता जी की आवाज़ में आप सुनेंगे इस बार और फिल्म का नाम है कति पतंग। गीत का बोल है ना कोई उमंग है ना कोई तरंग है मेरी जिंदगी है क्या एक कति पतंग है।

0: घंटी के आइकन पर मेरे आने वाले।
1: अभी आप सुन रहे थे ना कोई उमंग है ना कोई तरंग है, मेरी जिंदगी है क्या एक कति पतंग है। उपहार है फिल्म का नाम और इसी फिल्म से हम पेश करते हैं माझी नैया ढूंढे किनारा।

आप सुन रहे थे माझी नैया ढूंढे किनारा। मुकेश जी की आवाज़ में हमने ये गीत पेश किए हैं। फ्रॉम द मूवी उपहार से आपने सुने हैं। फाहून हिंदुस्तानी रेडियो पर आप सभी ने चुन किए हैं सुनने वालों, और मोहम्मद रफ़ी जी प्रोग्राम में आ रहे हैं। जो उनकी तमन्ना हो बर्बाद हो जाए।

अभी आप सुन रहे थे जो उनकी तमन्ना हो बर्बाद हो जा। अभी आप सुन रहे थे सुनने वालों, और मोहम्मद रफ़ी जी आपको सुनाने वाले थे। एक बहुत सा सुंदर गीत हमने चुन कर रखे हैं आप सभी के वास्ते, लेकिन ये गीत शुरुआत करने से पहले मैं ज़रा आप लोगों को बता दूं कि आधे घंटे तक लगातार हमने कुछ सेंटीमेंटल सॉन्ग्स आप सभी के वास्ते पेश किए हैं, और अब कुछ बदलाव हम लाने वाले हैं प्रोग्राम में। तो चलिए ये गीत हो जाए आप सभी के वास्ते।